तदनुसार 30 जून सन 2026 ईस्वी प्रातः के 5:56 हो रहे हैं। अब हमारी आज की सभा के प्रसारण आरंभ होते हैं।

मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलो हर्ट्ज पर और FM 100.1 मेगा हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 9वीं तिथि।

0: हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। अब आप समाचार सुनेंगे। समाचार पहले हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में प्रसारित किए जाएंगे। समाचारों को हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसी के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्य

0: के लिए दिए जाते हैं।
1: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सयन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्या शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से शुरू आंध्र प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज विजयनगरम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति कल अनंतपुरम में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि 2 जुलाई को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में विधेयक का मसौदा पेश किया जाएगा। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में समिति बनाई गई है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाणा का दौरा करेंगे और खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में शामिल होंगे। वे किसानों से सीधे संवाद करेंगे। श्री चौहान वहां एक प्रदर्शनी में भी जाएंगे। इसके बाद कृषि मंत्री पूर्वोत्तर के 2 दिन के दौरे पर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांव और बुनियादी ढांचे की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के पेट्रोल पंप पर 1 जुलाई से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच हॉर्मूज जल डमरू मध्य को लेकर विवाद पर आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता होगी। ये बातचीत हाल के सैन्य तनाव और अस्थायी युद्ध विराम के बाद हो रही है। दुनिया के लगभग 20% कच्चे तेल का परिवहन इसी जलमार्ग से होता है। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने हाल में घुसपैठ कर शिविर स्थापित करने संबंधित खबरों का खंडन किया है। सेना ने कहा कि ऐसी खबरें तथ्यहीन और निराधार हैं। भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित कई नागरिकों की मौत हुई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान की ये कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए खतरा है। 3 जुलाई से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर और पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। 57 दिन की इस यात्रा से पहले यात्रियों का पहला जत्था जम्मू पहुंचने लगा है। फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में पैराग्वे ने जर्मनी को एक कड़े मुकाबले में हरा दिया। दोनों टीमें निर्धारित समय पर 1-1 गोल की बराबरी पर थी। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में पैराग्वे ने जर्मनी को 4-3 से हराया। वहीं ब्राजील भी राउंड ऑफ 16 में पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय VC प्रमोद। The government has decided to withdraw the temporary regulatory measures governing the sale and distribution of petrol and diesel. The Minister of Petroleum and Natural Gas said that with effect from tomorrow, the temporary measures will be lifted from motor spirit and high-speed diesel through retail outlets of public sector oil marketing companies.

दोस्तों, मनुष्य जीवन अति दुर्लभ है, अनमोल है। कहा जाता है कि मनुष्य जीवन जीवन के रहस्य को समझने के लिए, ईश्वर भजन के लिए और परमात्मा प्राप्ति के लिए मिला है। परमात्मा की आराधना ही मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य है। आइए सबसे पहले याद करते हैं माँ को।

जैसे रोगी का उद्देश्य निरोग होना है, ऐसे ही मनुष्य का उद्देश्य अपना कल्याण करना है। भोग तो पशु भी भोगते हैं, केवल भोगों को भोगना मनुष्य का उद्देश्य नहीं है। मनुष्य का उद्देश्य तो सुख दुख से रहित होकर परमात्मा को जानना है।

भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना इस समय आप सुन रहे हैं कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से। मनुष्य के अलावा संसार में जितने भी प्राणी हैं वो केवल अपने कर्मों का फल भोगते हैं। ईश्वर भजन और नए कर्म करने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं, लेकिन मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा कर्म बंधन से मुक्त हो सकता है, परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है, प्रभु से एकाकार हो सकता है।

हमारे शरीर में निरंतर परिवर्तन हमें ये उपदेश दे रहा है कि हमारा संबंध अपरिवर्तनशील तत्व परमात्मा के साथ है, शरीर के साथ नहीं। शरीर सदा के लिए हमारे साथ नहीं रह सकता, शरीर पल पल हमसे दूर जा रहा है। क्या हमने सोचा है?

निश्चित समय पर चलने वाली गाड़ी के लिए जब पहले से सावधानी है, फिर जिस मौत रूपी गाड़ी का कोई समय निश्चित नहीं उसके लिए तो हरदम सावधानी रहनी चाहिए। ये संसार सदा के लिए नहीं है, विचार करो क्या दिन सदा रहेंगे।

0: अभी आप भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। आज का चिंतन सुनिए प्रेम सिंह गोदारा से, विषय है मन।
1: अच्छे काम हमारे आध्यात्मिक रास्ते की नींव है। बिना अच्छे विचार एवं कार्य के दुनिया का कोई भी व्यक्ति इस रास्ते पर प्रगति नहीं कर सकता। यहाँ भले कार्यों का अर्थ है चोरी, झूठ बोलना, नशा पता करना आदि कर्मों से अपने आप को दूर रखना, अर्थात अपने मन, अपनी वाणी और अपने शरीर से ऐसा कोई दुष्कर्म नहीं करना जिससे दूसरे प्राणियों को दुख पहुंचता हो, न ही किसी अन्य व्यक्ति को बुरे काम के लिए प्रेरित करना तथा न ही गलत काम करने वाले व्यक्ति का साथ देना। इसके बदले अपने मन, अपनी वाणी और अपने शरीर से

0: ऐसे शुभ कार्य करना जिससे सभी प्राणियों को सुख पहुंचता हो। गलत काम करने वाले और जो गलत कार्य कर चुके हैं वे सही रास्ते पर आ जाएं, इसके लिए उन्हें प्रेरित करना, यही सच्चे अर्थों में अच्छे कार्य हैं। बाहर का कोई भी व्यक्ति, कोई भी घटना, कोई भी स्थिति हमारे बुरे कर्मों का कारण नहीं बन सकती, जब तक कि हमारे भीतर के विकार हमारे चित्त के साथ न लग जाएं। जब जब हमसे गलत काम होता है तो हमें परखना होगा कि कौन सा विकार मेरे चित्त के साथ लगा। इस तरह अपने आप को जांचने से विद्या जागेगी, होश जागेगा और धीरे धीरे दुष्कर्मों की प्रवृत्ति मिटती जाएगी, निर्मलता आती जाएगी। मान लो किसी व्यक्ति ने हमें गाली दी, हमें क्रोध आया, ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि क्रोध गाली की वजह से नहीं आया, हमने अपने भीतर अहंकार पाल रखा है, मैं मेरे के प्रति आसक्ति पैदा कर रखी है, मैं इतना बड़ा आदमी और मुझे गाली, और वो भी इस व्यक्ति ने। इससे अहंकार और आसक्ति को ठेस पहुंचती है, तब क्रोध आता है। अहंकार रहित व्यक्ति को क्रोध नहीं आएगा क्योंकि क्रोध आने का कोई कारण ही नहीं है। जब भी कोई व्यक्ति चोरी करता है तो उसके भीतर जागने वाला विकार लोभ होता है। बिना लोभ जगाए कोई व्यक्ति चोरी कर ही नहीं सकता। जब भी कोई व्यक्ति किसी जीव की हत्या करता है तो क्रोध, क्रूरता या लोभ जगाना ही पड़ता है। क्रोध में मनुष्य की आंखें बंद हो जाती हैं और जुबान खुल जाती है, वह दूसरों की गलतियों की सजा स्वयं को देने लगता है और बाद में पश्चाताप भी करता है। क्रोध से हमारा स्वास्थ्य भी बिगड़ता है। इस विकार से हमें बचना ही चाहिए। जब भी किसी पर क्रोध आता है तो उसे अपने भीतर के जब भी किसी पर क्रोध आता है तो अपने भीतर के अहंकार को देखें, जानें और उसे विनम्रता में बदल दें, और जिस पर क्रोध आया उसे क्षमा कर दें। जब लोभ जागे तो झोंपड़ी वालों को देख करके अपने भीतर संतोष धारण करें। संतोष का अर्थ है जो है उसी में जीना, जो नहीं है उसकी कामना नहीं करना। हर चीज को साक्षी भाव से देखना सीखें। यदि हम क्रोध को भी साक्षी भाव से देखते हैं तो क्रोध क्षीण हो जाता है। साक्षी भाव का अर्थ है जैसे कोई व्यक्ति नदी के किनारे बैठकर नदी में बहते पानी को केवल देखता है, वह न तो इसे अच्छा मानता है और न ही बुरा, वो तटस्थ रहता है। जब भी कोई व्यक्ति क्रोध करता है तो कुदरत और प्रकृति उसे तुरंत जब भी कोई व्यक्ति क्रोध करता है तो कुदरत या प्रकृति उसे तुरंत उसी क्षण दंड देती है। व्यक्ति बेचैन और व्याकुल हो जाता है। इस बेचैनी और व्याकुलता को वो व्यक्ति अपने तक सीमित नहीं रखता, जो कोई भी उसके संपर्क में आता है वो उसे भी बेचैन और व्याकुल बना देता है। अपने आप को इन सभी विकारों से विमुक्त करके निर्मल होना है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने साफ साफ कहा है, कोई भी व्यक्ति बिना शुद्ध हृदय के परमात्मा के सामने उपस्थित नहीं हो सकता। परमात्मा को पाने का अर्थ है चित्त की शांत अवस्था। शुद्ध आचरण से अपने चित्त को शुद्ध करें, निर्मल करें, ताकि उस अवस्था का अनुभव करने की पात्रता आए और अपने मंगल भावों की तरंगों से पूरे वातावरण को तरंगित करते रहें, सुख पहुंचाते रहें।
1: अभी आपने चिंतन सुना। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है।

0: यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। खेतिहर आवास कार्यक्रम में प्रातः 7:10 पर किसान भाइयों के लिए जानकारी का विषय रहेगा, चारे के लिए लोबिया की खेती। खेत खलियान में दोपहर 12:50 पर किसान भाई जानकारी सुनेंगे, अजोला पशुओं के लिए संतुलित आहार। और मंगल में सुबह 9:10 पर कलाकार होंगे मंथन डावरा। ग्रामीण महिलाएं घरांगन कार्यक्रम सुनेंगी। दोपहर 1:05 पर जानकारी के विषय रहेंगे, रिटायरमेंट के बाद करें स्मार्ट प्लानिंग, स्क्रीन से लगाव, छिन रहा है बचपन, बदलते मौसम में एलर्जी से बचाओ, अजवाइन के फायदे, गीत भी सुनवाए जाएंगे। मानस गान आप सुना करते हैं प्रातः 7:20 पर, भाग संख्या होगी 290। सुप्रभात कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा सुबह 7:30 पर। कुछ भजन आप सुन सकते हैं सुबह 8:45 पर। फिल्म संगीत का समय रहेगा सुबह 9:30, दिन में 11:00, दोपहर 2:30 और रात 10:45। गा मेरे मन का ये कार्यक्रम होगा सुबह 10:00। एक ही शीर्षक से कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा दोपहर 12:05 पर। सुगम संगीत का समय रहेगा दोपहर 12:30। सराकी का प्रसारण किया जाएगा शाम 6:05 पर। द ओवल स्टेडियम लंदन में आयोजित होने वाले ICC T20 महिला क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट 2026 के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज़ के मध्य खेले जाने वाले पहले सेमीफाइनल क्रिकेट मैच की आप ट्यूब कमेंट्री का प्रसारण हम आपको सुनवाएंगे संध्या 7:00 से। युवा साथी युवाणी कार्यक्रम सुनेंगे शाम 5:00। उर्दू सर्विस के कार्यक्रम दिन में 3:00। जिले की चिट्ठी शाम 6:40 पर। हम अपने जयपुर केंद्र से रिले करेंगे। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। प्रातः के 6:55 हो रहे हैं। अब आप समाचार सुनेंगे। समाचारों को हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। नवदिल्ल्यां राष्ट्रपतिभवने ह्यः 26,000 द्वितीय रक्षा अलंकरण समारोहे राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुवर्या शौर्यपुरस्कारान् प्रदत्तवती। शौर्यपुरस्काराः रक्षासैन्यबलानां, केन्द्रीय सशस्त्र आरक्षकबलानां, केन्द्रशासित आरक्षकाणां, कार्मिकाणां च कृते प्रदीयन्ते। एते पुरस्काराः सशस्त्रबलानां, केन्द्रीय सशस्त्र आरक्षिबलानां, अन्य सुरक्षा अभिकरणानां च कार्मिकाणां असाधारण शौर्य कार्यान् उद्दिश्य प्रदीयन्ते। राष्ट्रपतिना समारोहे 7 सर्वोत्तमयुद्धसेवापदकानि, 30 परमविशिष्टसेवापदकानि, 12 उत्तमयुद्धसेवापदकानि, 56 अतिविशिष्टसेवापदकानि च वितरितानि। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णनवर्यः, रक्षामन्त्री राजनाथसिंहः, अन्ये केन्द्रीयमन्त्रिणः, सशस्त्रसेनायाः वरिष्ठाः

0: अधिकारिणः च अस्मिन् अवसरे उपस्थिताः आसन्। राष्ट्रपतिः मुर्मुः वर्या इतः पूर्वम् अस्मिन् मासे अष्टदिनाङ्के राष्ट्रपतिभवने रक्षा अलङ्करण समारोहे प्रथमचरणस्य शौर्यपुरस्कारान् प्रदत्तवती। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी ह्यः अवदत् यत् तस्य सेशेल्स् देशस्य यात्रा महत्वपूर्णैः परिणामैः पूरितम् आसीत्, येन भारत सेशेल्स् देशयोः मैत्री प्रवर्धिता भविष्यति। सामाजिकान्तर्जालीये सन्देशे प्रधानमन्त्री अवदत् यत् विगत 15 वर्षेषु उभयोः देशयोः मध्ये सम्बन्धः सुदृढविश्वासेन संयुक्तप्रगतिना च चिह्नितः अस्ति, यदा तु आगामि 50 वर्षाणि नवान्वेषणेन सुस्थिरतया संयुक्तसमृद्ध्या च निर्धारिताः भविष्यन्ति। सः सेशेल्स देशस्य स्वातन्त्र्यस्य 50वें वर्षे राष्ट्रियदिवसस्य समारोहे भागग्रहणाय हर्षं प्रकटितवान्। श्रीमोदी सेशेल्स देशस्य राष्ट्रपत्ये डॉ. पैट्रिक हर्मिनी इत्यस्मै सेशेल्स देशस्य सर्वकाराय जनानां च स्नेहाय धन्यवादम् अददात्। राष्ट्रिय निवेशावसंरचना कोषस्य नीफ इत्यस्य कृते सर्वकारस्य समग्र प्रतिबद्धता अधुना 60,000 कोटि रूप्यकाणि अभवत्। एतत् उपक्रमं मूलसौकर्याणां कृते अन्येषु राष्ट्रिय महत्वपूर्णेषु क्षेत्रेषु च केन्द्रस्य निवेशप्रतिबद्धतां प्रदर्शयति। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन गतसप्ताहे आधारभूत संरचना निवेशस्य गतिं वर्धयितुं देशे संस्थागत मूलधनम् उत्प्रेरयितुं च निधौ 30,000 कोटि रूप्यकाणां अतिरिक्त निवेश प्रतिबद्धतानुमोदिता। केन्द्रीय कृषि कृषक कल्याण मन्त्री शिवराज सिंह चौहानः अद्य आरभ्य पूर्वोत्तरस्य द्विदिवसीय यात्रायां भविष्यति। श्री चौहानः असम राज्यस्य गुवाहाटी नगरे उच्चस्तरीय समीक्षा सभायाः आयोजनं करिष्यति। सभायाम् असम राज्यस्य समीपस्थेषु क्षेत्रेषु सस्येषु ग्रामेषु महत्वपूर्ण जलसंरचनायां च जलप्लावस्य प्रभावस्य समीक्षा भविष्यति। वर्तमान सहायोद्धार कार्याणां प्रगतेः समीक्षापि भवितुं शक्नोति। असमराज्यस्य समीक्षायाः अनन्तरं श्रीचौहानः श्वः अरुणाचलप्रदेशस्य जलप्लावितक्षेत्राणां निरीक्षणं विधास्यति। सः जलप्लावितानां ग्रामाणां कृषिक्षेत्राणां सहायोद्धारशिबिराणां च स्थित्याः मूल्याङ्कनं कर्तुं वायुमार्गेण भूमार्गेण च सर्वेक्षणं करिष्यति। जुलाई मासस्य तृतीयदिनाङ्कादारभ्यमाणस्य 50 दिवसात्मिकायाः वार्षिक अमरनाथयात्रायाः प्राक् सुरक्षासंस्थाः पञ्जाबतः जम्मूकश्मीरपर्यन्तं तीर्थयात्रामार्गे सज्जतां तीव्रीकृतवन्तः। मोक्ड्रिल् इति आचरन्ति, निरीक्षणप्रणालीं सक्रियं कुर्वन्ति। सहस्रशः तीर्थयात्रिणां सुरक्षितगमनागमनं सुनिश्चेतुम् अन्ता संस्था समन्वयं सुदृढं कुर्वन्ति च इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर 1 जुलाई से ये प्रतिबंध हट जाएंगे। मंत्रालय के अनुसार पश्चिम एशिया संकट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई थी, इस वजह से 12 जून से अस्थायी प्रतिबंध लगाए गए थे। इसके तहत एक ग्राहक या वाहन को एक दिन में अधिकतम 200 लीटर डीजल देने की सीमा तय की गई थी। इसका उद्देश्य कालाबाजारी और जमाखोरी रोकना तथा सभी उपभोक्ताओं को पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना था। मंत्रालय ने कहा कि अब देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सामान्य हो गई है, इसीलिए जनहित में इन अस्थायी प्रतिबंधों को वापस लेने का फैसला किया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि 2 जुलाई को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में विधेयक का मसौदा

0: किया जाएगा। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है। केंद्र सरकार ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए दो महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में ये निर्णय लिए गए। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय अध्ययन समूह का गठन किया है। ये समूह भारतीय सिनेमा के मौजूद अवसरों और चुनौतियों का अध्ययन कर उद्योग को मजबूत बनाने के सुझाव देगा। मंत्रालय ने राज्यों के लिए आदर्श राज्य सिनेमा विनियमन भी तैयार किए हैं और उन्हें अपनाने का अनुरोध किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से आंध्र प्रदेश के दो दिन के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज विजयनगरम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति का कल अनंतपुरम में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के भी प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाणा का दौरा करेंगे और खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में शामिल होंगे। वे किसानों से सीधे संवाद करेंगे। श्री चौहान वहां एक प्रदर्शनी में भी भाग लेंगे। इसके बाद कृषि मंत्री पूर्वोत्तर के दो दिन के दौरे पर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांवों और बुनियादी ढांचे की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। दिल्ली मंत्रिमंडल ने दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी है। ये नीति कल से चरणबद्ध ढंग से लागू होगी। इसका उद्देश्य 31 मार्च 2030 तक दिल्ली को शून्य उत्सर्जन परिवहन की दिशा में आगे बढ़ाना और प्रदूषण कम करना है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार अगले चार वर्षों में इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास पर 8000 करोड़ रुपए खर्च करेगी।
1: पूरी की पूरी पॉलिसी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर केंद्रित है। इस पूरी ईवी पॉलिसी के अंतर्गत हमारा 7000 करोड़ का खर्च तो मात्र इन चार सालों में होगा और इसके अलावा 8000 करोड़ अन्य हम लोग इस ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने में और जो साल दर साल रोड टैक्सेस जो माफ होंगे उसमें हमने कैलकुलेट किया है, तो लगभग 15000 करोड़ का लाभ दिल्ली की जनता को इस ईवी पॉलिसी के माध्यम से होने वाला है।
0: भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 36 नागरिकों की मौत जबकि 163 लोगों के घायल होने की खबर है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान की यह कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में पैराग्वे ने जर्मनी को एक कड़े मुकाबले में हरा दिया है। दोनों टीमें निर्धारित समय पर एक एक गोल की बराबरी पर थीं। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में पैराग्वे ने जर्मनी को 4-3 से हराया। इसके साथ ही पैराग्वे राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर गई है, जबकि जर्मनी विश्व कप से बाहर हो गई है। वहीं ब्राजील भी राउंड ऑफ 16 में पहुँच गया है। ब्राजील ने रोमांचक मुकाबले में जापान को 2-1 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। The government has decided to withdraw the temporary regulatory measures governing the sale and distribution of petrol and diesel. The Minister of Petroleum and Natural Gas said that with effect from tomorrow, the temporary measures will be lifted from motor spirit and high-speed diesel through retail outlets or public sector oil marketing companies. According to the statement, during the period of disruptions arising from the West Asia crisis, the government continued to shield retail consumers from the sharp increase in international fuel prices by maintaining stable retail prices of petrol and diesel. This led to a significant price difference between retail fuel prices and those applicable to bulk consumers. Union Information and Broadcasting Ministry has announced two major decisions aimed at boosting the Indian film industry. The decisions were taken at a high-level review meeting chaired by Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav in New Delhi yesterday. We have a report.
3: The meeting focused on measures to enhance film production, improve distribution networks, and integrate emerging technologies into the Indian cinema ecosystem.

0: लोबिया की खेती कर सका। और जब तक खेत को चुनाव और तैयारी की बात है किसान भाइयों, लोबिया की खेती खातर दोमट मिट्टी उपयुक्त मानी जाए। खेत समतल और पानी भराव से मुक्त होना चाहिए और खेत की तैयारी है बा हैरो द्वारा दो जुताई अपन है करके तैयारी करनी चाहिए। और बुआई को जब तक समय है वो इनको बुआई मार्च से लेके मध्य जुलाई तक अपा कर सका। और सिंचित क्षेत्र का माह इन अपा मार्च अप्रैल में भी बो सका। और वर्षा ऋतु को माह मानसून प्रारंभ होते ही अपा इनकी बुआई जिकी अपन है कर देनी चाहिए। यानी यह केस कहा कि साल का माह लोबिया की खेती है जिकी अपा दो बार ले सका। अपना किसान भाई जिका लोग है पूरा साल भर चारों इनको ले सके। अब बात करें किसान भाई अपा बीज की और बुआई की, तो ग्रीष्म ऋतु में इनकी बुआई पोरा या ड्रिल मशीन से अपन करनी चाहिए। और वर्षा ऋतु में 10 किलोग्राम बीज को अपन लेके प्रति बीघा के हिसाब से अपन बीज देनी चाहिए। और इन कतारों कतारों की दूरी है 30 सेंटीमीटर अपन रखनी है। और मिलुआ बोना पर अपन यानी कि दूसरी जिकी चारा की किस्म है बन अगर अपन लेके सागे मिला के बीजांगा तो एक तिहाई अदो जो को बीज अबूंगी अपन है जरूरत पड़ेगी। और जब तक खाद और उर्वरक की बात है किसान भैया, तो शुद्ध फसल का मापन है 10 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से गोबर की गली सड़ी खाद है वह बुआई से पहले अपन दे देनी है। और इनके अलावा 20 किलोग्राम नत्रजन और 40 किलोग्राम फास्फोरस प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अपन ने दे देनी चाहिए। बीज तो देखो तो आ नाइट्रोजन युक्त एक फसल है और इनमें खाद की ज्यादा जरूरत कौन पड़े नहीं, फिर भी अपन ने देनी जरूरी है। और जब तक खरपतवार नियंत्रण की बात है किसान भाइयों, तो फसल ने खरपतवारों मुक्त रखना जरूरी है। इन वास्ते अपन ने एक दो निराई गुड़ाई कर देनी चाहिए। और जब बढ़वारगी अवस्था हो तो अपन एक रू फिर इनमें निराई गुड़ाई जिकी पा कर देवा। और सिंचाई किसान भाइयों में अपन ने गर्मी के टाइम का मां जब फसल बीज दी अपा तो करीब 15-20 दिन बाद का मां अपन ने मानसून आने तक सिंचाई करते रहना चाहिए। और वर्षा ऋतु का मां जरूर तोड़ना पर अपने एक दो सिंचाई जकी दे देनी चाहिए। तो आम बातों को ध्यान रखे किसान भाई लोग जगह लोबिया की खेती ले सके, लेकिन आप चवणा की खेती भी कह देवा। और आ एक पौष्टिक फसल है, पौष्टिक खेती है, पौष्टिक हरो चारो है। वो तो दुधारू पशुओं के लिए छोटा बछड़िया के लिए जो लोबिया को चारो है वो अच्छो है। और अब कटाई और उपजी जड़ तक बात है किसान भाइयों, तो पहली कटाई को उपयुक्त समय बुआई 50-55 दिन बाद में अपन है जब पौधा पर फलियां बननी शुरू हो जाए तो कर लेनी चाहिए। और गर्मी में टाइम का मां फसल में दो कटाइयां अपन ले सका, 30-35 दिन का अंतराल का मां दो कटाई अपन ले लेवा। तो खरीफी फसल का मां किसान भाइयों अपन एक ही कटाई ले सका। और जब तक सावनी की बात है किसान भाइयों, तो लोबिया की खेती से अपन 200 क्विंटल लोबिया को चारो ले सका। और गर्मी का मां लोबिया को चारो है वो 400 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अपा ले सका। तो ई त्रिया किसान भाई लोग है जगह पे पूरा ध्यान रखे, अच्छी किस्म लेगे, उन्नत किस्म लेगे और अच्छी त्रिया जमीन ने जुताई करगे और पानी धानी लगागे लोबिया की हरे चारा की खेती अपा ले सके। और दुधारू पशुओं के लिए वो एक पौष्टिक चारो है और उन्नत खेती के तौर पर अपा इन्हें कर सका। तो आ बातों को ध्यान रखे लोबिया की खेती ले सका। पर अब हूं चालू राम राम शाह राम राम।
1: खेती और अवस्थे कार्यक्रम में अभी किसान भाई जानकारी सुन रहे थे हरे चारे के लिए लोबिया की खेती। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए लोक भजन, कलाकार हैं राम जसवाल की और पार्टी।
2: अब कर दूं भर

अभी आप लोग भजन सुन रहे थे, कलाकार थे राम जस वाल्मीकि और साथी। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम मानस गान, भाग संख्या है 290।

लंका दहन करके पवनसुत हनुमान सीता जी का समाचार लेकर समुद्र के इस पार आ चुके हैं। प्रभु से निवेदन करते हैं, हे करुणा निधि, अशोक वाटिका में सीता माता का एक एक पल कल्प के समान बीत रहा है, अतः शीघ्र ही चलकर दुष्टों का नाश

तलाश करके उन्हें ले आइए। जनक नंदिनी के क्लेश का वर्णन सुनकर श्री राम की आंखों में अश्रु उमड़ आए। बोले, मन वचन और तन से जिसे केवल मेरा ही आसरा है, उस पर कोई विपत्ति नहीं आ सकती। हे पुत्र, तुम्हारे समान मेरा उपकार करने वाला कोई भी देव, मनुष्य अथवा अन्य तनधारी नहीं है। मैं तुमसे कभी उऋण नहीं हो सकता। प्रभु के ऐसे वचन सुनकर हनुमान उनके चरणों में आ गिरते हैं।

अभी आप मानस गान सुन रहे थे, भाग संख्या थी 290। यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुप्रभात। सुप्रभात कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। दोस्तों, परोपकार का अर्थ है दूसरों की भलाई करना। परोपकार के समान कोई धर्म नहीं है। परोपकार ऐसा धर्म है जिसे शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, शुभ कर्म करने वालों का न तो इस लोक में

कहीं परलोक में विनाश होता है। सच्चा परोपकारी वही है जो फल की इच्छा न रखते हुए परोपकार करता है। असल में सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि, जल, आकाश, पृथ्वी, पेड़ पौधे आदि सभी मानव कल्याण में लगे रहते हैं। ऐसे में हर मानव का कर्तव्य है कि वह दूसरों के काम आए, दूसरों की भलाई के बारे में सोचे। समाज में ऐसे सन्यासी भी हुए हैं जिन्होंने मानव कल्याण में अपना जीवन समर्पित कर दिया। महर्षि दधीचि ने अपनी अस्थियां तक दान कर दी, जिससे इंद्र ने अस्त्र बनाए, राक्षसों से लड़े और मानव को सुखी बना सके।

दोस्तों जल ही जीवन है, यानी जहाँ पानी होता है वहीं जीवन होता है। जल हमें प्रकृति के द्वारा दिया गया है तो हमें इसका सम्मान करना चाहिए, जल को व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। मनुष्य, जीव जंतु, पेड़ पौधे सभी के लिए जल आवश्यक है। जल के बिना जीवन असंभव है। बिना जल के ना तो मनुष्य जी सकता है और ना ही अन्य प्राणी। जल है तो कल है, यानी यही सोच रखते हुए हमें उसका मूल्य समझना चाहिए। क्या हम जल के महत्व को समझ पा रहे हैं? हमें ज़रूरत है जल संवर्धन की, हमें ज़रूरत है जल प्रदूषण रोकने की, हमें ज़रूरत है जल बचाने की। हम सभी को मिलकर जल ही जीवन है इस वाक्य को दिल से स्वीकार करने की।

दोस्तों, मन के जीते जीत मन के हारे हार। संत कबीर का यह दोहा हमें शिक्षा देता है, सफलता या असफलता हमारे मनोबल पर निर्भर करती है। यदि हम मन से हार मान लेते हैं तो हार निश्चित है, और अगर हम किसी कार्य को करने का मन में ठान लें तो हम सफलता अवश्य प्राप्त कर लेंगे। ये प्रसिद्ध दोहा मनुष्य के मानसिक बल और आत्मविश्वास के महत्व को दर्शाता है, क्योंकि हमारी सफलता और असफलता परिस्थिति पर नहीं बल्कि हमारी सोच पर निर्भर करती है। अगर हम मन में दृढ़ संकल्प लें तो कोई भी बाधा हमें सफल होने से रोक नहीं सकती।

दोस्तों, मनुष्य का मन ही सबसे बड़ी शक्ति है। जब हम किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मानसिक रूप से तैयार होते हैं तो शारीरिक परेशानियां और अभाव भी छोटे लगने लगते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण और अटूट आत्मविश्वास असफलता को भी सफलता में बदल देते हैं। जीवन में चाहे कितने भी मुश्किलें आएँ, यदि व्यक्ति अपने मन को मजबूत रखे और निरंतर प्रयास करता रहे तो वह हर मुश्किल को पार कर सकता है। इसलिए हमें आशावादी होना चाहिए, क्योंकि मन की दृढ़ता ही असली जीत की कुंजी है।

सुप्रभात कार्यक्रम का प्रसारण कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से किया जा रहा है। कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में ये नगमा। फिल्म का नाम है दुनियादारी।

0: अभी आप सुप्रभात कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। प्रातः के 8 बजने वाले हैं। अब आप समाचार सुनेंगे। समाचारों को हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से पेट्रोल और डीजल की बिक्री और वितरण पर लगे अस्थायी प्रतिबंध हटाए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, राज्य में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा की। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी। 30 लाख रुपए तक की कारों को सड़क कर और पंजीकरण शुल्क से छूट दी। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की। हमलों में 36 नागरिकों की मौत और 163 अन्य घायल। अमेरिका और ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य पर जारी विवाद को सुलझाने के लिए आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता करेंगे। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर 1 जुलाई से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मंत्रालय के अनुसार पश्चिम एशिया संकट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, लेकिन सरकार ने आम लोगों को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमत में बढ़ोतरी नहीं की। इससे खुदरा और थोक कीमतों में अंतर आ गया है। इसी वजह से 12 जून में अस्थायी प्रतिबंध लगाए गए थे। इसके तहत एक ग्राहक या वाहन को एक दिन में अधिकतम 200 लीटर डीजल देने की सीमा तय की गई थी। इसका उद्देश्य काला बाजारी और जमाखोरी रोकना तथा सभी उपभोक्ताओं को पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना था। मंत्रालय ने कहा कि अब देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सामान्य हो गई है, इसलिए जनहित में इन अस्थायी प्रतिबंधों को वापस

0: लेने का फैसला लिया गया है। अमन की रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में UCC लागू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में घोषणा की कि विधेयक की मसौदा गुरुवार को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। गुजरात, उत्तराखंड और असम की तर्ज पर सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन देसाई के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि समिति विवाह, तलाक सहित कुल 9 विषय पर अध्ययन करेगी और 4 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि अनुसूचित जनजातीय, आदिवासियों, कुर्मी और प्राचीन स्वदेशी समुदाय को इस कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
1: सरकार ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 2 महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में ये निर्णय लिए गए। एक रिपोर्ट।
3: इन फैसलों का उद्देश्य भारतीय सिनेमा को वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना और फिल्म निर्माण के लिए बेहतर माहौल तैयार करना है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय अध्ययन समूह का गठन किया है। ये समूह भारतीय सिनेमा के सामने मौजूद अवसरों और चुनौतियों का अध्ययन कर उद्योग को मजबूत बनाने के सुझाव देगा। मंत्रालय ने राज्यों के लिए आदर्श राज्य सिनेमा विनियम भी तैयार किए हैं और उन्हें अपनाने का अनुरोध किया है। सरकार का कहना है कि इससे देश में आधुनिक, मजबूत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी फिल्म उद्योग के विकास को बढ़ावा मिलेगा। अमन यादव की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के आंध्र प्रदेश दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज विजयनगरम में स्थित केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति का कल अनंतपुरम में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के भी प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाणा का दौरा करेंगे और खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में शामिल होंगे। कृषि मंत्री किसानों से सीधे बातचीत करेंगे। श्री चौहान का वहां एक प्रदर्शनी में भी भाग लेने का कार्यक्रम है। इसके बाद कृषि मंत्री पूर्वोत्तर के 2 दिन के दौरे पर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांवों और बुनियादी ढांचे की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। श्री चौहान कल अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई और जमीनी सर्वेक्षण करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी केंद्रीय सरकारी विभागों और संस्थानों को आज से आवारा कुत्तों के हमलों से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। सभी संबंधित विभागों से तय समय सीमा के भीतर दिशा निर्देश लागू करने को कहा गया है। यह आदेश पिछले वर्ष सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद जारी किया गया है। इसका उद्देश्य विशेष रूप से बच्चों और मरीजों के लिए सार्वजनिक स्थानों को अधिक सुरक्षित बनाना है। दिल्ली सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी है। इसके अंतर्गत 30 लाख रुपए तक की इलेक्ट्रिक कारों पर सड़क कर और पंजीकरण शुल्क नहीं लगेगा। नीति के अनुसार पुराना वाहन स्क्रैप कर नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 1 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये नीति 1 जुलाई से अगले 4 वर्षों में चरणबद्ध ढंग से लागू की जाएगी। इसका उद्देश्य 31 मार्च 2030 तक दिल्ली को प्रदूषण मुक्त और शून्य उत्सर्जन परिवहन वाला शहर बनाना है। उन्होंने कहा कि सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास पर 8,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी।
4: पूरी की पूरी पॉलिसी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर केंद्रित है। इस पूरी ईवी पॉलिसी के अंतर्गत हमारा 7,000 करोड़ का खर्च तो मात्र इन 4 सालों में होगा और इसके अलावा 8,000 करोड़ अन्य हम लोग इस ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने में और जो साल दर साल रोड टैक्सेस जो माफ होंगे उसमें हमने कैलकुलेट किया है, तो लगभग 15,000 करोड़ का लाभ दिल्ली की जनता को इस ईवी पॉलिसी के माध्यम से होने वाला है।
1: और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मतदाताओं को गणना प्रपत्र घर घर पहुंचाने का अभियान भी आज से शुरू हो रहा है। मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक हर घर जाकर प्रपत्र वितरित करेंगे और भरे हुए प्रपत्र भी प्राप्त करेंगे। उन्होंने बताया कि

0: दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दर्ज कराई जा सकेंगी। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 36 नागरिकों की मौत और 163 लोगों के घायल होने की खबर है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान की ये कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। मंत्रालय ने कहा कि यह पाकिस्तान के गैर जिम्मेदाराना रवैये को दर्शाता है। भारत ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की है। भारत ने अफगानिस्तान की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भी अपना समर्थन दोहराया है। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा हाल में घुसपैठ कर शिविर स्थापित करने संबंधित खबरों का खंडन किया है। सेना ने कहा कि ऐसी खबरें तथ्यहीन और निराधार हैं। अमेरिका और ईरान के बीच होर्मूज जलडमरू मध्य को लेकर विवाद पर आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता होगी। ये बातचीत हाल के सैन्य तनाव और अस्थायी युद्ध विराम के बाद हो रही है। एक रिपोर्ट।
1: विश्व के लगभग 20% कच्चे तेल का परिवहन इसी जलमार्ग से होता है। हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच मिसाइल हमलों के कारण होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही और व्यापार प्रभावित हुआ। हालांकि दोनों देशों ने कल अस्थायी युद्ध विराम पर सहमति जताई है। इस महीने हुए समझौता ज्ञापन की अलग अलग व्याख्या के कारण दोनों देशों के बीच फिर तनाव बढ़ गया था। दोनों देशों के बीच होने वाली इस वार्ता में सुरक्षित नौवहन व्यापार क्षेत्र में तनाव कम करने के उपायों पर चर्चा होने की संभावना है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: 3 जुलाई से शुरू हो रही पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर और पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। 57 दिन की इस यात्रा से पहले श्रद्धालुओं का पहला जत्था जम्मू पहुंचने लगा है। जम्मू में सीसीटीवी कैमरों और आधुनिक निगरानी प्रणाली को सक्रिय कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने तैयारियों का जायजा लेने के लिए एक मॉकड्रिल भी आयोजित की है। सुरक्षा एजेंसियों ने श्रद्धालुओं से निर्धारित मार्ग का पालन करने और सुरक्षा बलों के निर्देशों का सहयोग करने की अपील की है। झारखंड में आज हूल दिवस मनाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये दिवस जनजातीय क्रांतिकारियों सिद्धो कान्हो चांद भैरव और फूलो झानो के बलिदान के स्मरण में मनाया जाता है।
2: झारखंड के साहिबगंज जिले के भोगनाडी में हूल दिवस के अवसर पर हजारों लोग संथाल हूल के अमर शहीदों सिद्धू कान्हू चांद भैरव फूलो और झानो को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 30 जून 1855 को भोगनाडी से सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में अंग्रेजी शासन और महाजनी प्रथा के खिलाफ संथाल हूल का बिगुल फूका गया था। क्रांतिकारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को कई मोर्चों पर कड़ी चुनौती दी और आंदोलन लगभग एक वर्ष तक चला। इस संघर्ष के दौरान चांद और भैरव शहीद हो गए, जबकि बाद में सिद्धू और कान्हू को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर फांसी दे दी। झारखंड में हूल दिवस स्वाभिमान प्रतिरोध और जनजातीय अस्मिता का प्रमुख प्रतीक माना जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और गृह मंत्री अमित शाह ने हूल दिवस के अवसर पर क्रांतिकारियों और संथाल विद्रोह के अमर वीरों तथा वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की है। मौसम विभाग ने आज देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र बिहार कोंकण गोवा महाराष्ट्र कर्नाटक केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ओडिशा झारखंड उत्तर प्रदेश उत्तराखंड मध्य प्रदेश विदर्भ छत्तीसगढ़ तेलंगाना तमिलनाडु पुदुचेरी और कारिक्काल में भी कल तेज बारिश की संभावना है। दक्षिण पश्चिम मानसून के कल गुजरात मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड बिहार उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। जम्मू कश्मीर पूर्वी राजस्थान गुजरात मराठवाड़ा आंध्र प्रदेश और लक्षद्वीप में बिजली कड़कने और आंधी आने का अनुमान है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में 5 बार की चैंपियन ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। अमेरिका के ह्यूस्टन में खेले गए मुकाबले में गैब्रियल मार्टिनेली ने अतिरिक्त समय में विजयी गोल दागा। अब अंतिम 16 में ब्राजील का सामना आइवरी कोस्ट या नॉर्वे से होगा। एक अन्य मुकाबले में पराग्वे ने जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
3: धन्यवाद मुकेश।

0: राजधानी दिल्ली से छपे प्रमुख समाचार पत्रों ने आज दिल्ली में पहली जुलाई से लागू होने वाली नई ईवी नीति को अपने मुख पृष्ठ पर जगह दी है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, दिल्ली की नई ईवी नीति जारी, खरीद पर बम्पर छूट मिलेगी। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, ईवी पॉलिसी, रोड टैक्स, रजिस्ट्रेशन जीरो। दैनिक भास्कर ने छापा है, 30 लाख रुपए तक की ई कार टैक्स फ्री, पुरानी कार स्क्रैप करने पर 1 लाख रुपए। दैनिक जागरण ने इसी खबर पर संपादकीय आलेख में लिखा है, सर्दियों के दिनों में दिल्ली सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में शामिल हो जाती है, ऐसे में आवश्यक था कि राजधानी में प्रभावी ईवी नीति हो ताकि इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को प्रोत्साहित किया जा सके। दिल्ली सरकार को ऐसे वाहन चार्जिंग पॉइंट बनाने चाहिए जो वाहनों की बैटरी को तेजी से चार्ज करने में सक्षम हो। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 10वीं कक्षा के मौजूदा सत्र के विद्यार्थियों पर त्रिभाषा नीति लागू न करने का फैसला भी कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान के बोल हैं, 10वीं के मौजूदा सत्र पर त्रिभाषा नीति लागू नहीं होगी। पंजाब केसरी ने लिखा है, त्रिभाषा नीति पर छात्रों को बड़ी राहत। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में राजस्थान पत्रिका ने फैजाबाद बार एसोसिएशन का फैसला छापा है। पत्र लिखता है, वकील नहीं लड़ेंगे आरोपियों का केस, संत बोले आस्था पर आघात। वीर अर्जुन लिखता है, आरोपियों का केस लड़ने वाले वकीलों पर लगेगा 5 लाख का जुर्माना। 3 जुलाई से शुरू होने वाली पवित्र श्री अमरनाथ जी यात्रा पर भी समाचार पत्रों की नजर है। दैनिक ट्रिब्यून ने बाबा बर्फानी के प्रथम दर्शन को सचित्र प्रकाशित किया है। नवभारत टाइम्स ने भी पवित्र दर्शन का मनोरम चित्र मुखपृष्ठ पर छापा है। ओडिशा में भगवान जगन्नाथ मंदिर के सामने बड़ी संख्या में आए श्रद्धालुओं की तस्वीर भी अमर उजाला ने छापी है।
1: धन्यवाद सर फिरोजी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने पहली जुलाई से पेट्रोल और डीजल की बिक्री और वितरण पर लगे अस्थायी प्रतिबंध हटाए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, राज्य में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा की। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी। 30 लाख रुपए तक की कारों को सड़क कर और पंजीकरण शुल्क से छूट दी जाएगी। अमेरिका और ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य पर जारी विवाद को सुलझाने के लिए आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता करेंगे। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Center to withdraw temporary restrictions on sale and distribution of petrol and diesel from the 1st of July. West Bengal government to implement uniform civil code in the state, says Chief Minister Shubhendu Adhikari. Information and Broadcasting Ministry announces major decisions to boost Indian film industry. Delhi government clears electric vehicle policy, cars under 30 lakh rupees to be exempted from road tax and registration fees. India strongly condemns Pakistan airstrikes in residential areas of Afghanistan that killed 36 civilians and injured 163 others. US and Iran to hold talks in Qatar's capital Doha today to resolve their dispute over Strait of Hormuz. And in football, Brazil enter round of 16 at the FIFA World Cup after 2-1 victory over Japan in Houston, US. The government has decided to withdraw the temporary regulatory measures governing the sale and distribution of petrol and diesel. The Ministry of Petroleum and Natural Gas said that with effect from the 1st of July, that is tomorrow, the temporary measures will be lifted from motor spirit and high-speed diesel through retail outlets of public sector oil marketing companies. We have more from a correspondent.
3: According to the statement, during the period of disruptions arising from the West Asia crisis, the government continued to shield retail consumers from the sharp increase in the international fuel prices by maintaining stable retail prices of petrol and diesel. This led to a significant price difference between retail fuel prices and those applicable to bulk consumers. The ministry said that to address this situation, the temporary regulatory measures introduced on 12th of this month prescribed a temporary limit of 200 liters of high-speed diesel per consumer or vehicle per day at retail outlets and required in

0: collapsing trade in the Strait of Hormuz for multiple days. Later, US and Iranian officials agreed to temporary ceasefire yesterday after President Trump threatened to escalate the conflict. In football, Gabriel Martinelli scored the winning goal late in injury time to give five-time champion Brazil a 2-1 win over Japan in a round of 32 clash of the FIFA World Cup at Houston Stadium in Texas, US last night. In another round of 32 fixture, Germany got eliminated from the tournament after a 1-1 draw against Paraguay that led to a penalty shootout in Foxborough. Gustavo Alfaro's men held their nerve in the penalty shootout to secure a historic 4-3 victory. The India Meteorological Department, IMD, has issued an orange colour warning for very heavy rainfall over parts of northeast India, sub-Himalayan West Bengal, Bihar, Konkan, Goa, Maharashtra, Karnataka, Kerala and Mahe today. Heavy rainfall is also expected over Odisha, Jharkhand, Uttar Pradesh, Uttarakhand, Madhya Pradesh, Vidarbha, Chhattisgarh, Telangana, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal for tomorrow. And now, for a look at today's newspapers, it's over to V.C. Pramod.
1: Thank you, Abhishek. A month-long special intensive revision SIR of the electoral roll beginning today is covered by some of the dailies. SIR process begins in Delhi and four states today, reports the Asian Age. Voter verification drive begins in Delhi today, leads the Times of India. The statesman quoting Prime Minister Narendra Modi says, Indian diaspora living bridge between India, Seychelles. Bengal passes preventive detention legal curbs bill, notes the Hindu. Prime Minister to skip Khamenei's state funeral leads the Asian Age. And finally, Delhi mandates all two new wheelers to be electric from 2028 to fight pollution, reports the Indian Express. And with that, it's back to you, Abhishek.
0: Thank you, Pramod. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Centre to withdraw temporary restrictions on sale and distribution of petrol and diesel from the 1st of July. West Bengal government to implement uniform civil code in the state, says Chief Minister Shubhendu Adhikari. Information and Broadcasting Minister announces major decisions to boost Indian film industry. Delhi government clears electric vehicles policy, cars under 30 lakh rupees to be exempted from road tax and registration fees. India strongly condemns Pakistan airstrikes in residential areas of Afghanistan that killed 36 civilians and injured 163 others. US and Iran to hold talks in Qatar's capital Doha today to resolve the dispute over Strait of Hormuz. And in football, Brazil enter round of 16. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं अब्दुल वाहिद। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। मरकजी हुकूमत ने 1 जुलाई से पेट्रोल और डीजल की फरोख्त और तकसीम पर आयद आरजी पाबंदियां खत्म करने का फैसला किया है। वज़ीर आला शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि मगरबी बंगाल सरकार रियासत में यकसां सिविल कोड नाफिज करेगी। इत्तलाआत और नशरियात की वजारत ने भारत की फिल्म इंडस्ट्री को फरोग देने के लिए अहम फैसलों का ऐलान किया है। दिल्ली हुकूमत ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों से मुतालिक पॉलिसी को मंजूरी दी है। 30 लाख रुपए तक की इलेक्ट्रिक गाड़ियों को रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस से मुस्तस्ना करार दिया गया है। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों पर पाकिस्तान के फजाई हमलों की सख्त मजम्मत की है। इन हमलों में 36 शहरी हलाक जबकि 163 अफराद जख्मी हो गए हैं। अमरीका और ईरान आबनाए हुरमुज से मुतालिक तनाज़े के हल के लिए आज कतर की राजधानी दोहा में बातचीत करेंगे। और फुटबॉल में अमरीका के ह्यूस्टन में ब्राज़ील जापान को 1-2 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। अब खबरें तफसील से। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की फरोख्त और तकसीम से मुतालिक आयद आरजी जाबता जाती पाबंदियां खत्म करने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत ने कहा है कि 1 जुलाई 2026 से सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियों के तमाम पेट्रोल पंप पर मोटर स्प्रिट और हाई स्पीड डीजल की फरोख्त पर आयद पाबंदियां खत्म कर दी जाएंगी। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
3: वजारत के बयान के मुताबिक मगरबी एशिया के बहरान के दौरान आलमी मंडी में ईंधन की कीमतों में शदीद इजाफा हुआ, ताहम हुकूमत ने मुल्क में पेट्रोल और डीजल की खुर्दा कीमतों को मुस्तहकम रखकर आम सार्फीन को इसके असरात से महफूज रखा।

उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में कल मूसलाधार बारिश की पेशगोई की गई है। आइंदा 3 जुलाई से शुरू होने वाली 57 रोज़ा सालाना अमरनाथ यात्रा के पेश नज़र सिक्योरिटी इदारों ने पंजाब से जम्मू कश्मीर तक यात्रा के पूरे रास्ते पर हिफाजती इंतजाम मजीद सख्त कर दिए हैं। यात्रियों की महफूज आमदोरफ्त को यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज मॉक ड्रिल कर रही हैं। निगरानी के जदीद निज़ाम फाल किए जा रहे हैं। ज़राअत और किसानों की बहबूद के मरकजी वज़ीर शिवराज सिंह चौहान

0: सिक्योरिटी फोर्सेज मॉक ड्रिल कर रही हैं, निगरानी के जदीद निज़ाम फाल किए जा रहे हैं। ज़राअत और किसानों की बहबूद के मरकज़ी वज़ीर शिवराज सिंह चौहान आज से शुमाल मशरिकी रियासतों का दोरोज़ा दौरा करेंगे। जनाब चौहान आसाम के गुवाहाटी में एक आला सतही जायजा मीटिंग की सदारत करेंगे। और अब अखबारात के आईने के साथ हैं मोहम्मद आजम।
1: कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के तकरीबन सभी उर्दू अखबारों ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के सेशल्स के दौरे को सफाए अव्वल पर नुमाया तौर पर शाये किया है। रोज़नामा प्रताप ने सुर्खी लगाई, सेशल्स के कामयाब दौरे के बाद वतन रवाना हुए मोदी। यकम जुलाई से पेट्रोल और डीजल घरेलू ईंधन से मुतालिक हंगामी इकदाम के खात्मे की खबर को भी उर्दू अखबार ने सफाए अव्वल पर जगह दी है। रोज़नामा सहाफ़त ने सुर्खी लगाई, ईरान अमरीका माहदे की पेश नज़र हुकूमत का अहम फैसला। राजस्थान हरियाणा आबी तनाज़े पर समझौती खबर को भी अखबार ने नुमाया तौर पर शाया किया है। रोज़नामा प्रताप ने सुर्खी लगाई, तकरीबन तीन दहाइयों पुराना मसला हल। दिल्ली समेत पांच रियासतों कर्नाटक मेघालय झारखंड और महाराष्ट्र में आज से SIR के आगाज़ की खबर को भी अखबार ने अहमियत के साथ शाया किया है। रोज़नामा इनकलाब ने सुर्खी लगाई, इलेक्शन कमीशन की तमाम शहरियों से ताउन की अपील। अखबारों में शाये होने वाली अहम बैनुल-अक़वामी खबरें इस तरह, अमरीका और ईरान हमले रोकने और मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने पर मुत्तफिक।
0: आखिर में खास खास खबरें एक मरतबा फिर। मरकजी हुकूमत ने यकम जुलाई से पेट्रोल और डीजल की फरोख्त और तकसीम पर आयद आरसी पाबंदियां खत्म करने का फैसला किया है। वज़ीरे आला शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि मगरबी बंगाल सरकार रियासत में यकसां सिविल कोड नाफिज करेगी। इत्तलात और नशरियात की वजारत ने भारत की फिल्म इंडस्ट्री को फरोग देने के लिए अहम फैसलों का ऐलान किया है। दिल्ली हुकूमत ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों से मुतालिक पॉलिसी को मंजूरी दी है। 30 लाख रुपए तक की इलेक्ट्रिक गाड़ियों को रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस से मुस्तस्ना करार दिया गया है। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों पर पाकिस्तान के फजाई हमलों की सख्त मजम्मत की है। इन हमलों में 36 शहरी हलाक जबकि 163 अफराद जख्मी हो गए हैं। अमरीका और ईरान आबनाए हुरमुज से मुतालिक तनाज़े के हल के लिए आज कतर की राजधानी दोहा में बातचीत करेंगे। इसके साथ ही यह खबरनामा ख़त्म हुआ।
2: हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए भजन, कलाकार हैं जगजीत सिंह।

0: अभी आप भजन सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। प्रातः के 9 बजने वाले हैं। अब आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे, जिसे हम अपने जयपुर केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मंत्रिमंडल ने बुनियादी ढांचा निवेश में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी। प्रदेश के राष्ट्रीय बाघ अभयारण्यों के कोर एरिया कल से पर्यटकों के लिए 3 महीने तक बंद रहेंगे। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कल से जयपुर में शुरू होगा और प्रदेश भर में उमस भरी गर्मी से जनजीवन बेहाल। 45.1 डिग्री सेल्सियस के साथ श्रीगंगानगर सबसे गर्म स्थान रहा। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष NIIF में सरकार का कुल निवेश अब 60,000 करोड़ रुपए हो गया है। ये बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय महत्व के अन्य क्षेत्रों में केंद्र की निवेश प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह अवसंरचना निवेश को गति देने और देश में संस्थागत पूंजी को बढ़ावा देने के लिए कोष में 30,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त निवेश की मंजूरी दी थी। वित्त मंत्रालय के अनुसार इस अतिरिक्त निवेश का उपयोग NIIF के अवसंरचना केंद्रित दूसरे कोष की स्थापना के लिए किया जाएगा। अवसंरचना कोष द्वितीय के लिए लगभग 30,000 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं और इससे परिवहन, ऊर्जा, डिजिटल और शहरी अवसंरचना तथा ई मोबिलिटी जैसे उभरते क्षेत्रों में निवेश किया जाएगा। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर 1 जुलाई से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। मंत्रालय के अनुसार पश्चिम एशिया संकट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई थी, लेकिन सरकार ने आम लोगों को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में बढ़ोतरी नहीं की। इससे खुदरा और थोक कीमतों में अंतर आ गया था। इसी वजह से 12 जून से अस्थायी प्रतिबंध लगाए गए।

0: थे। इसके तहत एक ग्राहक या वाहन को एक दिन में अधिकतम 200 लीटर डीजल देने की सीमा तय की गई थी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी केंद्रीय सरकारी विभागों और संस्थानों को आवारा कुत्तों के हमलों से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का आज से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। सभी संबंधित विभागों से तय समय सीमा के भीतर दिशा निर्देश लागू करने को कहा गया है। ये आदेश पिछले वर्ष सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद जारी किया गया है। इसका उद्देश्य विशेष रूप से बच्चों और मरीजों के लिए सार्वजनिक स्थानों को अधिक सुरक्षित बनाना है। प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान और बाघ अभयारण्य कल से पर्यटकों के लिए 3 महीने तक बंद रहेंगे। वन्य जीवों का प्रजनन काल और मॉनसून सत्र शुरू होने के कारण पर्यटन गतिविधियों में बदलाव किया गया है। अलवर के सरिस्का टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में पर्यटक नहीं जा सकेंगे। हालांकि बफर जोन में 2 रूट सैलानियों के लिए खुले रहेंगे। दूसरी ओर सवाईमाधोपुर के रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में आज वर्तमान पर्यटन सत्र का आखिरी दिन है, जिसके चलते वहां बड़ी संख्या में देशी विदेशी सैलानी पहुंच रहे हैं। और अधिक ब्यौरा दे रहे हैं हमारे सवाई माधोपुर संवाददाता।
1: बीते कई दिनों से देशी विदेशी तथा खास और आम सैलानियों की भारी भीड़ है। आज अंतिम दिन बाघों के दीदार के लिए पर्यटकों की विशेष भीड़ देखी जा रही है। गौरतलब है कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA के दिशा निर्देशों तथा मानसून के चलते कल से आगामी 3 माह के लिए प्रमुख भाग जोन नंबर 1 से 5 में पर्यटन पर पूरी तरह रोक रहेगी। हालांकि पूर्व की भांति जोन नंबर 6 से 10 में पर्यटन चालू रहेगा। अंतिम दिन बाघों के दीदार के लिए आज स्थानीय लोगों की भी विशेष भीड़ रहेगी। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाई माधोपुर।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, YouTube चैनल राजस्थान AIR News और Facebook AIR News राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कल से जयपुर में शुरू होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में 2 दिन के इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन सत्र को सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ भी संबोधित करेंगे। इस वर्ष सम्मेलन की थीम विकसित भारत 2047 AI enabled, data driven and secure digital governance रखी गई है। सम्मेलन में डिजिटल शासन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सुरक्षित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे तकनीकी पहलुओं पर देश भर के विशेषज्ञ मंथन करेंगे। सम्मेलन के दूसरे दिन केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह देश भर में ई गवर्नेंस के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले विजेताओं को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेंगे। कोटा बूंदी क्षेत्र को नशा मुक्त करने के लिए अगले 3 महीनों में विशेष अभियान चलाया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल कोटा में जिला प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में ये निर्देश दिए। उन्होंने इस दौरान विभिन्न विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने अपराध नियंत्रण के लिए मॉनिटरिंग सिस्टम को मजबूत करने और कैमरों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़ने की बात कही। इससे पहले श्री बिरला ने श्रीनाथपुरम स्टेडियम में विभिन्न खेल सुविधाओं का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार खेल सुविधाएं विकसित हों, इसके लिए लगातार काम किया जा रहा है।
2: लेकिन यहाँ बड़ी संख्या के अंदर लोग घूमने भी आते थे और इसलिए उनके लिए भी एथलेटिक का एक रास्ता बने और इसलिए 900 मीटर का ये वॉक वे भी उनके लिए बनाया ताकि खिलाड़ी भी परेशान है वॉक। और इसी स्टेडियम में सारी सुविधाएं, चाहे आप देखो शानदार रूप से बैडमिंटन हो, बास्केटबॉल हो, टेबल टेनिस हो, जिम हो, लॉन टेनिस हो, सारी सुविधाएं एक स्टेडियम की एक छत के नीचे, ताकि खिलाड़ी बहुआयामी प्रतिभा से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग ले सकें। आज जिम भी है।
0: राज्य सरकार के पंच गौरव कार्यक्रम के तहत चूरू जिले के लिए राज्य वृक्ष खेजड़ी को एक जिला एक वनस्पति के रूप में चयनित किया गया है। उपवन अधिकारी ने बताया कि जिले की विभिन्न पौधशालाओं में इस वर्ष 1.5 लाख से अधिक खेजड़ी और उसकी सह प्रजातियों के पौधे तैयार किए जा रहे हैं। इसके साथ ही वन विभाग द्वारा विभिन्न स्थानों पर खेजड़ी वाटिकाएं भी बनाई गई हैं।
3: इसके लिए चूरू वन विभाग 1.5 लाख के आसपास खेजड़ी उसकी सह प्रजातियों की

0: है जिनका वितरण 5 जून से प्रारंभ हो गया है। ये वितरण आमजन व अन्य विभाग के लिए है, उचित रूप से है विभागीय योजनाओं के अंतर्गत। और इसके अंतर्गत हमने इसी पंचगौर योजना के 2026 के अंतर्गत हमने 5 खिचड़ी वाटिकाएं बनाई है, जिन जो कि चूरू, तारानगर, राजगढ़, सरदारसर और रतनगढ़ में।
1: और अब मौसम। प्रदेश में उमस भरी गर्मी से जनजीवन बेहाल है। राज्य में अधिकतर स्थानों पर तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। औसत तापमान 40 डिग्री के आसपास बना हुआ है। 45.1 डिग्री सेल्सियस के साथ श्रीगंगानगर कल सबसे गर्म स्थान रहा। वहीं चूरू और बीकानेर में 42.8, बाड़मेर में 42.1 और जैसलमेर में 41.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड हुआ। मौसम विभाग के अनुसार जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ हिस्सों में अगले 3-4 दिन अधिकतम तापमान 42 से 44 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। इस दौरान हवा में नमी की मात्रा अधिक होने से उमस का असर बना रहेगा। इस बीच राज्य में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगामी दिनों में सक्रिय होने के आसार हैं। दक्षिण पूर्वी और पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में 2 जुलाई से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। इस दौरान कोटा और उदयपुर संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने जयपुर, भरतपुर, कोटा और बीकानेर संभाग में अगले 3-4 दिन गरज के साथ हल्की से मध्यम बरसात की संभावना व्यक्त की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुनियादी ढांचा निवेश में तेजी लाने और राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी है। प्रदेश के राष्ट्रीय बाघ अभ्यारण्यों के कोर एरिया कल से पर्यटकों के लिए 3 महीने तक बंद रहेंगे। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कल से जयपुर में होगा। और प्रदेश भर में उमस भरी गर्मी से जनजीवन बेहाल। 45.1 डिग्री सेल्सियस के साथ श्रीगंगानगर सबसे गर्म स्थान रहा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम मरुमंगल। कलाकार हैं मंथन डावरा।

मुरमंगल कार्यक्रम आप सुन रहे हैं कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से। कलाकार हैं मंथन डावरा, इनसे आप सुन रहे हैं भजन।

मुरमंगल में अभी आप मंथन डावरा को सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। दोस्तों, आज कल्याण जी आनंद जी जोड़ी के कल्याण जी का जन्मदिन है, तो हम आज कल्याण जी आनंद जी द्वारा संगीतबद्ध किए कुछ नगमे आपको सुनवा रहे हैं। आइए सुनिए कार्यक्रम का पहला गीत। फिल्म है मर्यादा।

दोस्तों, कल्याण जी आनंद जी हिंदी फिल्मों के एक अत्यंत लोकप्रिय संगीतकार जोड़ी थी, जिसमें बड़े भाई कल्याण जी वीरजी शाह और छोटे भाई आनंद जी वीरजी शाह शामिल थे। चार दशकों से अधिक के कैरियर में उन्होंने लगभग 250 फिल्मों में सदाबहार संगीत दिया और 1992 में उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। अब सुनिए ब्लैकमेल फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज में। संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी।

कल्याण जी का जन्म 30 जून 1928 को और आनंद जी का जन्म 2 मार्च 1933 को गुजरात के कच्छ ज़िले में हुआ था। उनका परिवार मुंबई आकर बस गया था। बचपन से ही संगीत के शौकीन इन भाइयों ने शुरुआती दिनों में मशहूर संगीतकार हेमंत कुमार के सहायक के रूप में भी काम किया। अब सुनिए मुकद्दर का सिकंदर फिल्म का गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में। संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी।

कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी ने 1960 में अपने छोटे भाई आनंद जी के साथ मिलकर कल्याण जी आनंद जी के नाम से संगीत देना शुरू किया। इसके बाद उन्होंने अनेकों सुपरहिट फिल्मों में संगीत दिया।

दिलदार को हर यार को बिल्कुल ना पहचाने, मेरी वफा एक दिन कुछ ऐसा रंग लाएगी के नाज़नी ज़ालिम हसीना मान जाएगी, हसीना मान जाएगी, हसीना

पुकार सरस्वती चंद्र जोनी मेरा नाम सच्चा झूठा डॉन जैसी अनेकों फिल्मों के साथ जंजीर फिल्म में भी संगीत दिया। ये संगीत आज भी लोगों की जुबान पर है।

जंजीर फिल्म के इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का हमारा ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आज इस कार्यक्रम में आपने कल्याण जी आनंद जी द्वारा संगीतबद्ध गीत सुने। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गा मेरे मन का। आज इस कार्यक्रम की थीम है सुंदरता की तारीफ। जब ये दिल किसी को चाहता है या किसी के प्रति आकर्षण होता है तो दुनिया की सारी सुंदरता उस महबूब में ही सिमटी सी नजर आती है। यही है प्रेम का अनोखा एहसास। आइए कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए। आवाज मोहम्मद रफी की है, फिल्म का नाम है दो रास्ते।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फूल बने अंगारे से, आवाज मुकेश की है, गीत अनजान ने लिखा है और संगीत बप्पी लाहिड़ी का है। उसके चेहरे की चमक के सामने सादा लगा, आसमां पर चांद पूरा था मगर आधा लगा।

लीजिए सुनिए, जीने की राह फिल्म का गीत आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की है, गीत आनंद बख्शी ने लिखा है और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

0: पुलिस।
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों, लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1 लाख दो, बच जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: दोस्तों, अब सुनिए कश्मीर की कली फिल्म का गीत। आवाज एक बार फिर मोहम्मद रफ़ी की है। अच्छी तो बहुत लगती हैं ये झील सी नीली आँखें, डरता हूँ कि इनमें गहराई बहुत है।

ये फिल्म नगमे आप सुन रहे हैं कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से। कार्यक्रम है गा मेरे मन का। अब सुनिए सरस्वती चंद्र फिल्म में लता मंगेशकर को गीत इंदिवर ने लिखा है और संगीत कल्याण जी आनंद जी का है। ये विशाल नयन जैसे नील गगन पंछी की तरह खो जाऊं मैं, सराहना हो जो तेरी बाहों का अंगारों पर सो जाऊं मैं।

लीजिए, अब सुनिए मोहम्मद रफ़ी को। फिल्म का नाम है धरती, गीत राजेंद्र कृष्ण ने लिखा है और संगीत शंकर जयकिशन का है। जहाँ चलते चलते कदम रुक गए हों, समझ लो बहारों की मंजिल वही है। खुदा की कसम, तू जहाँ से हंसी है, कोई दूसरा तुझसा मुमकिन नहीं है।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म अनमोल मोती से, आवाज महेंद्र कपूर की है, गीत राजेंद्र कृष्ण ने लिखा है और संगीत रवि का है। लबों पर है हंसी कातिल गजब जादू निगाहों में, कसम तुमको मोहब्बत की ऐसे ना आओ राहों में।

ये फिल्म नगमे आप सुन रहे हैं कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से। कार्यक्रम है गा मेरी मन का। हमारी आज की थीम है तारीफ। अब सुनिए परिवार फिल्म का नगमा महेंद्र कपूर की आवाज़ में। इधर देखते हैं उधर देखते हैं, नज़र आते हो तुम, हम जिधर देखते हैं।

0: आप सुनिए शहनाई फिल्म का गीत, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की है। संवारी गई होगी जब जुल्फें तेरी, उड़ी होगी लाखों फरिश्तों की नींदें, बनाए होंगे जब होठ तेरे, कई साल निकले न होंगे सवेरे।
1: न झटको जुल्फ से।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म अमानत से। आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की है, गीत साहिर ने लिखा है और संगीत रवि का है।

0: लीजिए, सुनिए अनोखी अदा फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज़ में, बस मुस्कुरा दो तबीयत खुश हो जाती है मेरी, सारे शहर में ढूंढ लिया हकीम तुम सा नहीं।
1: दिलों का न पूछो सनम आपका।

गा मेरे मन का कार्यक्रम की आखिर में सुनिए किस्मत फिल्म का गीत, आवाज महेंद्र कपूर की है। ये आपकी मस्ती का आलम, ये बहके हुए जज्बात मेरे, कहने को मैं कह न सका पर कहते हैं हालात मेरे।

इसी गीत के साथ गा मेरे मन गा कार्यक्रम अब संपन्न होता है। अपने दोस्त को दे इजाज़त, नमस्कार।

अब आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रही हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म प्यार ही प्यार से। आवाज मोहम्मद रफी की है।

अब सुनिए पारसमणि फिल्म से ये गीत, आवाज मोहम्मद रफ़ी की है, शब्द इंदिवर के हैं और धुन लक्ष्मीकांत प्यारीलाल की है।

ये फिल्म नगमा इस समय आप सुन रहे हैं कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म फिर वही दिल लाया हूँ से, आवाज़ आशा भोसले की है।

लीजिए, अब सुनिए मोहम्मद रफ़ी को। फिल्म का नाम है भरोसा। शब्दकार हैं राजेंद्र कृष्ण और संगीतकार हैं रवि।

गा मेरे मन का। श्रोताओ, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से। मैं हूं आपके साथ श्रीपाल शर्मा। साथियों, जीवन संघर्ष से भरा हुआ, समस्याएं लगातार हर इंसान को किसी न किसी रूप में जकड़कर पकड़कर रखती है। फिर भी संगीत वो दवा है परेशानियों की, एंजाइटी की, कि दिल से जब कोई सुर हमारे कानों में मिश्री घोलते हैं और हम सुनते हैं, तो कुछ देर के लिए ही सही हम वो सारी बातें, हम सारी परेशानियां एक बार के लिए भूल जाते हैं। जीवन में प्यार, जीवन के सफर में हम सफर जब साथ निभाने वाला हो,

हर वक्त हमारे साथ खड़ा हो, या यूं कहें कि हम भी किसी के साथ खड़े हों, तो ये जो साथ है उससे वो ताकत मिलती है कि इंसान हर संघर्ष में, हर परिस्थिति में समस्याओं से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वो भूल जाता है उन सारी बातों को, उन सारे दुखों को, किसी के साथ से, किसी के प्यार से, प्रेम से। और फिर साथ में जब संगीत का सुर हो तो फिर जीवन आसान लगता है और जिंदगी खूबसूरत लगने लग जाती है।

हेमलता और साथियों की आवाज़ में गीत अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था नदिया के पार। स्वतः गीतों के इस सफर में कार्यक्रम गा मेरे मन का आप सुन रहे हैं और बात हम कर रहे थे एक सच्चे जीवन साथी की, साथ निभाने वाले की, जो जीवन के सफ़र को, हम सफ़र ही होता है जो खूबसूरत बना देता है। कई बार जीवन की भागदौड़ में हम खुद को, अपने आप को अकेला महसूस करते हैं और ऐसे वक्त में, ऐसे सफ़र में जब साथ मिलता है हम सफ़र का, तो वाकई सुकून मिलता है। सलाम करने को जी चाहता है।

मोहम्मद रफ़ी, आसिफ भोंसले और साथियों की आवाज़ में बगावत फिल्म का गीत अभी आपने सुना। गीत रचना आनंद बख्शी की, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। श्रोताओं, जीवन के सफर में जीवन साथी का साथ मुश्किलों को, परेशानियों को, समस्याओं को दूर करता ही है, मगर कभी कभी हम सारे गम भुला करके और खुशी में इतने झूम उठते हैं कि प्यार में, प्रेम में, सादगी से मीठी मीठी नोक झोंक भी चलने लगती है।

और श्रोताओ, फिल्म संगीत के इस सफर में कार्यक्रम के आखिर में आइए हम आपको सुनवाते हैं आन मिलो सजना फिल्म का ये गीत, आवाज लता मंगेशकर की, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत आकाशवाणी का। ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। कार्यक्रम विवरण में सुनिए आज हमारे केंद्र से प्रसारित और अनुप्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण और उनका प्रसारण समय। अब से कुछ ही देर बाद यानी 12:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम एक ही शीर्षक से। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे बादल शीर्षक के कुछ गीत। चंद गज़लें आप सुनेंगे। 12:30 पर कार्यक्रम होगा सुगम संगीत। 12:50 पर खेत खलिहान कार्यक्रम में सुनिएगा जानकारी, ओजोला पशुओं के लिए संतुलित आहार। दिन में 1 आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार अनुप्रसारित किए जाएंगे। घर आंगन कार्यक्रम में 1:05 पर महिलाएं सुनेंगी जानकारी, रिटायरमेंट के बाद करें स्मार्ट प्लानिंग, स्क्रीन से लगाव, छिन रहा बचपन, बदलते मौसम में एलर्जी से बचाव, जानकारी देंगी शीला शर्मा।

कार्यक्रम विवरण में सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित और अनुप्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण और उनका प्रसारण समय। अब से कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे कार्यक्रम एक ही शीर्षक से। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे बादल शीर्षक के कुछ गीत। श्रोताओं, हम आपको बता दें आज संध्या

6:30 से रात्रि 10:45 तक द ओवल स्टेडियम लंदन में आयोजित होने वाले आईसीसी T20 महिला क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट 2026 के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के मध्य खेले जाने वाले पहले सेमीफाइनल क्रिकेट मैच की ऑफ ट्यूब कमेंट्री का प्रसारण आप सुनेंगे DRM चैनल मीडियम वेव और FM बैंड पर। यह प्रसारण मैच की समाप्ति तक चलेगा। हम आपको बता दें मैच का प्रसारण DRM चैनल मीडियम वेव और FM पर निर्बाध रूप से किया जाना है। संध्या 6:30 से 7 बजे तक और रात्रि 8:45 से 9:15 तक समाचारों के दौरान मैच का प्रसारण मीडियम वेव और FM पर रोका जाएगा। मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर मैच का प्रसारण नहीं किया जाना है। इस दौरान न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर फीडर का प्रसारण हमारे स्टूडियो से किया जाएगा।

ये थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित और अनुप्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण और उनका प्रसारण समय। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। आइए सुने कार्यक्रम एक ही शीर्षक से।

दिल में उमंगे अभी ताज़ा थी, बारिश का आना बाकी था, सावन का आना बाकी था, बादलों को बुलाना बाकी था। सभी सुनने वालों को नमस्कार, श्रीपाल शर्मा का।

स्वतो एक ही शीर्षक से कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं बादल शीर्षक के कुछ गीत। दोस्तों, मानसून का यही कमाल होता है, कभी आसमान बादलों से घिरा होता है तो कभी तेज हवाओं के साथ आसमां को सूना कर देता है कि गया वो बादल बरस के और छोड़ गया एक निशान, कुछ बूंदें दिल पे गिरी, कुछ बूंदें जमीन पे गिरी।

दोस्तों, बादलों का इंतज़ार तो सबको रहता है, और फिर मौसम जब ऐसा हो, गर्मी का हो, तो हर किसी को बादलों का इंतज़ार रहता है। हालांकि सावन का आना अभी बाकी है, मगर बादलों को कौन नहीं बुलाता। तपती धरती और गर्म हवाओं को जो ठंडक देता है, जो दिल को सुकून देता है, वही बादल सबको अच्छा लगता है। साथियों, बादलों को भी कई नामों से हम बुलाते हैं। सावन की घटाएं हो या काले बादल, साथियों वो कहते हैं ना कि कुछ बादल दिलों के भी होते हैं, जो जमी पे शायद बरसे न बरसे, आंखों में बरसते रहते हैं। उधर कुछ बादल जो आसमां के होते हैं, वो धरती को तरसाते हैं।

ऐ मुसाफिर आसमान के थोड़ा ठहर जा इधर, तेरे बिना ये धरती तपती है। ले अपनी झोली में वो रहमतों का पानी, जिससे खिल जाए फूल गुलिस्तां के सूखे हुए कमल। तेरा इंतज़ार करते करते आंखें नम सी हो गई। किसानों की उम्मीदें भी कम सी हो गई। अब तो आ आ और बरस जा एक बार, रहम कर दे हर सूखे आंगन को, हर सूखे खेत को हरा भरा कर दे।

साथियों, बारिश की उम्मीदों के साथ साथ बादलों का इंतज़ार कई वजहों से किया जाता है। किसान जब अपनी फसल को पकाने के लिए, धरती अपनी प्यास को बुझाने के लिए और हर कोई बरसात को बुलाने के लिए बादलों का इंतज़ार करता है, तो वहीं पुराने ज़माने के बादल साजन और सजनी के संदेशवाहक के रूप में भी काम करते आए हैं। जहां चिट्ठी नहीं पहुंचती थी तो दिल का हाल बादलों को सौंप दिया जाता था कि अकारे बदरा तू तो आज़ाद है, जहां चाहे उड़ ले, जहां चाहे बरस जा, पर मेरा एक छोटा सा पैगाम ले जा उस बुद्धू साजन को जो मेरी याद में उदास बैठा है, उससे कह कि मैं यहां तड़प रही हूं, तेरे बिना ये सावन सूना लगता है, एक झलक के लिए आंखें तरस रही है।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ आज का एक ही फिल्म से कार्यक्रम समाप्त करने की इसी पाल को इजाज़त दीजिए। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। दिन के 12:30 होने वाले हैं। आइए सुने कार्यक्रम सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं चंदन दास की गाई चंद गजलें।

0: आज आपने चंदन दास की गाई गजलें सुनी। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर, डीआरएम चैनल 909 किलोहर्ट्ज़ पर, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर। दिन के 12:50 हुए हैं। खेत खलिहान कार्यक्रम में किसान भाई सुने जानकारी, पशुओं के लिए संतुलित आहार कैसे बनाएं।
1: बहुत ज़्यादा जरूरी है। किसान भाइयों राम राम। किसान भाइयों बिया देखा तो अपना जो पशुपालक भाई है वे खेती का सागे सागे पशुपालन को जो व्यवसाय है वो बिक रहा है। तो जहाँ टाइम टाइम पर अपनी फसल ने खाद है, उर्वरक है या फिर कई तरह का जगह कीड़ा कांटा लगा है, रोग है, व्याधियां हैं, बांसू फसल ने बचाण खातर बांध बांध की जी की दवाइयां हैं और कई तरह की जी की खेचड़ है बापा करा भी तरह ही आपने जो पशुधन है बिन आप अच्छी तरह साल संभाल करके रखा, अच्छो उत्पादन लेवा, अच्छो दूध अपन मिले और पशु को जो स्वास्थ्य है वो भी अच्छो रहे, तो इन खातर भी अपना जो पशु है बांगो जो खान पान है, बांगो जो चारो है, बांगो जो आहार है बिंगो भी अपन टाइम सर ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और जब आप पशुओं ने अच्छो आहार देंगा तो अपना जो पशुधन है वो स्वस्थ रहेगो, निरोग रहेगो और अपन जो कि आमदन है अपन जो कि यहाँ के इसका दूध घी की बात है वह भी अच्छी मिलेगी। तो बात करें किसान भाइयों आज संतुलित आहार की, तो पशुओं के शारीरिक विकास खातर कई तरह जका आहार है भी अपने संतुलित आहार के रूप में अपने देना पड़े। जहाँ पशुओं की खुराक जो कि अच्छी होनी जरूरी है और जी अपने भोजन में कई तरह का पोषक तत्व और विटामिन की जरूरत पड़े, जहाँ हरी सब्जियां है, फल है या फिर दूध घी की बात है, तो बेहतरीन अपना जो दुधारू पशु है बने भी खुराक है जी आप अच्छी देवा ताकि अपना पशु है जका भी स्वस्थ रहे। पशुपालक भाइयों बिया देखा तो पशुओं ने अपना एक ही तरह को जो को खुराक देवो करा कई बार तो अपना जो पशुधन है बे कई दिन तो बिना अच्छी तरह खावे और ब्यू बाद गवा देखो फिर नाक मार लाग जाए, तो अपन भी बात को ध्यान रखना जरूरी है का अपना जो पशुधन है बने भी अलग अलग स्वाद को अलग अलग टेस्ट को जो को खुराक है वो अपने देना चाहिए। और आज आप बात कर सें संतुलित आहार के बारे में तो संतुलित आहार में कई तरह जगह पोषक तत्व है बे होना बहुत ज़्यादा जरूरी है और संतुलित आहार इशो आहार हुए जका का प्रोटीन है, वसो है, कार्बोहाइड्रेट है, खनिज लवण है, विटामिन है और इनके अलावा कई तरह का और भी पोषक तत्व है जका अपने दूध उत्पादन में भी अपन फायदो मिले और इनके अलावा जका पशु ब्यांत पशु है बन भी कई तरह की कोई अबखाई है वा कोनी हुए नहीं। पोषक तत्वों की बात है जड़ तक किसान भाइयों तो आप बात करांगा संतुलित आहार गमा किसी किसी पोषक तत्व है बंग बारा गमा जहाँ कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन हर हाइड्रोजन से मिलके बने। और बात प्रोटीन की करा तो प्रोटीन को निर्माण है वो नत्रजन है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही वो है। प्रोटीन से पशुओं के शरीर का मांस बने बिया के इसका आप पशुओं की चर्बी है सांगो पांग बच जाए और शरीर की बढ़वार भी बढ़िया होने लग जाए। किसान भाई प्रोटीन से प्रतिरोधक क्षमता है वह अपने पशुओं के अंदर बदे और जका ब्यांत पशु है या फिर जका ब्यान वाला पशु है बंग लिए भी प्रोटीन की जरूरत ज़्यादा होवे और ब्यांत पशुओं ने प्रोटीन की जी की मात्रा है वह अपने संतुलित रूप में देनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब बात करें जी वसा की, वसा पानी में ए घुलनशील होवे और इस पशुओं ने कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जका तत्व है भी मिले। वसा से पशु के शरीर का मां ऊर्जा को निर्माण होवे और त्वचा है जकी भी अपनी पशु की चमकदार बने। और वसा की पूर्ति भाई लोगों अपन जो बिनोला खड़ है या फिर सोयाबीन है बीच आप पूरी कर सका। अब बात करें खनिज लवण की, क्योंकि अपने जगह पशु है कई बार आप देखा कई बार डिखर खाण ला जाए, कई बार पशु है जगह कपड़ा खाण ला जाए या फिर माटी खाण ला जाए, तो अपन ये समझना चाहिए का अपन पशुओं ने खनिज लवण देना बहुत ज़्यादा जरूरी है या यहाँ के इसका अपने पशु के शरीर का मां जगह खनिज लवण है बंगी कमी होगी। पशुओं के शरीर ने खनिज लवण की भी जरूरत के हिसाब से अपन देना जरूरी है। इनके अलावा जहाँ लोहा, आयोडीन, मैंगनीज, तांबा, कोबाल्ट, जस्ता ये जगह तत्व है वे अपने पशुओं के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हुए और आप जब भी संतुलित आहार तैयार करा तो आपने इन चीज़ को ध्यान रखना है कि पशुओं के आहार के अंदर ये चीज़ें होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। और पशुओं ने खनिज लवण की पूर्ति खातर अपने हरे चारो है, खड़ है या फिर खनिज मिश्रण से प्राप्त जो की चीज़ें हैं बांसों आप पूरी कर सका। और इनके अलावा पशुओं ने टेम सर स्वच्छ एकदम पानी पियाना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अपना जो पशुधन है बंगवा 75% जो को पानी है वो शरीर के अंदर हुए और सामान्य जो को पशु है बिना 35 से 40 लीटर पानी पियाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि पानी से ही दूध को निर्माण हुए और पोषक तत्वों ने एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाना को जो को काम है वो पानी के द्वारा ही हो जाए। रक्त निर्माण है वो भी अपने पशु जो पानी पिए बिंग द्वारा ही हुए। इनके अलावा पानी पियाने से पशु को जो को शरीर को तापक्रम है वो भी बढ़िया बने हुए और पाचन शक्ति ने भी बढ़ाने को काम

0: जो पानी है जो करे। अब बात करें आप संतुलित आहार है जो तैयार किया करा, तो भाई लोगों आप संतुलित आहार तैयार करना है बीच में अपन कई बातों को ध्यान रखना जरूरी है। पशुओं का आहार में दो चीजा मुख्य रूप से होनी जरूरी है, जे चारो और दानो। चारो अपन दो प्रकार को देश का, एक तो सुक्को चारो और दूसरो रसदार चारो, यानी अपन हरियो चारो भी बिन केस का। सुक्का चारा का माँ तूड़ी है या फिर जहाँ सुक्को घास है, पराली है, बिंग द्वारा अपन सुक्का चारो तैयार करके यार पशुओं ने हरिया चारा सा मिक्स करके या फिर दाना सा मिक्स करके भी अपन देश का। और भाई लोगो रसदार चारो भी दो तरियांग हो है, एक तो लेग्यूमिनस और दूसरो नॉन लेग्यूमिनस। अपन ने दो भागा में बांट सका, और लेग्यूमिनस जो चारो है वो बरसीम है, काउपी है, सोयाबीन या फिर कई तरियांग जो दूसरो हरियो चारो है वो इंगंदराव है। और अपन ने वो हरियो चारो है वो अच्छी तरह बारीक काट गए और पशुओं ने खिलानो चाहिए। और इंगे सागे सागे अपन ने हरिया चारा गए प्रोटीन युक्त दाणो है वो भी देना जरूरी है। और ज्यादा प्रोटीन वाला दाने की बात करें तो बिंगमा काउपी है, कालो चनो है, घोड़ा चनो है, बंगाली चनो है। बंगमा की वह प्रोटीन ज्यादा मात्रा में हुए तो आपने आ चीजों को भी प्रयोग कर लेना चाहिए, क्योंकि आपने जो को पशु है वो संतुलित आहार खावेगो तो भी आपने फायदा होगा। इनके अलावा किसान भाइयों पौधा से प्राप्त होने वाला ज्यादा प्रोटीन युक्त जका बाई प्रोडक्ट्स है जो मूंगफली, सरसों, अलसी, बिनोला, नारियल और खड़ है या फिर चावल की छिलन है बांस आप पूर्ति कर सका। और जगह दुधारू पशु है बन भी अलग अलग मात्रा में अपने संतुलित आहार है वो देणो है। पशुओं की शारीरिक वृद्धि खातर या फिर जीवन निर्वाह खातर अपने प्रसव काल का टाइम गमा बिंग हिसाब से अपन चारों जो को निर्धारित करना चाहिए, ताकि अपना जो को पशु है वो आगे जाके ब्यां ताल टेम या फिर कीतरिया जो खाई वाली बात हो भी टेम कमजोरी ना महसूस करे। अब बात करें आप दानों को मिश्रण है वो किया तैयार करना है। मिश्रण खातर अपन की करना है कि गेहूं की जी चोकर है, कणक की जी चोकर है वह 35 भाग अपन लेनी है, चना की जी दाल है बिंगो भी 25 भाग अपन ने लेना है। इनके अलावा बारीक दलेड़ा जो जगह है वे भी अपन 25 भाग लेना है। मूंगफली या सरसों की जी खड़ है वह 15 भाग अपन रखनी है, और खाने वाला जो को नमक है बुंगो 1 भाग अपन ने ई मिश्रण के अंदर मिलानो है। जब तक खनिज लवण की बात है किसान भाइयों तो इंग माँ अपन 1 भाग खनिज लवण रखना है, तो यहाँ करके अपन ने 102 किलोग्राम यानी कि 1 क्विंटल 2 किलो लगभग अपन ने जो को मिश्रण वो तैयार करना है। इंग अलावा दूसरी तरीके की बात करें अपन तो जो को जो को भाग है वो 9 किलोग्राम अपन रखना है, जई है 9 किलोग्राम रखनी है, चोकर 72 किलोग्राम रखना है, और मूंगफली की जो खड़ है वह 5 किलोग्राम लेनी है, और बिनोड़ा की जो खड़ है किसान भाइयों वह 5 किलोग्राम रख के खनिज लवण मिश्रण है वो 2 किलोग्राम मिक्स करके अपन ने जो को आहार है वो तैयार करना है। तो वो जो को आहार है वो पशुओं ने बांगी उम्र के हिसाब से, बांगा शरीर के हिसाब से, बांगा वजन के हिसाब से अपन ने बांट के दे देना चाहिए। जहाँ एक गाय को जो को वजन है वो 4 क्विंटल है तो अपन ने 10 किलो दूध देने वाली गाय है बिंग खतरा अपन ने 20 किलो बरसीम, 35 किलोग्राम तूड़ी और 3 किलोग्राम मिश्रित दाणो है वो अपन ने लेनो है। 10 किलोग्राम दूध से ज्यादा देने वाला जो को पशु है बिंग खतरा अपन ने 2.5 किलो अतिरिक्त अपन ने चारो है वो रखनो है। तो आ बातों को ध्यान रख गया अपन जो अपना पशुधन है बना संतुलित आहार देश का, ताकि अपना जो पशु है बे निरोग बना रहे, स्वस्थ बना रहे और अपन फायदो भी हुए। इनके अलावा किसान भाइयों अपन पशुओं की हारी बीमारी को भी पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि ये बदलता मौसम में के पशुओं ने कई तरीके की बीमारियां है बे घेर ले और पशु जो है बाकी चपेट में आ जाए। तो अब जी बात करें तो ये मौके की है कि आपने जो का पशु है बिना जी आप संतुलित आहार दिए है तो ज्यादा कोई बीमारी कौन लागे नहीं, लेकिन फिर भी अगर लाग भी जाए तो आपना जो का नजदीकी डॉक्टर जी है बासु संपर्क करके दवा दारू है वह अपने करवानी चाहिए है। और पशु ने बुखार है या फिर कोई और कारण है तो बिंगो भी आपने इलाज को है वो करवाना जरूरी है सा। इनके अलावा पशुओं ने ताजो पानी पियानो जरूरी है और टेम पर पानी पियानो जरूरी है, क्योंकि कई बार यह हो जाए कि आप पशु ने एक ही बार पानी पियावा तो अपने दोनों टेम पानी जो है पशु ने ताजो पियानो चाहिए और साफ सुथरो पानी जो है वो अपने पशुओं ने देना चाहिए। और जठे अपना पशु बंदड़ा है बठा अपने साफ सफाई को पूरा ध्यान रखना है, चिंचड़ है, गोल्ड है, मच्छर है, मक्खियां है, एक की भी त्रियांग जगह कीटाणु है, विषाणु जगह है बे नहीं होना चाहिए। अंगी वजह से भी पशुओं ने कई बीमारियां लाग जाए, और जगह दुधारू पशु है अगर बांगा चिंचड़ या गोल्ड लाग रहे है तो दुधारू पशु जगह है बे आपको दूध भी घटा दे, तो अंग पूरा जाबतो करना है पशुओं ने आंसू बचा के रखना है ऐसा। अपने खेत कैरी का काम धंधा की और भी संभालना ऐसा। अब हूं चलू, राम राम सा, राम राम।
1: खेत कल्याण कार्यक्रम में अभी किसान भाई सुन रहे थे जानकारी पशुओं के लिए संतुलित आहार कैसे बनाएं। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है, दिन का 1 बजने वाला है। अब आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार अनुप्रसारित किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज नई दिल्ली के जोधपुर हाउस में यमुना जल समझौते को लेकर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। श्री शर्मा ने 29 जून के दिन को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इस समझौते से राजस्थान की धरती को पानी मिलेगा। उन्होंने प्रदेश की जनता की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने राज्य की पानी की पीड़ा को समझा है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में राज्य को केंद्र सरकार की ओर से कई सौगात मिली हैं।
1: यह योजना लगभग 34,000 करोड़ रुपए की योजना, इसमें 295 किलोमीटर पाइपलाइन से, 3 पाइपलाइन से पानी जाएगा। कितनी बड़ी बड़ी सौगात है राजस्थान के लिए 12 साल के अंदर। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, चाहे हमारी ईआरसीपी की योजना हो, कल जो समझौता हुआ है हमारा यमुना जल का काम हो, या दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हो, नॉर्दर्न जयपुर रिंग रोड हो, अमृत भारत रेलवे स्टेशन हो, वंदे भारत ट्रेनें हो, और यही नहीं, आपने देखा होगा राजस्थान में पहली साल में राइजिंग राजस्थान माने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस के अवसर पर सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों और विश्व भर के लोकतांत्रिक संस्थानों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने कहा कि संसद जनता की आकांक्षाओं, अधिकारों और विश्वास की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है, जहां विचारों का मंथन होता है, नीतियां बनती हैं और राष्ट्र के भविष्य की दिशा तय होती है। उन्होंने कहा कि एक मजबूत, स्वतंत्र और जवाब देह संसद ही लोकतंत्र की सच्ची शक्ति और नागरिकों के अधिकारों की सबसे बड़ी संरक्षक है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस हमें लोकतंत्र की आत्मा, संवाद, सहमति, जवाबदेही, पारदर्शिता और संवैधानिक मर्यादा को और मजबूत करने का संकल्प लेने का अवसर प्रदान करता है। प्रदेश में आज रात 12 बजे से विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी योजना लागू हो जाएगी। इसके साथ ही मनरेगा से लगभग 1,00,000 काम वीबीजी रामजी में ट्रांसफर हो जाएंगे। मनरेगा आयुक्त पुष्पा सत्यानी ने बताया कि प्रदेश में कुल मिलाकर 6,00,000 काम वीबीजी रामजी में कराने की तैयारी कर ली गई है। उन्होंने बताया कि योजना के लिए राजस्थान को 1200 करोड़ रुपए का बजट मिला है। नई योजना में प्रशासनिक कामों के लिए 100 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। प्रशासनिक मद में कुल बजट बढ़ाकर 9% कर दिया गया है। इस राशि से 1,03,00,000 नए जॉब कार्ड बनाए जाएंगे। बालोतरा के पचपदरा स्थित HPCL राजस्थान रिफाइनरी परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे को लेकर व्यापक स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य रिफाइनरी परिसर को स्वच्छ, हरा भरा और पर्यावरण अनुकूल बनाना है। रिफाइनरी प्रबंधन के अनुसार इस विशेष अभियान के तहत परिसर में 21,000 से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। इससे पहले 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर भी यहां 20,000 पौधे रोपे गए। वृक्षारोपण के साथ साथ परिसर में साफ सफाई, बेहतर अपशिष्ट प्रबंधन और सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा सक्रिय भागीदारी निभाई जा रही है। केंद्र सरकार ने माल और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण यानी GST ट्रिब्यूनल के समक्ष अपील दायर करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार करदाता आगामी 31 जुलाई तक अपनी अपील दर्ज करा सकेंगे। इससे पहले सरकार ने इसके लिए 30 जून तक की समय सीमा तय की थी। मंत्रालय ने बताया कि अंतिम दिनों में पोर्टल पर बढ़े दबाव और तकनीकी दिक्कतों को लेकर विभिन्न हितधारकों से मिले ज्ञापन के बाद ये निर्णय लिया गया है। प्रदेश में पुलिस के विशेष जांच दल SOG ने फर्जी FMAG सर्टिफिकेट के मामले में कार्रवाई करते हुए 3 डॉक्टरों को गिरफ्तार किया है। SOG के अतिरिक्त महानिदेशक विशाल बंसल ने बताया कि

0: देश से एमबीबीएस करने वाले इन आरोपियों ने भारत में पंजीयन के लिए अनिवार्य योग्यता परीक्षा का फर्जी प्रमाण पत्र तैयार करवाया था। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर। इसके अलावा आप हमारा ये प्रसारण डीआरएम चैनल 909 किलोहर्ट्ज़ पर भी सुन सकते हैं। 1:05 हुए हैं। महिलाएँ सुने अपना कार्यक्रम घर आंगन।

नई आशा, नई उम्मीद और नए विश्वास रसागे कार्यक्रम री शुरुआत। कार्यक्रम रामायण है, मैं हूँ थारा सागे, थारी आपरी बहन, थारी आपरी जीजी सीलू जीजी। और आपा सुना ला कार्यक्रम अब ओ घर आंगन। बहनों, मीठी वाणी सु करोड़ा दिला पर राज कर सका हाँ, सगला ने आपरो बना सका हाँ। कड़वी बात भी जेगर आपा मीठी वाणी सु कहवानी तो बा मीठी बन जावे है। मीठी वाणी सु ही अपने अपने दिन री शुरुआत करनी चाहिए। जिंगसु मी मिलो, मुस्कुराहट रह सागे मिलो। मुस्कुराहट रह सागे आपा किंगसु भी मिला नहीं तो चाहे कोई कितने भी गुस्से रे मायने होवे, बिंग चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट तो आ ही जावे है। तो हंसता रहो, मुस्कुराता रहो और आप रे दिन री शुरुआत हंसी खुशी सु करो, जेके सुके है अपनो दिन भी अच्छो बनसी। और जिंदगी हसीन होवे जब अपना अपने सागे होवे है। परिवार ने समय दो, थोड़ा बहुत गाना और जानकारियाँ बनाए रहो मार सागे अपने आकाशवाणी कार्यक्रम घर आंगन रह सागे।

अपनाओ। मैडम गर्मी रे मौसम रे मायने कदी तेज आंधी आवे तो कदी तावड़ो आ जावे है। मैडम मौसम बदले नहीं तो कदी कदी अपने टाबरा और बडेरा री आंखियां भी लाल हो जावे है, क्योंकि आंधी चाले नहीं तो कई बार वह माटी रा कण अपनी आंखियां रे मायने आ जावे है। और कदी छींक आवनी शुरू हो जावे, कदी जुखाम हो जावे और कदी चमड़ी माथे खाज खुजली। माटी रा ए बारीक कण हवा रे मायने उड़ता पराग कण जद अपने शरीर मायने जावे नहीं तो एलर्जी बन जावे है। कई बहना सोचे कि ओ तो सादो जुखाम है। बहनों ओ बदलते मौसम री एलर्जी है। इन बदलते मौसम रे मायने आपने थोड़ो ध्यान रखनो चाहिए। जद बारे तेज धूल भरी आंधिया चाले तो घर री खिड़कियां और किवाड़ ने बंद रखो सा। बडेरा बारे जावे तो बने एक सूती कपड़ो देवो, माँ जावे तो कोई बने ओढ़नो दे दो या कोई बडेरा साफो बांध री बारे जाओ सा। बाखड़ मायने झाड़ू लगाओ तो बारे माटी उड़ा है, पण थोड़ो पानी छिड़क कर पछे झाड़ू काटनी चाहिए, इंग सुके माटी कम उड़ा और एलर्जी सू भी बचाव रह सी। ठंडी ताती चीजा खाता वक्त भी थोड़ो ध्यान रखनो चीज है। कई बार टाबर खेल रावे और आते ही तावड़े सुआवे तो आते ही फ्रिज खोल ठंडो पानी पी लेवे है या कुल्फी खा लेवे है, इंग सू भी बहनों कई बार एलर्जी हो जावे है। धूप सु आवन रे बाद में घड़ी भर सुस्ताओ, पछे माटी रे घड़े रो ठंडो पानी पीवो। मैनो आपा जेगर ये छोटी छोटी बातियां रो ध्यान रखानी तो डॉक्टर खानी भागन री जुड़ती कोनी पड़े, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ा रो भी अपने आपने जी की दैनिक दिनचर्या हुए नी बिंग मायने आपने शामिल करनी चाहिए। आपने घर रे आंगन ने साफ सुथरो रखो, खान पान रो ध्यान रखो और हंसता मुस्कुराता रहो और गाना रहो आनंद लेओ सा।

तो अपन ने ए छोटा मोटा उपाय कर भी आपा आराम मिल जावे है, और ज़्यादा तकलीफ हुआ तो अपना डॉक्टर खाना जरूर जावनो चीज है। चेहरे रे ऊपर मुस्कान रखनी चीज है, हमेशा खुश रहनो चीज है। तो ऐ तो ही मारे मन री बात है जिकी मैं थारे सागर साझा करी। तो आओ अब सुना एक चोखो सो सुरीलो सो मीठो सो गीत जिके ने सुनर जीव एकदम राजी हो जावेला।

मैडम कितों पुठरों गीत आपा अभी आपा वो सुनियो हो। मैडम आपने घर गृहस्थी चलाण वास्ते आपा ने काम भी करना पड़ा है और काम माथे जावनो भी पड़ा है। पण कई बार आपा देखा भी जद घर रा ससुर जी या पिताजी आपरी नौकरी या आपरे काम सु रिटायर हो जावे, मतलब निवृत्त हो जावे, तो आपा सोचा कि अब तो बडेरा आपरे काम सु मुक्त हो गया है, अब तो वह आराम ही करसी, खाट माथे सोसी और घर में ना पूरो आनंद लेसी। पण साची मान जो बहनों, रिटायरमेंट कोई जिंदगी रो अंत कोनी, आ तो एक नई पारी री शुरुआत है। दिन रात्री दौड़ भाग पछे ओ बकत खुद सारू जीवन रो है, अपने सपना ने पूरा करन रो है, आपरे जीवन ने आनंदमय बनावन रो है, एक चोखी सी योजना बनार काम करन रो है। बहनों जिते तई अपना हाथ पैर चालता रहे और अपन काम करतो ही रहनो चीज है, क्योंकि इंग सुखी है अपनो दिमाग भी अच्छो रहसी और अपनो मन भी लागियोड़ो रहसी। और मैंने सबसे पहली और मोटो काम है पैसा ने सही जगह लगावन रो। रिटायरमेंट रे बकत जी को भी मोटो फंड या पैसा मिले ने बिना सही जगह पर लगावना चाहिए। कोई भी सेविंग स्कीम हो या कोई सुरक्षित फंड हो जठे हर महीने बंदेड़ी कमाई आमती रहे, तो इन सुके है बडेरा ने कदी पैसा सारू किंगा गए हाथ को नहीं फैलावना पड़े और बने यहाँ लगा कि भी आत्मविश्वास भी बनोड़ो रहे कि मारे खन कुछ पैसा है। दूसरी बात आ है शरीर और सेहत री संभाल। नौकरी पछे सेहत रो ध्यान रखनो भी जरूरी है। सुबह सुबह ठंडी हवा में ना घूमो, सादो पौष्टिक भोजन खाओ। सबसे जरूरी और मीठी बात है मन पसंद कामा में मन लगावनो। उम्र रे ई पड़ाव मत है, कई बार बहनों अकेलोपन भी इंसान ने चोखो कुन लागे, तो सगला रे सागे मिलजुल रहनो चीज है, बारे जावनो चीज है, अपने दोस्त आखने मिलनो चीज है, मांग सागे बखत बितावनो चीज है, परिवार ने समय देव, दोस्तारे सागे घूमो फिरो, टाबरा ने अच्छा संस्कार देव, भजन कीर्तन करो, अपने हाथासू छोटा मोटा कोई बाग बगीचा रा काम संभालो। मैनों जब मन राजी रहसी नी तो शरीर खुद ब खुद निरोगी रहसी। मैनों आपनी भी आज जिम्मेदारी है कि आपा बडेरा ने ओ एहसास करावा कि वे आज भी आपने घर री असली रीढ़ है, आपने वास्ते वे अभी भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनारो आदर सत्कार रखो। बांगी जिका भी वे कोई योजना बनावे या वे कोई काम शुरू करनो चाहे तो बा मैने बांगो सहयोग करनो चाहिए। बाता तो घनी है सा, पण बगत हो गयो है एक घणो ही मीठो सो प्यारो सो गीत सुनावन रो, तो चलो सुनो ओ गीत।

मैडम कितो पूठरो गीत आपा ओ सुनियो हो। आपा तो भगवान सुवाई प्रार्थना करा कि सगलारी उम्र लंबी होवे और सब हंसी खुशी आपरे परिवार रे सागे रहे। बहनों आपने घर रे मायने आपनी रसोई होवे नी, बा खाली पूरे परिवार री सेहत रो खजानो ही कोनी, आपने रोगारो भी वो निपटारो कर देवे है। रसोई री तिजोरी रे मायने जिका छोटा छोटा मसाला होवे नी, उन रे मायने सबसे मोटो जादूगर है आपनी अजवाइन। थाने ठा है बहनों, अजवाइन खाली स्वाद और सुगंध सारू कोनी, आ तो आरोग री असली चाबी है सा। कई बार खान पान ऊपर नीचे हो जावे, पेट मायने कई बार आपने गैस बन जावे, आफरो आ जावे, तो आपने अजवाइन ने तवे माथे से कर उनमें काड़ो नमक मिलार गुनगुने पानी रे सागे फाक लो। 5 मिनट रे मायने पेट रो दर्द छुमंतर हो जासी। और तो और इन बदलते मौसम रे माए कदी कफ या जुखाम हो जावे, तो अजवाइन ने तवे माथे से कर उनरी भापसू सांस लो, छाती एकदम साफ हो जासी। जच्चा ने भी अजवाइन रो पानी पायो जावे। अजवाइन कड़वी तो जरूर होवे पर गुणासु भरपूर होवे है। सुन जो बहनों कान लगार, अजवाइन बड़ो गुणकारी है। पेट रो दर्द मिनट में भाग जावे जदो पेट रे मायने जावे। सगला रोगारी एक ही दवाई, रसोई री है आर रानी। खा लो थोड़ी सी फाकी मारर, थारी काया हो जासी कंचन वर्गी। पेट री तकलीफा रे मायने भी आराम देवे। खानो ऊपर नीचे होवे, गैस बने, तो भी अपने थोड़ो सो आपा अजवाइन काले नमक सागे खावानी, तो अपने डकार आ जावेली और पेट एकदम हल्को हो जावे। यही बहनों आपने जापे रे मायने भी आपा देखा हाँ कि अपने तब बिना अजवाइन रा लाडू या राबड़ी बनार भी मायने पिलावा हाँ, तो ओ जिको आपा अजवाइन खावे नी, ओ मायने के होवे कमर रो दर्द गायब कर देवे और आपा ने अंदरूनी ताकत भी देवे है। सर्दी जुखाम सु भी अजवाइन बचावे है। छोटा छोटा टाबर होवे, कई बार आपा देखा बाने सर्दी खांसी हो जावे, तो अजवाइन ने तवेरे ऊपर सेक कर कपड़े मायने बांध लो और उनरी पोटली सू टाबरी छाती सेखो, कफ मिनट मायने पिघल जासी। तुम्हारी लाडली बहना इन अजवाइन ने कदी कम मत समझो, आ आपनी सेहत रो असली खजानो है। आज रो प्रोग्राम जिको आपनी सगली बैनारी हंसी खुशी और सेहत रे वास्ते ही राखेड़ो है। तो बातें तो घनी करनी है, पन सागे सागे चोखा चोखा गीत भी सुनता रवानी, तो झूमने को नाचने रो आनंद ही कुछ और है। तो थाने सुनावा एक चोखो सो नाचनालो बढ़िया सो गानो, इंग सागे थे आपका ठुमका ठुमका भी लगा सको।

हर रिश्ते रे मायने विश्वास रेवण दो, जुबा पर हर वक्त मिठास रेवण दो। ओ ही अंदाज होवे जिंदगी जीने रो, ना तो खुद रहो उदास और ना ही दूसरा ने रेवण दो। तो बहनों मारो तो माननो इया ही है कि भी हमेशा हंसता रहो और अपने परिवार वाला ने भी हमेशा खुश रखो। बहनों आजकल आप देखा विज्ञान कितनी तरक्की कर ली है, आज रो ओ बकत मोबाइल और इंटरनेट रो है। सही दिशा रे मायने इंगो उपयोग करो जावे नी तो घणो ही फायदेमंद है। पण कई बार आप देखा कि टाबर मोबाइल माथे गेम खेलन लाग जावे और कई बार है फालतूरी वीडियो भी देखन लाग जावे है। इंग सु बहनों समय तो खराब हो गई है, सागे सागे कई बार बहनों टाबर जी को है वो चिड़चिड़ो भी हो जावे है। और कई बार तो टाबर उन छोटी सी स्क्रीन माथे आंखें गडार बैठा रहे, ना वो खावे ना कोई पिए और ना बिन भूख लागे ना बिन तिस लागे, घंटे भर बैठाए रखो चाहे मोबाइल माथे वह भी मायने के देखता रहे और खेलता रहे। उनारी उंगलियां बस कांच माथे चाल है। पर बहनों मन बताओ उन कांच री स्क्रीन माथे बालपन रो आनंद मिल सके है के? कदे को नहीं मिल सके। आपनो बचपन याद करो सा, कड़कती दोपहरी होती, स्कूल री छुट्टियां होती,

दादा सी दादा जी रे दादी सारे लाख डांटन और मना करन रे बाद भी ज्यों ही घर्रा बडेरा सोनता आपा दबे पाँव गरसु पारे निकल जामता। उन तपती रेत मायने नीमरी ठंडी छाया रे नीचे गड़िया रे मायने कदी सतोलियो खेलता मारदड़ी कंचा लुका छिपी और टायर दौड़ानो। वाह सा वाह, उन खेलासु तो खाली मनोरंजन कोनी हों तो आपनो शरीर भी मजबूत होन तो हो। हिवड़ेरे मायने धीरज आम तो और आपस मायने मिलर रेवन री भावना भी पैदा होनती। मैनो हार जीत ने हंसर झेलन री सीख अपने उन गलियारे मायने उन खेला सु ही मिलती ही। आजकल टाबर मोबाइल सु दूर होनो ही कोनी चावे, घंटों घंटों मोबाइल री स्क्रीन माथे बैठा रहे तो इंग सु टाबरा री आंखिया री रौनक तो छिन ही जावे है, सागे सागे टाबर चिड़चिड़ो भी बन जावे है। तो टाबरा ने तो गली मायने खेलन जावे और ना ही बडेरा री गोदी रे मायने बैठर कहानियां सुने, तो आ घनी सोचन री बात है। तो बहनो आपने भी अपने टाबरा रे सागे समय बितावनो चाहिए। टाबरा रे सागे खुद घड़ी भर बैठो, बंग सागे खिलो, बने अपना पुराना खेला रे बारे मायने बताओ, बंगे आस पास कठी कोई घूमन न ले जाओ। मोबाइल सु दूर करने वास्ते अपने अपना पुराना खेल बने सिखावना हो सी, बने प्रेरणादायक कहानियाँ सुनाओ। इंग सुके है बांगो दिमाग भी तेज हो सी और सागे सागे खेल खेलन सु बांगो शारीरिक और मानसिक विकास भी हो सी। और जब टाबर शरीर सु और मन सु स्वस्थ हो सी तो वो एकदम परिपूर्ण अच्छो संस्कारी टाबर बन सी। और हर माँ बाप वही चाहे है कि बिंगो टाबर बढ़िया रहे, बढ़िया खेले और बढ़िया स्वस्थ रहे। तो बहनों चालता चालता थाना एक और चोखो सो भजन सुनावा।

मैडम घर आंगन एक रेडियो प्रोग्राम कोनी, आ तो एक कोशिश है अपने रिश्ता ने चोखो बनावन री। जिया गर्मी री दोपहरी माए ने आपा घर री शाल रे माए सगड़ा भेड़ा होर कूलर पंखा चलार बैठ जावा, बिया ही ओ कार्यक्रम आपा ने अपना रे साथ है बैठर मुस्कुरावन रो बहानो भी देवे है। जे मारी बातें थारे मन ने छुई होवे तो मारो प्रयास सफल है। इ तपती गर्मी रे माए ने अपनो और अपना रो पूरो ख्याल राखजो। मटके रो ठंडो पानी पीवजो, परिंडा ने भरर राखजो, घर रे टापरा ने मोबाइल सू दूर कर मीठी मीठी कहानियाँ सुनाइजो। अब बखत हो गयो है विदा लेवन रो, पण घबराइजो मती, थारी सिलू जी जी पछी आवेली नए नए विषय नई नई बातें और प्यारे प्यारे गीतारे साथ है। जिते ताई हंसता मुस्कुराता रहिजो, जुड़ेड़ा रहिजो आकाशवाणी परिवार रे कार्यक्रम रे सागे। राम राम।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम महिला जगत। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। दिन के 2 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से दोपहर समाचार रिले किए जाएंगे।
1: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द मिड डे न्यूज। द हेडलाइंस, यूरो बैंक लॉन्चेस यूपीआई बेस्ड रेमिटेंस सर्विस फ्रॉम ग्रीस टू इंडिया। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल कॉल्स इट अ माइलस्टोन इन इंडियाज डिजिटल पेमेंट्स एक्सपेंशन। Special intensive revision of electoral rolls begins in Delhi and 4 states. India reaffirms strong support for Financial Action Task Force after Pakistan criticizes grey list monitoring by agency. Uncertainty looms over

0: शांति वार्ता पर अनिश्चितता बरकरार। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में अगले दो दिन तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और जर्मनी पैराग्वे से पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हारकर फीफा विश्व कप से बाहर। मोरक्को ने नीदरलैंड को हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। यूरोबैंक ने यूनान से भारत में सीमा पार धन भुगतान के लिए यूपीआई सेवा शुरू की है। ये पहल बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के रणनीतिक सहयोग का हिस्सा है। एक रिपोर्ट।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यूरोबैंक में सेवाओं का उद्घाटन भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के वैश्विक विस्तार में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। उन्होंने कहा कि यूनान में यूपीआई के शुरू होने से ग्राहक तुरंत सुरक्षित और निर्बाध रूप से धन हस्तांतरण कर सकते हैं। इससे लेन देन लागत पारंपरिक हस्तांतरण लागत के मुकाबले काफी कम हो गई है। श्री गोयल ने यूपीआई की बढ़ती वैश्विक स्वीकृति की सराहना की। उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस दृष्टिकोण में विश्वास को भी दर्शाता है जिसके तहत प्रौद्योगिकी आधारित समाधान विकसित किए जा रहे हैं। समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
0: दिल्ली सहित 4 राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। दिल्ली में घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य शुरू किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ अगले महीने की 29 तारीख तक हर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की 2 प्रतियां वितरित करेंगे ताकि मतदाता सूची का सत्यापन और अद्यतन किया जा सके। कल मतदाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। उन्होंने बताया कि मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली के सभी पात्र मतदाताओं से इस संशोधन प्रक्रिया में भाग लेने की अपील की है। कर्नाटक में ब्लॉक स्तर के अधिकारी बीएलओ विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के अंतर्गत घरों का दौरा कर रहे हैं। इस कार्य के लिए राज्य भर के सभी 31 जिला निर्वाचन कार्यालयों में 59,000 से अधिक बूथ स्तर के अधिकारी तैनात किए गए हैं। 4 अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी, 224 मतदाता पंजीकरण अधिकारी, 336 सहायक मतदाता पंजीकरण अधिकारी और 7,556 बीएलओ पर्यवेक्षक भी पुनरीक्षण प्रक्रिया में शामिल हैं। झारखंड में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के तहत बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर गणना प्रपत्र वितरित करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: बूथ लेवल अधिकारी 29 जुलाई तक घर घर जाकर मतदाताओं को आंशिक रूप से भरे हुए इन्यूमरेशन फॉर्म उपलब्ध कराएंगे और सत्यापन करेंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को पूरी तरह शुद्ध, पारदर्शी और त्रुटि रहित बनाना है ताकि कोई भी पात्र भारतीय मतदाता सूची से वंचित न रहे और कोई भी अपात्र व्यक्ति सूची में शामिल न हो। श्री कुमार ने मतदाताओं से अपील की कि फॉर्म प्राप्त होने पर आवश्यक जानकारी भरकर हस्ताक्षर सहित शीघ्र बीएलओ को वापस करें ताकि उनका नाम 5 अगस्त को प्रकाशित होने वाली प्रारूप मतदाता सूची में शामिल किया जा सके। आज राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने खूंटी जिले के तोरपा विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या 84, 87 और 89 का निरीक्षण कर बीएलओ और बीएलए 2 के साथ बैठक की और विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की तैयारियों और कार्य योजना की समीक्षा की। विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर 2026 अभियान को गति देने के लिए #झारखंडSIR के साथ सोशल मीडिया जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से महवीश रहमान की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
0: मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स के उपायुक्त अभिलाष बरनवाल ने बताया कि 1,021 बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ जिले के सभी 1,021 मतदान केंद्रों पर 29 जुलाई तक घरों का दौरा करेंगे और उन मतदाताओं को पहले से भरे हुए स्वगणना प्रपत्र वितरित करेंगे जिनके नाम 2025 की मतदाता सूची में पहले से ही शामिल हैं। इस बीच केरलम में जनगणना 2027 के लिए स्वगणना प्रक्रिया आज समाप्त हो रही है। राज्य में रहने वाले सभी लोग आधी रात तक पोर्टल पर अपना विवरण दर्ज कर सकते हैं। आगे की जानकारी एकत्र करने के लिए जनगणना कर्मी कल से घरों का दौरा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज आंध्र

0: प्रदेश के केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में भाग लेने के लिए विशाखापट्टनम पहुंची। उनका स्वागत INS देगा में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल S. अब्दुल नजीर ने किया। इस अवसर पर कई जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज कहा कि सरकार ने देश में स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना और कुशल चिकित्सा मानव संसाधन दोनों को मजबूत करने पर समान रूप से जोर दिया है। नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज के 10वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि ILBS जैसे संस्थान देश के स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं।
1: ILBS ने नहीं सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में अपना नाम स्थापित किया है। ऐसे समय में 10th कॉन्वोकेशन हो रहा है ये सेलिब्रेट करने के। स्टूडेंट्स जिनको आज डिग्री मिल रही है उनके लिए भी ये सेलिब्रेशन का मौका है, पर उनके सेलिब्रेशन है उनकी सेक्रीफाइस, उनका डिसिप्लिन, उस सब के कारण आज वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि उनको ये डिग्रियां हासिल हो रही हैं। इसलिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कृषि क्षेत्र के विकास के बिना विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। हरियाणा के हिसार में खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि सरकार एक मोबाइल ऐप विकसित करने पर काम कर रही है जो मिट्टी और उसमें आवश्यक उर्वरक की मात्रा के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। उन्होंने किसानों को जैविक खेती अपनाने की भी सलाह दी।
2: हम संतुलित खाद डालें, संतुलित कीटनाशक जितनी जरूरत है जिन तत्वों की आवश्यकता वही डालें। अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग से हमारी धरती बीमार हो रही है, हमारी मिट्टी खराब हो रही है और उसमें उत्पादित जो फल सब्जी और अनाज है उसके कारण कई तरह की बीमारियां मानव शरीर में भी घर कर रही है। अलनीनो का प्रभाव यहां भी है, बारिश नहीं हो रही है, तो इस प्राकृतिक संतुलन को हमको बना के रखना पड़ेगा ताकि हमारी धरती सुरक्षित रहे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे।
0: ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन RGVVS 2026 का आयोजन किया है। ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ग्रामीण परिवर्तन के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए किया गया जिसका समापन हाल ही में हुआ है। इसके अंतर्गत केंद्र राज्य के मजबूत सहयोग, समुदाय आधारित विकास और प्रौद्योगिकी आधारित शासन के माध्यम से विकसित ग्राम विकसित भारत के दृष्टिकोण को गति देने की साझा प्रतिबद्धता को ध्यान में रखा गया। सरकार ने GST अपीलीय न्यायाधिकरण के सामने अपील करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। वित्त मंत्रालय के अनुसार पिछले वर्ष सितंबर में जारी अधिसूचना में अपील दायर करने की अंतिम तिथि इस वर्ष 30 जून निर्धारित की गई थी। विभिन्न हितधारकों ने GST अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील दायर करने की भारी संख्या के कारण आई तकनीकी बाधा का हवाला दिया था। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सेना को शक्ति किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों और देश के नागरिकों के अटूट विश्वास से मिलती है। जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्ष में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
3: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
0: जनरल द्विवेदी आज नई दिल्ली में सेना प्रमुख के पद से सेवानिवृत्त हो गए हैं। नए सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को जिम्मेदारी सौंपते हुए जनरल द्विवेदी ने विश्वास व्यक्त किया कि जनरल सेठ के नेतृत्व में भारतीय सेना अपनी गौरवशाली परंपराओं, व्यावसायिकता और दृढ़ संकल्प को कायम रखते हुए और भी ऊंचाइयों को छुएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @ERNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। भारत ने वित्तीय कार्रवाई कार्यबल को आतंकवाद को धन मुहैया कराने और धन शोधन के खिलाफ वैश्विक लड़ाई का अविभाज्य अंग बताते हुए इसके लिए अपना पुरजोर समर्थन फिर से व्यक्त किया है। संगठन की ग्रे लिस्ट में शामिल किए जाने के बाद पाकिस्तान ने FATF की आलोचना की थी, जिसके बाद भारत ने FATF के प्रति अपना समर्थन दोहराया। संयुक्त राष्ट्र में आतंकरोधी सप्ताह से अलग एक समारोह में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि FATF की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने का प्रयास जायज चिंताओं के बजाय जांच के दायरे में आने का भय अधिक दर्शाता है। पश्चिम एशिया में तनाव कम करने के लिए चल रहे कूटनीतिक प्रयासों में बाधा आ रही है। दोहा में होने वाली अगले चरण की वार्ता को लेकर अमेरिका और ईरान

0: विरोधाभासी बयान दे रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दोहा में नई वार्ता आयोजित किए जाने के संकेत के बाद अमेरिका ईरान संबंधों के भविष्य को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है। हालांकि ईरान ने इस दावे को दृढ़ता पूर्वक अस्वीकार करते हुए कहा कि फिलहाल अमेरिका के साथ किसी भी प्रकार की बातचीत की योजना नहीं है। ईरान के अधिकारियों का कहना है कि अभी उनका ध्यान 14 सूत्री समझौता ज्ञापन को लागू करने पर है, जिसके बाद वे किसी व्यापक या अंतिम समझौते पर चर्चा करने पर विचार करेंगे। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने भी यह स्पष्ट किया है कि ईरान अपने वादों को तभी पूरा करेगा जब अमेरिका भी अपनी जिम्मेदारियां निभाएगा। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला को मानवीय सहायता प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने आपदा से प्रभावित लोगों के लिए चिकित्सा सहायता और आपातकालीन सहायता पर विशेष ध्यान देते हुए राहत कार्यों का विस्तार किया है। मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय बचाव और चिकित्सा दल वेनेजुएला के अधिकारियों के साथ मिलकर आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले दो दिन के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में बहुत तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। सिक्किम, असम, मेघालय, केरलम और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में भी आज इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में अगले दो से तीन दिन के दौरान कई स्थानों पर गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कल तक छिटपुट स्थानों पर तेज सतही हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस के अवसर पर सभी निर्वाचित अधिकारियों और विश्व के लोकतांत्रिक संस्थानों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिड़ला ने कहा कि संसद जनता की आकांक्षाओं, अधिकारों और विश्वास की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है, जहां विचारों का मंथन होता है, नीतियां बनती हैं और राष्ट्र के भविष्य की दिशा तय होती है। झारखंड में आज हूल दिवस मनाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि यह दिवस जनजातीय क्रांतिकारियों सिद्धो कान्हो, चांद भैरव और फूलो झानो के बलिदान के स्मरण में मनाया जाता है।
2: झारखंड के साहिबगंज जिले के भोगनाडी में हूल दिवस के अवसर पर हजारों लोग संथाल हूल के अमर शहीदों सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो और झानो को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 30 जून 1855 को भोगनाडी से सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में अंग्रेजी शासन और महाजनी प्रथा के खिलाफ संथाल हूल का बिगुल फूका गया था। क्रांतिकारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को कई मोर्चों पर कड़ी चुनौती दी और आंदोलन लगभग एक वर्ष तक चला। इस संघर्ष के दौरान चांद और भैरव शहीद हो गए, जबकि बाद में सिद्धू और कान्हू को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर फांसी दे दी। झारखंड में हूल दिवस स्वाभिमान, प्रतिरोध और जनजातीय अस्मिता का प्रमुख प्रतीक माना जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: जर्मनी फुटबॉल फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 से बाहर हो गया है। बोस्टन में खेले गए मैच में पैराग्वे ने उलटफेर करते हुए जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराया। विश्व कप में पेनल्टी शूटआउट में जर्मनी की यह पहली हार है। मोरक्को और ब्राजील भी अंतिम 16 में पहुंच गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। यूरो बैंक ने यूनान से भारत के लिए यूपीआई के माध्यम से धन भुगतान की सेवा शुरू की। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इसे भारत के डिजिटल भुगतान विस्तार में मील का पत्थर बताया। दिल्ली सहित 4 राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू। पाकिस्तान के गृह सूची निगरानी की आलोचना के बाद भारत ने वित्तीय कार्यवाही कार्य बल के लिए अपना समर्थन दोहराया। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में अगले दो दिन तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर, डीआरएम चैनल 909 किलोहर्ट्ज़ पर, एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर। दिन के 2:30 हुए हैं। आइए सुने फिल्म संगीत।

लता मंगेशकर मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में अभी आपने फिल्म वापस का ये गीत सुना। आइए सुने किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म मशाल का ये गीत।

हम आपके हैं कौन, इस फिल्म का गीत सुनिए एसपी बाला सुब्रमण्यम और साथियों की आवाज़ में।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आपने रोटी फिल्म का ये गीत सुना। आइए सुने कुमार सानू, अलका याग्निक और साथियों की आवाज़ में। हम सब चोर हैं फिल्म का ये गीत।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलो हर्ट्ज़ पर, एफएम बैंड 100.1 मेगा हर्ट्ज़ पर, डीआरएम चैनल 909 किलो हर्ट्ज़ पर और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। दिन के 3 बजने वाले हैं। अब हमारे अगले कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे, उर्दू सर्विस के कार्यक्रम। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें।

आदाब, ये आकाशवाणी है। दिन के 3 बजे हैं। उर्दू सर्विस की दूसरी मजलिस की नशरियात का अब आगाज होता है।

हमारी नशरियात आप सुन सकते हैं मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर।

दिन में 3:30 पर सुबाई आप सुनेंगे प्रोग्राम अदब नुमा। शाम 4 बजे आप फिल्मी नगमे सुन सकेंगे। फिल्मी नगमों का ये प्रोग्राम जारी रहेगा शाम 4:05 तक। शाम 4:50 पर खबरें नशर होंगी और शाम 5 बजे उर्दू सर्विस की दूसरी मजलिस की नशरियात इख्तिताम पजीर हो जाएंगी। ये था इस मजलिस में नशर होने वाले प्रोग्रामों का खुलासा।

0: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। 3:05 होने को हैं, अब खबरें नश्र की जाएंगी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप हबीब रहमान से खबरें सुनिए। यूरो बैंक ने यूनान से भारत रुकूमात की मुंतकली में सहूलियत के लिए यूपीआई पर मबनी सर्विस का आगाज किया है। कॉमर्स के वजीर पीयूष गोयल ने इसे भारत की डिजिटल अदायगी की तौसी में संगे मील करार दिया है। भारत ने माली उमूर से मुतालिक एक्शन टास्क फोर्स FATF के तहत अपनी मजबूत हिमायत का इरादा किया है। पाकिस्तान ने ग्रे लिस्ट निगरानी में अपना नाम शामिल किए जाने पर नुक्ताचीनी की है। भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत वेनेजुएला में जलजले से मुतालिक इमदादी कोशिशें तेज कर दी हैं। अमरीका और ईरान के दरमियान अमन मुजाकरात के ताल्लुक से गैर यकीनी की कैफियत बरकरार है। ईरान ने दोहा में मीटिंग को मुस्तरद कर दिया है। और फीफा वर्ल्ड कप में जर्मनी पेनाल्टी शूटआउट में पैरागोए से हारने के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गया है। मराकश नीदरलैंड को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। अब खबरें तफसील से। यूरो बैंक ने यूनान से रकूमात भारत मुंतकिल करने के लिए यूपीआई पर मबनी रकूमात की मुंतकली की सर्विस का आगाज किया है, ताकि कम से कम खर्च पर

0: अमिस्ताद के तहत इमदादी कोशिशों को तेज कर दिया गया है। इससे कबल ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत तैनात भारतीय फौजी दस्ते ने तबाहकुन जलजले से मुतासर अफराद को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करने के लिए एक फील्ड अस्पताल कायम किया था। वस्ती शुमाली वेनेजुएला में 24 जून को एक बाद दीगरे आए जलजले में कम से कम 1,719 अफराद हलाक और 5,000 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। जलजले के नतीजे में तकरीबन 15,000 लोग बेघर भी हो गए हैं। मगरबी एशिया में कशीदगी कम करने की सिफारती कोशिशों में इब्तदाई रुकावटें पैदा हो गई हैं, क्योंकि अमरीका और ईरान दोहा में अगले दौर के तबादले ख्याल से मुतालिक अलग अलग नजरियात पेश कर रहे हैं। अमरीका और ईरान के दरमियान बातचीत के बारे में गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा हो गई है, लेकिन सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इशारा दिया है कि ताज़ा बातचीत दोहा में हो सकती है। अलबत्ता ईरान ने यह कहते हुए इस दावे को मुस्तरद कर दिया है कि अमरीका के साथ बातचीत करने का सरदस्त कोई मंसूबा नहीं है। ईरानी अहदेदारों ने मजीद कहा कि उनकी फौरी तवज्जो वसी या कतई समझौते पर गौर करने से पहले मुफाहमत के 14 निकाती मेमोरेंडम को अमली जामा पहनाने पर है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि एक ईरानी वफद ने कतर में आला सतह पर आमने सामने बातचीत की दरख्वास्त की थी ताकि मगरबी एशिया में कशीदगी कम करने की गरज से हाल ही में ऐलान करदा मफाहमत के अबूरी मेमोरेंडम को अमली जामा पहनाने के समत में कदम बढ़ाया जा सके। ईरान ने इस दावे की तरदीद की है। ईरानी अहदेदारों ने कहा है कि उनका वफद मौजूदा समझौते के नफाज के बारे में सिर्फ टेक्निकल बातचीत के लिए दोहा जा रहा है और ये कि अमरीकी अहदेदारों के साथ बराह रास्त बातचीत का कोई मंसूबा नहीं है। 2026 के फीफा वर्ल्ड कप में जर्मनी नॉकआउट मरहले में टूर्नामेंट से बाहर हो गया है। बोस्टन में पैराग्वे ने पेनाल्टी शूटआउट में जर्मनी को 3-4 गोल से हरा दिया। मुकर्रर वक्त तक दोनों टीमों ने 1-1 गोल किया था। फुटबॉल वर्ल्ड कप में जर्मनी की टीम को पहली मरतबा पेनाल्टी शूटआउट में शिकस्त का सामना करना पड़ा है। इधर पैराग्वे इस कामयाबी के साथ ही प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। इधर आज खेले गए नॉकआउट मरहले के एक और मैच में मराकश ने नीदरलैंड्स को पेनाल्टी शूटआउट में 2-3 गोल से हरा दिया। मुकर्रर वक्त तक दोनों टीमों ने 1-1 गोल किया था। आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। यूरोबैंक ने यूनान से भारत रुकूमात की मुंतकली में सहूलियत के लिए यूपीआई पर मबनी सर्विस का आगाज किया है। कॉमर्स के वजीर पीयूष गोयल ने इसे भारत की डिजिटल अदायगी की तौसी में संग मील करार दिया है। भारत ने माली उमूर से मुतालिक एक्शन टास्क फोर्स FATF के तहत अपनी मजबूत हिमायत का इरादा किया है। पाकिस्तान ने ग्रे लिस्ट निगरानी में अपना नाम शामिल किए जाने पर नुक्ताचीनी की है। भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत वेनेजुएला में जलजले से मुतालिक इमदादी कोशिशें तेज कर दी हैं। अमरीका और ईरान के दरमियान अमन मुजाकरात के ताल्लुक से गैर यकीनी की कैफियत बरकरार है। ईरान ने दोहा में मीटिंग को मुस्तरद कर दिया है और फीफा वर्ल्ड कप में जर्मनी पेनाल्टी शूटआउट में पैराग्वे से हारने के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गया है। मराकश नीदरलैंड्स को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब पेश है प्रोग्राम अदब नुमा। आइए सुनते हैं मेरी पसंद प्रोग्राम। पहली पेशकश सौदागर फिल्म से है। आवाज़ है कविता कृष्णामूर्ति की।

अभी आप सुन रहे थे फिल्मी नगमों का प्रोग्राम मेरी पसंद। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। आइए अब सुनते हैं प्रोग्राम अदब नुमा।

अदबनुमा का एक और शुमारा लेकर आपका दोस्त आपका मेजबान नईम हाजिर खिदमत है। आप सभी को मेरा आदाब। दोस्तों कैसे मिजाज हैं? उम्मीद करते हैं आपके हाल चाल और मिजाज बहुत अच्छे होंगे। तभी तो हम चले आए हैं आपसे आपकी खैरियत दरियाफ्त करने और आपके लिए लेकर आए हैं कलाम शायर और एक अफसाना। यूं तो आपसे गाहे बगाहे मुलाकात हो ही जाती है किसी ना किसी प्रोग्राम में, लेकिन कोशिश ही रहती है जनाब कि आपसे मुलाकातें होती रहें और ये सिलसिला जारी रहे। आरजू है कि तू यहाँ आए, आरजू है कि तू यहाँ आए और फिर उम्र भर न जाए कहीं। जानलेवा थी ख्वाहिशें वरना वसल से इंतजार अच्छा था। इंतजार तो खैर आपको भी रहता है और हमें भी रहता है प्रोग्राम का भी और आपसे मुलाकात का। तो चलिए।

0: ना करते हुए प्रोग्राम का आगाज करते हैं और अदब नुमा में सबसे पहले आपको सुनवाते हैं एक अफसाना, और ये अफसाना आपके लिए लिखा है मोहतरमा रफिया मंजूरुल अमीन ने, आग के साथ दरिया। तो आइए सुनते हैं ये अफसाना।
1: कफील मियां के आशिक रंग लाई, फहमिदा बीबी की टूटी दीवार के नीचे से आते जाते आंखें चार हो गई थीं। अब्बा को पता चलता तो जिंदा भून खाते, लेकिन अब्बा बेचारे टीन के टूटे संदूकों की ठोका पीटी करते, ठनाठन शोर में नजरों के बरकोबाद को कहां महसूस कर पाते। गदर तो उस वक्त पड़ता जब पता चलता कि लड़का और लड़की ने बुजुर्गों को नजरअंदाज करके खुद ही अपनी बात पक्की कर ली होती। अब्बा समाज की जिस सीढ़ी पर बैठे थे वहां यही होता था। शादी के लिए लड़की या लड़के की पसंदीदगी को आवारगी समझा जाता, लिहाजा इससे पहले कि कफील मियां और फहमीदा बीबी के इश्क के किस्से लैला और मजनू से टक्कर लेते, अब्बा के पास रिश्ते का पैगाम पहुंचा दिया गया और अब्बा ने उसे बखुशी कबूल कर भी लिया। उन्हें अचंभा जरूर था कि लड़के वालों की तरफ से दान दहेज का कोई सवाल नहीं था, सिर्फ कफील मियां की सौतेली माँ अड़ गई थी कि वो बनारसी साड़ी जरूर लेंगी। ये गोया कफील मियां के घर से निकल जाने का हरजाना था, वरना वो और उनके साथ ही कफील मियां के अब्बू साफ शादी से बायकॉट कर रहे थे। उन्हें कफील मियां की आमदनी प्यारी भी थी, साथ ही अम्मा चाहती थी कि सौतेला बेटा घर से निकल जाए तो जान छूटे। कफील मियां ये झेल इसलिए गए कि संदूक वाले मौलाना के पास बुजुर्गों का रिश्ता ले जाना जरूरी था, वरना वो बेटी देने से साफ इनकार कर देते। फहमीदा बीबी को हासिल करने के लिए वो आग के साथ दरिया पार करने को तैयार थे। कफील मियां रद्दी का व्यापार करते थे, साइकिल पर सवार घर घर से रद्दी जमा करते थे, लेकिन तोल में बेईमानी करने पर भी इतनी आमदनी नहीं होती कि दो पेट पल सके। दूसरी मुसीबत ये थी कि सुबह सवेरे ही वो अपनी साइकिल लिए घर से निकल जाते तो फेरी लगाते लगाते शाम हो जाती और वो फहमीदा बीबी के लिए तरस जाते। फहमीदा बीबी थी भी, वो भी तो बारिश की पहली बूंद की तरह थी, निखरी हुई 15 बरस का सिन, तीखा नाक नक्शा, घनी बलखाती चोटी जिसे मुबाफ ना बांधो तो खुल खुल जाती थी। कहां ये लवाजिमों से भरपूर दस्तरखान और कहां रद्दी का कब्रस्तान जहां कफील मियां अपना रद्दी का बोझ झोंक आते। उस कब्रस्तान में कैसे कैसे लीडर अपने झूठे वादों समेत रोज दफन हो जाते। अफसरों की रिश्वत सितानियां जिनसे जानबूझकर हुकूमत आंख चुरा लेती, दुल्हनों पर ढाए गए सितम, बड़ी ताकतों की शातिराना चालें, अगवा रेप नकब डाके जिनमें खुद पुलिस का हाथ होता, सब कुछ दफन हो जाता। अपना बोझ हल्का करके कफील मियां चंद पुरानी फटी नोटें मुट्ठी में दबाए घर पहुंचते तो सौतेली माँ दाल के हर चमचे के साथ 100-100 सलवातें सुनाती, और जब कफील मियां अपनी दुल्हन की तरफ देखते तो कलेजा मुंह को आने लगता, क्योंकि वो भी दिन भर घर में कोल्हू के बोल बैल की तरह जुटी रहती क्योंकि वो भी दिन भर घर में कोल्हू के बैल की तरह जुटी रहती। माहिदे के मुताबिक कफील मियां को शादी के 2 महीने बाद ही घर छोड़ देना था, जो वो अभी तक नहीं कर पाए थे। ऊपर से गजब ये हुआ कि फहमीदा बीबी के उपकाइयां शुरू हो गईं, लेकिन आने वाले का कदम मुबारक साबित हुआ और कफील मियां को एक फैक्ट्री में नौकरी मिल गई। उस रोज उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि अब वो याकूतपुरे के कवेलू के उस छोटे से कमरे का किराया दे सकते थे जिसके वो कई बार चक्कर काट चुके थे। मालिक मकान किराया कम करने के लिए टस से मस नहीं हो रहा था। महल्ला बहुत अच्छा था, एक तो मकान तंग गली के सिरे पर बना था इसलिए महफूज था, एक तरफ कूड़े का ढेर लग जाता था लेकिन सुअरों का एक दल बाकायदगी से आकर उसे चट कर जाता था और जो कुछ बच जाता वो हवा से इधर उधर हो जाता। घर में बिजली थी, बिजली का खर्चा मालिक मकान किराए के साथ ही ले लेता था, लेकिन शर्त ये थी कि 5 बत्ती का बल्ब भी लगाया जाए। बैतुल खला की सहूलत मालिक मकान ने अपने ही घर में दे दी थी, जिसका 1 रुपया अलग देना पड़ता था। मालिक मकान की 2 बड़ी-बड़ी कोठियां शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में बनी थी जिनका अच्छा खासा किराया आता था, लेकिन वो इतना मुनकसरुल मिजाज और सादगी पसंद था कि उसने अपनी पुरानी रविश हरगिज नहीं छोड़ी। याकूतपुरे का वो आबाई घर उसके लिए मौजू भी था, क्योंकि खुदा तरसी और भल मनसाहट उसके खमीर में थी। उसने जरूरतमंदों के काम आना अपना शेवा बना लिया था, 20 लड़कियों की शादियां उसने करवा दी थी, निकाह की मुबारक रस्म उसके घर ही

जान पाती। इस मुकद्दस फर्ज की तकमील के लिए उसने अपने घर में एक पक्का कमरा अलग रख छोड़ा था, जहां साफ और शफाफ चांदनियों का फर्श था, कालीन भी थे और गौ तकिए भी। इसके अलावा हैदराबादी शान शौकत की मखसूस मखमली जरीन मसनद भी बीचों बीच लगी रहती, जो खुद उसने खास इस मकसद के लिए बनवाई थी। बड़े बड़े मालदार लोग उसके घर आते रहते थे और आए दिन शादियां भी होती रहती थी, लेकिन कोई धूम धड़ाका या हंगामा बपा नहीं होता। खालिस इस्लामी तर्ज की शादियां होती और दुल्हे अपने दुल्हनों को लेकर सिधार जाते और लड़की वाले मालिक मकान को दुआएं देते रुखसत हो जाते। दुल्हे हमेशा गल्फ ममालिक से आए शेख होते और दुल्हन वाले वो मजबूर और मुफलिस माँ बाप होते जिनकी लड़की उनकी छाती पर मौला अली का वो अटल पहाड़ बनी होती, जहां लाख मन्नतों मुरादों के बावजूद कोई दुल्हा ब्याहने नहीं आता। लेकिन भला हो शेखों का कि हालात अब कुछ बेहतर हो चले थे। अब लड़की वाले लड़की पैदा होने पर रोते धोते नहीं थे, क्योंकि जैसे ही लड़की 10-11 साल की हुई वो मालिक मकान के दायरे करम में आ जाती, जो उसे किसी करीह मंजर शेख की नजर चढ़ा देता। और जिन घरों में तवे पर गिरती रोटी की थाप मुश्किल से सुनाई देती, वहां रुपयों की खनक गुनने लगती। उस गली से कई दुल्हने रुखसत हुई थी, कुछ गुमसुम सी वापिस भी आई थी, और कुछ का तो पता ही नहीं था कि आखिर वो हुई क्या। इससे क्या फर्क पड़ता है, यहाँ कौन उनके लिए सावन के झूले डाले बैठा था। अब अपन अपनी जिंदगी यहाँ बनाएंगे, हाँ, कफीर मियां ने फहमीदा बीबी के गले में बाहें डालकर कहा, और फहमीदा बीबी ने तड़ाखे की उपकाई ली। इन उपकाइयों का सिलसिला चलता रहा और एक दिन एक नन्ही सी जान ने उस अंधेरे कमरे में जन्म लिया। लेकिन माँ बाप को ऐसा लगा जैसे उस अंधेरे कमरे की रोशनी बढ़ गई हो। यही सिलसिला चलता रहा, बल्ब की रोशनी कम से कमतर होती रही और सादा लोग समझते रहे कि नूरे नजर बढ़ रहा है। जब तीन लड़कियों के बाद भी लड़का तवल्लुद नहीं हुआ तो दोनों चौंके और उन्हें एहसास हुआ कि अंधेरे का देव उस कमजोर और नातवान पांच बत्ती वाले बल्ब से धींगा मुश्ती कर रहा है। लड़कियां बाप पर गई थी, दुबली पतली नाजुक, लेकिन माँ से उनका कोई मुकाबला नहीं था। रूखी सूखी दाल रोटी और तीन बच्चों की माँ बनने पर भी फहमीदा बीबी का निखार वही था। अलबत्ता कफील मियाँ के बाल उन्हें दगा दे रहे थे, चिंदिया चट हो रही थी और जो बचे कुचे थे उनमें पुताई होने लगी थी, और फिर सीमेंट फैक्ट्री में काम करते हुए फेफड़ों ने मनो सीमेंट फांक ली थी और अब अपना रंग बदल रहे थे। इधर सबसे बड़ी लड़की सफिया अब 14 साल की होने को आई थी और दूसरी दोनों साल पीछे एक दूसरे से छोटी बड़ी थी। मालिक मकान उनके सरों पर बड़ी शफकत से हाथ फेरने लगा था। अब वो कभी कभी किराया वसूल करने के अलावा भी कफील मियाँ का हाल चाल पूछने चला जाता। कफील मियाँ बेचारे मारे पीटे काम पर जरूर जाते, नहीं जाते तो 5 हलक कैसे भीगते। लेकिन अब उनके गैर हाजिरियां लगने लगी थी। वो तो फैक्ट्री का मालिक शरीफ था जो उन्हें काम से अलग नहीं करता था। ऐसे में एक तूफान खड़ा हुआ। बड़ी लड़की सफिया जब नल से पानी भरने गई तो महल्ले के गुंडे पाशा ने उसके दुपट्टे का कोना चुटकी में पकड़ लिया और वहीं खड़े मोहसिन ने उसके मुंह पर एक मुक्का रसीद कर दिया। दोनों गुत्थम गुत्था हो गए और सफिया हांफती कांपती घर भाग गई। वो और मोहसिन एक दूसरे के कुछ नहीं लगते थे, उनका आपस का बस एक नजर का रिश्ता था, लेकिन बस यही एक रिश्ता तो गजब ढाता है। मोहसिन गरीब माँ बाप का बेटा जरूर था, लेकिन पढ़ लिख कर कुछ बनने के ख्वाब बुन रहा था। ख्वाब उसके माँ बाप भी देख रहे थे, क्योंकि उनका बेटा इंजीनियरिंग के आखिरी साल में पहुंच गया था। एक बार इंजीनियर हो जाए तो फिर उन्हें क्या कमी थी, और कुछ नहीं तो रिश्वत तो खा ही सकता था। लेकिन फिलहाल उन्होंने उसके जाने बगैर ही उसकी कीमत 4 लाख मुकरर कर दी थी। हैदराबाद में इंजीनियर के इतने ही दाम हैं। घोड़े जोड़े की रकम शायन निशान तो होनी ही चाहिए। सफिया के साथ पेश आए इस हादसे ने उसके माँ बाप को बौखला दिया। दूसरी दोनों लड़कियां भी जवानी में कदम रख रही थी और कफील मियाँ की सेहत ज्यादती पर उतर आई थी। उन्होंने और फहमीदा बीबी ने तय किया कि जल्द से जल्द सफिया की शादी कर देनी चाहिए, और जब मोहसिन ने अपना इंदिया जाहिर किया तो इनकी खुशी की हद नहीं रही। लेकिन उनकी ये खुशी देर पा नहीं थी, क्योंकि मोहसिन तो अपना मामला माँ बाप के हाथ सौंप कर छुट्टियां गुजारने वरंगल चला गया, और हेडक्वार्टर ने यहाँ साफ कह दिया कि अगर लड़की वाले 4 लाख देने तैयार हों तो उन्हें सफिया को

बनाने में कोई एतराज ना होगा। ये उनका खासा मस्खरापन था। जहां सिक्के से सिक्का टकराने को नहीं था, वहां 4 लाख कहां से जुड़ते। वो बेटे की जिद से भी वाकिफ थे। उसे तो भरम दे दिया कि वो खुद बातचीत कर रहे हैं, और इधर कफील मियां से कहा कि जल्द से जल्द लड़की का निकाह कहीं और कर दो तो हम तुम्हें 2000 रुपए देते हैं, जो कफील मियां ने उनके मुंह पर दे मारे। उनका यह जोम बेजा था। लाख कोशिश पर भी कोई सफिया को ब्याहने नहीं आया। जो आता हजारों की मांग लेकर आता। सबसे कम मांग 10,000 की थी, और इस बीच पाशा 4 बार चुटकी में सफिया का दुपट्टा पकड़ चुका था। मालिक मकान ये सारे तमाशे गौर से देख रहा था। आखिर उसे एक ऐसी तरकीब सूझी कि हींग लगे ना फिटकड़ी और रंग चौखा आए। मजबूर इंसान बहुत जल्द मदद के लिए बड़ा हाथ थाम लेता है, और कफील मियां तो मजबूरियों के गिरदाब में गोते लगाने लगे थे। आखिर उन्होंने उस तिनके का सहारा ले ही लिया। तय ये पाया कि अगर शेख सफिया को पसंद कर लेता है तो ठीक, वरना उसकी नजर दूसरी दोनों बहनों में से किसी पर टिकती है तो उससे 10,000 ले लिए जाएं और सफिया ठिकाने लगा दी जाए। अब रहा मालिक मकान का कमीशन, तो वो खुदा तर्स इंसान था। वो कफील मियां की एक पाई को भी हराम समझता था। जो भी होगा वो शेख से वसूल कर लेगा, वरना उसूलन तो वो लड़की वालों से भी कमीशन लिया करता था। दरअसल उसे यकीन था कि वो तीनों ही मासूम जवानियां उसके मक्तल में आएंगी जरूर। तभी से उसने एक शेख से उन कच्ची कलियों का सौदा कर रखा था। इस बीच वो शेख महज इंतजार की घड़ियां काटने के लिए एक निकाह कर चुका था, जिसे पिछली बार एक हबशी को बेचाया था। आखिर वो नेक साथ आई जब मक्तल खोला गया और उस करीह मंजर शेख के लिए बाजार सजाया गया। औरत का बाजार से बहुत पुराना रिश्ता है। यूसुफ तो बस एक ही बार बाजार में बिकने आए थे, बाजार को तो जुलैखाओं ने जिंदा रखा हुआ है। एक तरफ कालीन पर फहमीदा बीबी अपनी नुकसुक से दुरुस्त बेटियों के साथ खतावार सी सिर झुकाए बैठी थी, दूसरी तरफ कफील मियां थे। जंजीरें कहीं नहीं थी, मगर वो खुद को हर तरफ से जकड़ा हुआ महसूस कर रहे थे। उनकी सरकशी टूट चुकी थी। मालिक मकान शेख के पहलू में बैठा खुसर फुसर अरबी में बात कर रहा था। उसने जिंदगी में कभी कुरान शरीफ मुकम्मल नहीं पढ़ा था, लेकिन जी जान लगा कर अरबी जरूर सीख गया था, जो उसके लिए जादुई जबान थी। मालिक मकान उस शेख को हर लड़की के मुस्बत पहलू की तरफ मुतवज्जे करता रहा, और वो गिरगट नुमा शेख उन्हें ताकता रहा। 3 मासूम दिल खौफ से धड़कते रहे कि कुरा कहीं उसी के नाम ना पड़ जाए। कहीं भागना नामुमकिन था, जबान पर मुआशरे का पहरा बैठा था। मालिक मकान हुदहुद की तरह फुदक कर कफील मियां के पास जा बैठा। खुशी से उसके मुंह से अल्फाज नहीं निकल रहे थे, इतने बड़े सौदे की उसे उम्मीद नहीं थी। सुन रहे हो कफील मियां, बड़े नसीब वाले हो। कफील मियां कब्र का कतबा बने रहे। शेख साहब 50,000 देने का बोल रहे हैं। कौन सी पसंद है उसे, कतबे से आवाज आई। अभी पूछता हूं, हुदहुद उछल कर नकरे टहनी पर जा बैठा। कुछ बातें हुई। शेख साहब कह रहे हैं कि वो जिसका हाथ पकड़ ले उसी से निकाह करेंगे। शेख अपना चोगा संभाले उठा। नहीं शेख, मालिक मकान ने उसका दामन पकड़ लिया। हाथ लगाने से पहले पैसा रखो, देखते नहीं ये शरीफ मुसलमान लड़कियां हैं। शेख रुक गया। उसने मालिक मकान को हिकारत आमेज नजरों से देखा, फिर चोगे में हाथ डालकर नोटों के पुलंदे निकालकर उसके आगे फेंक दिए और आगे बढ़ा। लड़कियों की आंखों में आंसू खुश्क थे, क्योंकि वहां दहशत की सख्त गर्मी थी, लेकिन फहमीदा बीबी की आंखें रवा थीं, क्योंकि वहां यास और बेचारगी थी, और आज अपने जिगर के एक टुकड़े की कुर्बानी देने पर वो मजबूर हो गई थी ताकि दूसरे दो के नसीब ना उजड़े। लड़कियां कबूल सूरत थीं, रिश्ते आ रहे थे, लेकिन रकम ही पर बात अटक जाती थी। वो शेख के फावड़े जैसे पाओ को तकती रही, जो लड़कियों के आगे आकर रुक गए थे। सब दम्बा खुद शेख के फैसले के मुंतजर थे, और वो सिचुएशन का पूरा हिज ले रहा था। अचानक वो झुका और उसने फहमीदा बीबी का हाथ पकड़ लिया। उसने तीनों लड़कियों को नजरअंदाज कर दिया था। वक्त थम गया था, सिर्फ शेख की गिरफ्त में एक नब्ज फड़क रही थी, जिसे उसने खरीद लिया था। वो नब्ज एक औरत की नहीं थी, वो नब्ज एक मजबूर माँ की थी। फहमीदा चाहती तो झटक कर अपना हाथ छुड़ा सकती थी, बल्कि उसका फौरी रद्द अमल यही था। लेकिन उसी वक्त उसकी नजर नोटों की उन गड्डियों पर गई, और फिर 3 जोड़ी तकती हुई उन आंखों पर, जिनमें हैरत थी, खौफ था। वो पैसा उन तीनों

0: मासूम बच्चियों को दर दर होने से बचा सकता था। कफील में आग बगुला होकर खड़े हुए, लेकिन खांसी ने उन्हें फिर ढेर कर दिया। फहमीदा बीबी उनके पास दो जानों बैठ गई और उनके दोनों हाथ थाम लिए। उनकी आंखें मिली। लोग कैसे चंद लम्हों में बरसों का सफर तय कर लेते हैं। मैं तुमको 3 तलाक दिया फहमीदा बीबी, कफील मियां ने बमुश्किल कहा, और फहमीदा बीबी ने उस गैर मर्द के हाथ छोड़ दिए।
1: उम्मीद करते हैं सामीन ये अफसाना आपको जरूर पसंद आया होगा। आग के साथ दरिया, तहरीर थी मोहतरमा रफिया मंजूरुल अमीन की। बातें भी आपसे काफी हो गई, एक अफसाना आपकी नजर किया, तो चलिए जनाब अब मौसिकी का लुत्फ लिया जाए और आपको सुनवाते हैं अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की गाई ये खूबसूरत गजल।

0: ऐसे महव हो गए कि कब वो शुरू हुई कब खत्म हुई पता ही नहीं चला। हाँ इतना जरूर है कि बहुत खूबसूरत गजल थी और उम्मीद यही करते हैं कि आपको भी ये जरूर पसंद आई होगी। तो क्यों ना इसे सिलसिले को थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए। खामोश लब हैं झुकी हैं पलकें दिलों में उल्फत नई नई है। खामोश लब हैं झुकी हैं पलकें दिलों में उल्फत नई नई है। अभी तकल्लुफ है गुफ्तगू में अभी मोहब्बत नई नई है। यकीनन इस शेर से जुड़ी उस शख्सियत का नाम आपके जहन में जरूर उभरा होगा जिन्हें हम शबीना अदीब के नाम से जानते हैं। अवामी शायरा हैं और मुशायरों की जान हैं। बहुत ही खूबसूरत गजलें और नज़में वो कहती हैं। तो हमने सोचा क्यों ना आज के कलाम शायर में हम उनके कलाम से महसूस हों और आपको भी महसूस कराएं। तो आइए सुनते हैं मोहतरमा शबीना अदीब का ये कलाम कलाम शायर के तहत।
1: गजल का मतलब चंद शेर समाप्त करना।

चाहत खुशी को दिल के करीब कर लो। और ये शेर बतौर खास हाजिर करती हूँ, गरीब लो

0: नोट कर लीजिए, प्रोग्राम अदबनुमा, प्रोग्राम इंचार्ज उर्दू सर्विस csd@gmail.com। तो आज के प्रोग्राम में बस इतना ही, अपने मेजबान नईम को अब दीजिए इजाजत।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम अदबनुमा, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। आइए सुनते हैं कुछ मिले जुले फिल्मी नगमे। पहला नगमा है आदमी फिल्म से, आवाजें हैं कुमार सानू और साधना सरगम की।

0: बात खुशी को दिल के करीब कर लो।
1: वाह मजा आ गया, बहुत ही खूबसूरत कलाम शबीना अदीब साहिबा ने पेश किया और रूमानियत थी, जज्बात थे, ख्यालात थे, सब कुछ था। उम्मीद तो यही करते हैं जनाब कि आपको भी ये पसंद आया होगा। जरूर बताइएगा हमें ईमेल के जरिए, और हमारा ईमेल का पता

आइए अब सुनते हैं अगला नगमा, फरमान। आवाजें हैं शंकर महादेवन और अलका याग्निक की, फिल्म है अरमान।

0: इस नगमे के साथ ही फिल्मी म्यूज़िक का प्रोग्राम अब ख़त्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। शाम के 4:50 हुआ चाहते हैं, अब खबरें नशर होंगी।
1: रज़िया अहमद से खबरें सुनिए। यूरो बैंक ने यूनान से भारत रकूमात की मुंतकली में सहूलत के लिए यूपीआई पर मबनी सर्विस का आगाज़ किया है। कॉमर्स के वजीर पीयूष गोयल ने इसे भारत की डिजिटल अदायगी की तोसी में संग मील करार दिया है। भारत ने माली उमूर से मुतालिक एक्शन टास्क फोर्स FATF के तहत अपनी मजबूत हिमायत का इरादा किया है। पाकिस्तान ने ग्रे लिस्ट निगरानी में अपना नाम शामिल किए जाने पर नुक्ताचीनी की है। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों पर पाकिस्तान के फजाई हमलों की सख्त मजम्मत की है। इन हमलों में 36 शहरी हलाक जबकि 163 अफराद जख्मी हो गए हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान अमन मुज़ाकरात के ताल्लुक से गैर यकीनी की कैफियत बरकरार है। ईरान ने दोहा में मीटिंग को मुस्तरद कर दिया है। और फीफा वर्ल्ड कप में जर्मनी पेनाल्टी शूट आउट में पैराग्वे से हारने के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गया है। मराकश नीदरलैंड्स को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुँच गया है। खबरें तफसील से। यूरो बैंक ने यूनान से रकूमात भारत मुंतकिल करने के लिए यूपीआई पर मबनी रकूमात की मुंतकली की सर्विस का आगाज़ किया है ताकि कम से कम खर्च पर कम वक्त में ही रकम भारतीय सार्फीन को मुंतकिल करने में सहूलत हो सके। ये पहल भारत की अदायगियों से मुतालिक कौमी कॉरपोरेशन NPCI के साथ मस्कूरा बैंक के कलीदी इशराक का हिस्सा हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर कॉमर्स और सनतों के महकमे के वजीर पीयूष गोयल ने कहा कि यूरो बैंक में मस्कूरा खिदमात का आगाज़ आलमी सतह पर भारत के डिजिटल अदायगी इको निज़ाम की तोसी में एक अहम संग मील है। उन्होंने कहा कि आलमी सतह पर UPI की बढ़ती हुई मकबूलियत और इसके सताइश से तकनीक पर मबनी हल निकालने के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के नज़रिए में अतमाद की अक्कासी होती है। भारत ने माली उमूर से मुतालिक एक्शन टास्क फोर्स FATF के तहत अपनी हिमायत का इरादा किया है और कहा है कि दहशतगर्दी के लिए सरमाया फराहम किए जाने के खिलाफ आलमी मुहिम और मनी लॉन्ड्री की रोकथाम में ये एक अहम सुतून है। भारत के इस बयान से कबल पाकिस्तान ने FATF पर नुक्ताचीनी की थी क्योंकि ज़्यादा निगरानी की खातिर पाकिस्तान का नाम FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है। दहशतगर्द से निपटने से मुतालिक हफ्ते के मौके पर अक्वाम

0: बस्ती शुमाली वेनेजुला में 24 जून को एक बाद दिगरे आए जलजले में कम से कम 1719 अफराद हलाक और 5000 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए हैं। जलजले के नतीजे में तकरीबन 15000 लोग बेघर भी हो गए हैं। भारतीय फौज ने उन मीडिया रिपोर्ट्स को मुस्तरद कर दिया है जिनमें दावा किया गया था कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में दरअंदाजी की है और वहां कैंप कायम किए हैं। भारतीय फौज ने कहा है कि ऐसी तमाम खबरें बेबुनियाद और गलत हैं और इनमें कोई सच्चाई नहीं है। 2026 के फीफा वर्ल्ड कप में जर्मनी नॉकआउट मरहले में टूर्नामेंट से बाहर हो गया है। बोस्टन में पैराग्वे में पेनाल्टी शूटआउट में जर्मनी को 3-4 गोल से हरा दिया। मुकर्रर वक्त तक दोनों टीमों ने एक एक गोल किया था। फुटबॉल वर्ल्ड कप में जर्मनी की टीम को पहली मर्तबा पेनाल्टी शूटआउट में शिकस्त का सामना करना पड़ा है। उधर पैराग्वे इस कामयाबी के साथ ही प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। आज खेले गए नॉकआउट मरहले के एक और मैच में मराकश ने नीदरलैंड्स को पेनाल्टी शूटआउट में 2-3 गोल से हरा दिया। और आखिर में इस बुलेटिन की खास खास खबरें एक बार फिर सुनिए। यूरोबैंक ने यूनान से भारत रकूमात की मुंतकली में सहूलत के लिए यूपीआई पर मबनी सर्विस का आगाज किया है। कॉमर्स के वजीर पीयूष गोयल ने इसे भारत की डिजिटल अदायगी की तौसी में संग मील करार दिया है। भारत ने माली उमूर से मुतालिक एक्शन टास्क फोर्स FATF के तहत अपनी मजबूत हिमायत का अदा किया है। पाकिस्तान ने ग्रे लिस्ट निगरानी में अपना नाम शामिल किए जाने पर नुक्ताचीनी की है। और भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों पर पाकिस्तान के फजाई हमलों की सख्त मजम्मत की है। इन हमलों में 36 शहरी हलाक जबकि 163 अफराद जख्मी हुए हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अभी तक आप सुन रहे थे उर्दू सर्विस की दूसरी मजलिस। शाम के 5 बजने को हैं। अब हमारी आज की दूसरी मजलिस की नशरियात इख्तिताम पजीर होती हैं।
2: यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। मीडियम वेव 326.7 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज पर। संध्या के 5 बजे हैं। आइए सुने कार्यक्रम युवाणी।

नमस्कार युवाणी सुनने वाले सभी युवा मित्रों को आज रोहिता शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों आज का दिन प्रगतिवादी चेतना के बड़े कवि बाबा नागार्जुन का दिन और साथ ही आज का दिन कल्याण जी आनंद जी संगीतकार जोड़ी में से कल्याण जी का दिन। सो गाने आज कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन के आप सुनेंगे और बातें अपने बाबा की करेंगे। बाबा नागार्जुन की इस कविता के साथ आज के इस युवाणी कार्यक्रम का हम आरंभ करें कि नए गगन में नया सूर्य जो चमक रहा है, ये विशाल भूखंड आज जो दमक रहा है, मेरी भी आभा है इसमें। भीनी भीनी खुशबू वाले रंग बिरंगे ये जो इतने फूल खिले हैं, कल इनको मेरे प्राणों ने नहलाया था, कल इनको मेरे सपनों ने सहलाया था। पकी सुनहली फसलों से जो अब की ये खलिहान भर गया, मेरी रग रग के शोणित की बूंदें इसमें मुस्काती है। और नए गगन में नया सूर्य जो चमक रहा है, ये विशाल भूखंड आज जो दमक रहा है, मेरी भी आभा है इसमें।

गीत अभी आपने लता मंगेशकर का मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में सुना, गुलशन बाबरा की बोल थी और संगीत से सजाया इस गाने को कल्याण जी आनंद जी ने। दोस्तों, कल्याण जी वीर जी शाह, जिनका जन्म आज के दिन 1928 में कच्छ गुजरात में हुआ। सबसे पहले कल्याण जी ने हेमंत कुमार के साहेब के तौर पर हिंदी फिल्मी दुनिया में कदम रखा और वर्ष 1954 में आई फिल्म नागिन के गीतों के कुछ छंदबद्ध संगीत आपने बनाया। भारतीय फिल्मों में इलेक्ट्रॉनिक संगीत की शुरुआत करने का श्रेय कल्याण जी को जाता है। कल्याण जी को 1900

1992 में संगीत के क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान के लिए भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया। कल्याण जी ने अपने भाई आनंद जी के साथ जोड़ी बनाई जो कितनी प्रसिद्ध रही हम आप सब जानते हैं। बहरहाल दिन आज का बाबा नागार्जुन का भी, सो उनकी कविता हम सुने और गाना कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन का हम सुनेंगे। बड़ी प्रसिद्ध उनकी कविता के अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मान सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, उनके श्यामल नील सलिल में समतल देशों से आ आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर विष्टंत खोजते हंसों को तिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। कि ऋतु बसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, बाला ऋण की मृद किरणें थी, अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे, एक दूसरे से विरहित हो अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती, निशा काल से चिर अभिशापित बेबस उस चकवा चकवी का बंद हुआ क्रंदन फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे शैवालों की हरी दरी पर पणे कले छिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। इन कोमल कविताओं को जब हम पढ़ते हैं तो यकीन नहीं होता कि बाबा नागार्जुन प्रगतिवादी चेतना के इतने बड़े कवि हैं। उनके उपन्यासों को, उनके लिखे कुछ निबंधों को अगर आप पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि बाबा का जीवन संघर्ष कितना बड़ा था, कितने बेबाक थे सत्ता के साथ संघर्ष करने वाले। बाबा नागार्जुन को नमन करें और गाना सुने कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन का।

जी हाँ दोस्तों, बात अपने कर रहे थे बाबा नागार्जुन की। बाबा का जन्म आज के दिन 1911 में बिहार में हुआ, वर्तमान मधुबनी जिले के सतलखा में। ये उनका ननिहाल था और पैतृक गांव आपका दरभंगा जिले का तरोनी गांव था। बाबा ने हिंदी के अलावा मैथिली, संस्कृत और बांग्ला में मौलिक रचनाएं की। साहित्य अकादमी का आपको पुरस्कार मिला। मैथिली में आप यात्री उपनाम से लिखते थे और आपका जो मूल नाम है वो बैद्यनाथ मिश्र है। यूं बाबा का बचपन का नाम ठक्कन मिश्र था और ये नाम रखने का कारण दरअसल ये कि आपके पिता गोकुल मिश्र और माँ उमा देवी को लगातार 4 संतानें हुई और असमय ही वो सब चल बसी। संतान न जीने के कारण गोकुल मिश्र अति निराश अपने जीवन में हुए और इस अशिक्षित ब्राह्मण ने ईश्वर के प्रति आस्थावान तो स्वाभाविक रूप से थे, पर उन दिनों अपने आराध्य देव शंकर भगवान की पूजा ये ज़्यादा करते। तो बैद्यनाथ धाम में जाकर बाबा ने उन्हीं बैद्यनाथ की यथाशक्ति उपासना की और फिर उनके जो 5वीं संतान हुई तो डरे हुए माँ बाप ने जो एक पहले यूं एक माने की परंपरा थी कि ऐसा वैसा कोई नाम रख देने से वो संतान बच जाती है, तो यूं इस तरह उनका नाम ठक्कन रखा गया और बैद्यनाथ की कृपा से मिले तो बाद में उनका नाम बैद्यनाथ मिश्र रखा गया। और फिर जो साहित्यिक नाम है वो नागार्जुन अपने सुनी रहे हैं। इनके पिता गोकुल मिश्र की जो आर्थिक स्थिति थी वो अच्छी नहीं थी, काम धाम कुछ करते नहीं थे और अपनी सारी ज़मीन बटाई पर दे रखी थी, और जब उपज कम हो जाने के कारण कठिनाइयाँ उत्पन्न होती तो ज़मीन बेचने का चस्का इनको लग गया और ज़मीन इस तरह बेचते बेचते अंतिम समय में अपने उत्तराधिकारी यानी बाबा नागार्जुन के लिए मात्र 3 कट्ठा उपजाऊ भूमि और प्राय उतनी ही रहने की भूमि छोड़ गए और सूद भरना जो था वो अलग था। बहुत बाद में नागार्जुन दंपति ने उसे छुड़ाया। ऐसी पारिवारिक परिस्थितियों में बालक बैद्यनाथ मिश्र पढ़ने लगे। 6 वर्ष की आयु में माता का देहांत हो गया और इनके पिता इन्हें अपने कंधे पर बिठा के सगे संबंधियों के यहाँ गांव गांव आया जाया करते। इस प्रकार बचपन में ही पिता की लाचारी के कारण घूमने की आदत जो पड़ी तो ये आदत जो थी उम्र भर बाबा नागार्जुन की रही और यायावरी का जीवन आपने लगभग जिया। लेकिन आपकी कविताओं को जब पढ़ते हैं और सौंदर्य की कुछ कविताएं जिन्हें पढ़ते हैं तो यूँ यकीन नहीं होता कि बाबा नागार्जुन इतने रूखे मतलब दिखने वाले कवि थे या प्रगतिवादी चेतना की इस तरह की गहरी कविताएं रचने वाले थे। उनके कविता कालिदास को कुछ अपने पढ़ें और गाना आपके लिए तैयार है, सुनेंगे हम कि कालिदास सच सच बतलाना, कालिदास सच सच बतलाना, इंदुमती के मृत्यु शोक से आज रोया या तुम रोए थे, कालिदास सच सच बतलाना। शिवजी की तीसरी आंख से निकली हुई महाज्वाला में घृत मिश्रित सूखी समिधा सम कामदेव जब भस्म हो गया, रतिका क्रंदन सुन आंसू से तुमने ही तो दृग धोए थे, कालिदास सच सच बतलाना, रति रोई या तुम रोए थे।

कल्याण जी आनंद जी के संगीत का जादू आप सुन रहे हैं इस वक्त आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से। इस वक्त कार्यक्रम युपाणी में अभी आपने आशा भोसले की आवाज़ में हसरत का गाना सुना था। गीत फिल्म के लिए इस गाने को स्वरबद्ध किया संगीतकार कल्याण जी आनंद जी ने। दोस्तों, कई बार परिस्थितियाँ या कुछ बातें यूं होती है जो हमारे जीवन को

न सिर्फ एक दिशा देती है बल्कि उसे गति भी देती है, और साथ ही साथ वो मुकाम भी ये परिस्थितियां हमें दे जाती है जिस मुकाम के लिए हमारा जीवन बना है। लेकिन बाहरी तौर पर हमें ये जो घड़ी है ये संकटपूर्ण लगती है जब हम एक सुखद स्थिति से निकलकर प्रस्तुतिवश कहीं और चले जाते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की कविता भी है एक बूंद इस भाव की, कि बूंद जो आसमान से गिरती है उस बूंद को नहीं पता कि कहाँ पे गिरना है, कुछ संकोचित भाव से ऊपर ही रह जाती हैं उसी बादल में, लेकिन कुछ गिर जाती है, हवा का झोंका आता है, क्या पता आसमान में खुली सीप में गिर जाती है, मोती बन जाती है। इसी तरह की जो बात है वो संगीतकार कल्याण जी आनंद जी के साथ हुई। हिंदी फिल्म जगत की ये सफल संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी अपनी किराने की दुकान करते थे, वहीं पे नून तेल बेचते रह जाते और इस तरह ज़िंदगी उनकी गुजर जाती। अगर एक तंग हाल ग्राहक ने, जो उनका ग्राहक था और उधारी चुका नहीं पाता था, उसने उस उधारी के बदले दोनों को संगीत का जो संगीत की तालीम थी, संगीत की जो शिक्षा थी, वो देने की पेशकश की और हमारा उधार साहब इससे चुक जाएगा, तो उन्होंने यही स्वीकार किया। वीरजी शाह का परिवार कच्छ से मुंबई आ गया और आजीविका चलाने के लिए दुकान जो अभी हम आपको बता रहे हैं कि किराए खोल ली। अब इस ग्राहक ने दुकान से सामान तो ले लिया लेकिन पैसे नहीं चुका पाए। वीरजी ने एक दिन जब उनसे तकाजा किया तो उसने उधारी चुकाने के लिए वीरजी के दोनों बेटों कल्याण जी और आनंद जी को संगीत सिखाने का जिम्मा संभाला, और इस तरह उधारी के पैसे से एक ऐसी संगीतकार जोड़ी की नींव पड़ी जिसने अपने संगीत से हिंदी फिल्म जगत को हमेशा के लिए अपना कर्जदार बना दिया। वाकई दोस्तों ऐसे ऐसे नायाब गाने इस जोड़ी ने बनाए जिनका एक भी गाना अगर हम सुने, जैसे आप सुन रहे हैं, तो किसी भी गाने में उनका संगीत जो था वो दिल को छूने वाला था। छलिया से आरंभ उन्होंने किया, इससे पहले उन सट्टा बाजार में संगीत दिया। बहरहाल गाना बड़ा प्यारा हम आपको सुनवा रहे हैं हिमालय की गोद का, लेकिन एक कविता साथ ही साथ बाबा नागार्जुन की, सिंदूर तिलकित भा ये भाल, ये कविता है बाबा नागार्जुन की, कि घोर निर्जन परिस्थिति ने दिया है डाल, याद आता है तुम्हारा सिंदूर तिलकित भाल। कौन है वो व्यक्ति जिसको चाहिए ना समाज, कौन है वह एक जिसको नहीं पड़ता दूसरे से काज। चाहिए किसको नहीं सहयोग, चाहिए किसको नहीं सहवास, कौन चाहेगा कि उसका शून्य में टकराए ये उच्छ्वास। हो गया हूं मैं नहीं पाषाण, जिसको डाल दे कोई कहीं भी, करेगा वो कभी कुछ न विरोध, करेगा वो कुछ नहीं अनुरोध। वेदना ही नहीं उसके पास, उठेगा फिर कहां से निश्वास। मैं न साधारण सचेतन जंतु, यहां हाना किंतु और परंतु, यहां हर्ष विषाद चिंता क्रोध, यहाँ है सुख दुख का अवबोध, यहाँ है प्रत्यक्ष ओ अनुमान, यहाँ स्मृति विस्मृति सभी के स्थान। तभी तो तुम याद आती प्राण, हो गया हूँ मैं नहीं पाषाण। कुछ और सुनेंगे कविता, इसी कविता का शेष भाग। बहरहाल गाना आपके लिए ये प्यारा सा।

अभी आपने मुकेश की आवाज़ में आनंद बख्शी का लिखा ये गाना सुना, धुन बनाई कल्याण जी आनंद जी ने, और फिल्म का नाम था हिमालय की गोद में। बातें आज कर रहे हैं बाबा नागार्जुन और संगीतकार कल्याण जी आनंद जी की। कुछ और बात करें लेकिन उससे पहले ये गाना सुने लता मंगेशकर की आवाज़ में, कोरा कागज़ फिल्म से।

गाना भी आपने कोरा कागज़ फिल्म का सुना है। दोस्तों 1965 में प्रदर्शित संगीतमय फिल्म हिमालय की गोद में की सफलता के बाद कल्याण जी आनंद जी शोहरत की बुलंदियों पर जा पहुंचे। मनोज कुमार की फिल्म उपकार में उन्होंने कस्में वादी प्यार वफा जैसा दिल को छू लेने वाला संगीत देकर श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया। इसके अलावा मनोज कुमार की फिल्म पूरब और पश्चिम के लिए कल्याण जी आनंद जी ने दुल्हन चली पहन चली तीन रंगों की चौली और कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे जैसे सदाबहार संगीत देकर अलग ही समां बांध दिया था। 1970 में विजय आनंद निर्देशित फिल्म जूनी मेरा नाम में जो गाने आपने संगीत में डुबोए वो ऐसे कि सुनने वाले आज भी उन गीतों को याद करते हैं। गाना अगला सुनेंगे हम इसी फिल्म का, लेकिन बात बाबा की कविता की, उनकी कविता जो जीवन में निराश व्यक्तियों के लिए जिन्होंने जीवन की किसी साधना को आरंभ किया लेकिन अंतिम मुकाम तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन फिर भी उन्होंने उसे आरंभ तो किया। इसी बात को लेकर बाबा नागार्जुन लिखते हैं कि जो नहीं हो सके पूर्ण काम मैं उनको करता हूं प्रणाम, जो नहीं हो सके पूर्ण काम मैं उनको करता हूं प्रणाम, कुछ कुंठित और कुछ लक्ष्य भ्रष्ट जिनके अभिमंत्रित तीर हुए रण की समाप्ति के पहले ही जो वीर रिक्त तुणीर हुए उनको प्रणाम, जो छोटी सी नैया लेकर उतरे करने को उदद पार मन की मन में ही रही स्वयं हो गए उसी में निराकार मैं उनको करता हूँ प्रणाम, जो उच्च शिखर की ओर बढ़े रह रह नवनव उत्साह भरे पर कुछ ने ले ली हिमसमाधि कुछ असफल ही नीचे उतरे उनको प्रणाम, एकाकी ओर अकिंचन हो जो भू परिक्रमा को निकले हो गए पंगु प्रतिपल प्रतिपद जिनके इतने अदृष्ट के दाव चले उनको प्रणाम। अंत में लिखते हैं कि कृत कृत नहीं जो हो पाए प्रत्युत फांसी पर झूल गए कुछ ही दिन बीते हैं फिर भी ये दुनिया जिनको गई भूल मैं उनको करता हूँ प्रणाम। गाना सुने किशोर कुमार और उषा खन्ना की आवाज़ों में।

आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम विपाणी। आज के इस कार्यक्रम में बातें हम कर रहे हैं संगीतकार कल्याण जी आनंद जी और प्रगतिवादी चेतना के बड़े कवि बाबा नागार्जुन की। बातें और करेंगे, लेकिन उससे पहले ये प्यारा सा गाना सुने लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ों में। इंदिवर के बोल हैं और कल्याण जी आनंद जी का संगीत है।

दोस्तों वर्ष 1968 में प्रदर्शित फिल्म सरस्वती चंद्र के लिए कल्याण जी आनंद जी को सर्वश्रेष्ठ संगीतकार के राष्ट्रीय पुरस्कार के साथ साथ फिल्म फेयर पुरस्कार भी दिया गया। इसके अलावा 1974 में प्रदर्शित फिल्म कोरा कागज के लिए भी कल्याण जी आनंद जी को सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। कल्याण जी ने अपने सिने करियर में लगभग 250 से अधिक फिल्मों में संगीत दिया। वर्ष 1992 में संगीत के क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान के लिए उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया। लगभग 4 दशक तक अपने जादुई संगीत से श्रोताओं और दर्शकों को भाव विभोर करने वाले कल्याण जी 24 अगस्त 2000 को इस दुनिया को अलविदा कह गए। लेकिन उनका संगीत आज भी उनकी हमारे बीच की मौजूदगी को एहसास कराता है, यानी वो हमारे साथ आज भी है, ये उनके संगीत को सुनकर हमें महसूस होता है। प्रोग्राम का अगला गाना हम सुनेंगे, बात करें नागार्जुन की कविता की, एक उनकी बड़ी प्रसिद्ध कविता अकाल और उसके बाद, कि कई दिनों तक

चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त। कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। और दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद। धुआं उठा आंगन के ऊपर कई दिनों के बाद। और चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद। कौवे ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद। गाना सुने अगला।

0: बन जाओगे।
1: इतने पैसे?
0: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
1: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: कार्यक्रम में अब हम अंतिम मुकाम पर हैं, सो एक कविता बाबा नगरजन की गुलाबी चूड़ियां नाम से आप तक पहुंचाएं। बड़ी प्यारी कविता कि प्राइवेट बस का ड्राइवर है तो क्या हुआ, 7 साल की बच्ची का पिता तो है, सामने गियर से ऊपर हुक से लटका रखी है कांच की 4 चूड़ियां गुलाबी, बस की रफ्तार के मुताबिक हिलती रहती हैं। झुककर मैंने पूछ लिया, खा गया मानो झटका, अधेड़ उम्र का मुच्छड़ रोबिला चेहरा, आहिस्ते से बोला, हाँ साहब, लाख कहता हूँ नहीं मानती मुनिया, टांगे हुए है कई दिनों से अपनी अमानत यहाँ अब्बों अब्बा की नज़रों के सामने, मैं भी सोचता हूँ क्या बिगाड़ती है चूड़ियाँ, किस जुर्म पे हटा दूँ इनको यहाँ से। और ड्राइवर ने एक नज़र मुझे देखा और मैंने एक नज़र उसे देखा, छलक रहा था दूधिया वात्सल्य बड़ी बड़ी आंखों में, तरलता हावी थी सीधे साधे प्रश्न पर, और अब वे निगाहें फिर से हो गईं सड़क की ओर, और मैंने झुककर कहा, हाँ भाई मैं भी पिता हूँ, वो तो बस यूं ही पूछ लिया आपसे, वरना किसे नहीं भाई की नन्ही कलाइयों की गुलाबी चूड़ियाँ।

0: किशोर कुमार की आवाज़ में अभी आपने इंदीवर के बोल सुने। मौसिकार थे कल्याण जी आनंद जी। कार्यक्रम का अगला गाना सुने कुछ बात करें उससे पहले ये संदेश।
1: पुलिस?
2: मिस सीमा
1: जी,
2: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
1: क्यों? लेकिन मैं
2: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
1: डिजिटल अरेस्ट?

दोस्तों, याद करें अपने अपने समय की, अपने अपने क्षेत्र की इन महान प्रतिभाओं को, हिंदी साहित्य के प्रगतिवाद के बड़े नाम बाबा नागार्जुन को, संगीतकार कल्याण जी को, और प्रोग्राम के आखिर में इस गाने के साथ आज के इस आयोजन से हमें अब अनुमति दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जुबानी, हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरत कट से मीडियम वेव 326.7 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज पर बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त संध्या के ठीक 6 बजे हैं। लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण और उनका प्रसारण समय।

संध्या 6:05 पर सराय की भाषा का हमारा कार्यक्रम आप सुनेंगे झोंक माही दी। हम अपने खेल प्रेमी श्रोताओं को बता दें, आज द ओवल स्टेडियम लंदन में आयोजित होने वाले ICC T20 महिला क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट 2026 के तहत ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के मध्य खेले जाने वाले पहले सेमीफाइनल क्रिकेट मैच की ऑफ ट्यूब कमेंट्री आप सुनेंगे। ये मैच के आरंभ से यानी 7 बजे से आप सुनेंगे और मैच की समाप्ति के तक आप इस कमेंट्री का आनंद ले सकते हैं। हम आपको बता दें कि आप ये कमेंट्री DRM चैनल मीडियम वेव और FM बैंड पर सुन सकते हैं। न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर इस दौरान फिलर चलाया जाएगा।

ये थे आज के दिन प्रसारित किए जाने वाले शेष कार्यक्रम। अब सुनिए कल के दिन प्रसारित किए जाने वाले कुछ मुख्य मुख्य कार्यक्रमों का विवरण और उनका प्रसारण समय। कल सुबह 6:10 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना। तत्पश्चात 6:45 पर चिंतन। खेती नमस्ते कार्यक्रम में किसान भाई सुबह 7:10 पर बातचीत सुनेंगे कृषि में जल संरक्षण। सवेरे 7:30 पर कार्यक्रम होगा सुप्रभात। इस कार्यक्रम में चर्चा होगी कुछ वक्त बच्चों के साथ दहेज प्रथा, कानूनी अपराध और सेवा भाव। सीमा मिश्रा के लोकगीत आप सुनेंगे सवेरे 9:10 पर और फिल्म संगीत का

सुहाना सफर आप सुनेंगे दिन में 10 बजे। महिलाएं अपना कार्यक्रम महिला जगत सुनेंगे दिन में 1:05 पर। चर्चा के विषय रहेंगे वन महोत्सव सप्ताह, उपभोक्ता के अधिकार, घर का माहौल खुशनुमा बनाने में नारी की भूमिका। इसके अलावा डाइटिंग और संतुलित आहार में अंतर विषय पर बातें होगी। गीत आपको सुनवाए ही जाएंगे। फिल्मी गाने दिन में 2:30 पर भी आप सुनेंगे। युवा श्रोता अपना कार्यक्रम विवाणी सुनेंगे संध्या 5 बजे। कल के दिन हमारे युवा दोस्त आपकी पसंद कार्यक्रम सुनते हैं। चौपाल कार्यक्रम में पत्रोत्तर होगा संध्या 7 बजे। इसके लिए आप ईमेल, व्हाट्सएप और पत्र हमें प्रेषित कर सकते हैं। हम अपने सुनने वालों को बता दें कल रात 10 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम हेलो मन भावन। इस कार्यक्रम के लिए आप हमें कल दिन में 11 बजे से 11:30 तक 220992 और 220993 नंबर पर अपनी कॉल रिकॉर्ड करवा सकते हैं। सूरतगढ़ का एसटीडी कोड नंबर है 01509। याद रखें कल दिन में 11 बजे से 11:30 तक और कार्यक्रम आप सुनेंगे रात को 10 बजे हेलो मन भावन।

अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण और उनका प्रसारण समय। यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। संध्या के 6:05 हुए हैं। समय सराय की का है।

0: ये ऑल इंडिया रेडियो दी विदेश प्रसारण सेवा द सिराइकी प्रोग्राम है। मैं संजय पाहुजा आप सबको सलाम नमस्ते पेश करेंदा। अज असा हाजिर हैं आप सब दे सामने एक सिराइकी वार्ता कीते जिंदा शीर्षक है सतगुरु नानक प्रगटिया मिटी धुंध जग चानन होया। साडे नाल वार्ताकार हैं श्रीमती सीमा शर्मा जी, आइए सुनते हैं वार्ता।
1: सतगुरु नानक प्रगटिया मिटी धुंध जग चानन होवा, ज्यूकर सूरज निकलिया तारे छिपै अंधेर पलोवा। सिंह बुकै मिर्गावली भन्नी जाए न तीर तरोवा, जिथे बाबा पैर तरै पूजा आसन थापन सोवा। मानवता दे मसीहा, ज्ञान दे सागर, अंधकार को खत्म करन आले प्रकाश दे पुंज, धन धन श्री गुरु नानक देव जी दे 550वें प्रकाश पर्व दे पवित्र मौके ते सुनन आले सारे श्रोतावां को सीमा शर्मा दी प्यार भरी सत श्री अकाल, सलाम नमस्ते ते नाल ही दिलों शुभकामनावां ते लख लख वधाइयां। अज मैं हाजिर हाँ ना सिर्फ सिखां दे पहले गुरु बल्कि सारी मानवता दे गुरु साहिब श्री गुरु नानक देव जी दे 550वें प्रगट दिवस को समर्पित कुछ भाव ते उना दे जीवन दे बारे उना द्वारा दित्ती गई शिक्षावां ते उना दे पवित्र मुख तो उचारी गई बाणी बारे कुछ गल ही सांझा करन। अज पूरे संसार विच गुरु नानक नाम लेवा संगतां साहिब श्री गुरु नानक देव जी दा 550वां प्रकाश पर्व बड़ी धूमधाम ते शानो शौकत नाल मनांदे पए हन। सिख पंथ दी नींव रखण आले, जुल्मां दे खिलाफ आवाज़ बुलंद करन आले, पखंडवाद की खिलाफत करन आले, वहमां भरमां विच उलझी दुनिया को सीधे रास्ते पावण आले, आपसी भाईचारे दी ते मनुखता दी गाल करन आले, किरत करन वंड के खावन ते नाम जपो दी सीख डेवण आले, सो क्यों मंदा आखिऐ जित जम्मे राजान। ए संदेश डेके त्रिमतियां को समाज विच इज्जत डिवावण आले, दीन दुखियां दे पातशाह धन धन श्री गुरु नानक देव जी का जन्म राय भोई दी तलवंडी पाकिस्तान ननकाणा साहिब विच 1469 ईस्वी को मेहता कालू जी के घर माता तृप्ता जी की कोख तो थिया आई। गुरु जी निके ला तो

0: कि भवनों की सुरक्षा की गहनता से जांच की जाएगी और प्रदेश में अगले 2-3 दिनों में मॉनसून के प्रवेश के आसार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। देश भर में दुर्घटना संभावित ब्लैक स्पॉट और भूस्खलन संभावित सड़कों की पहचान की गई है। केंद्र सरकार ने 50,000 करोड़ रुपए की लागत से इनके सुधार का काम शुरू किया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में सड़क सुरक्षा पर आयोजित एक कार्यक्रम में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उचित साइनेज, लेन मार्किंग और अंडरपास के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार सड़क इंजीनियरिंग बनाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। श्री गडकरी ने सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने का आह्वान किया। उन्होंने लोगों से सड़क हादसे के घायलों की मदद करने और उन्हें सही समय पर अस्पताल पहुंचाने को कहा।
1: हमारे यहाँ जो एक्सीडेंट होते हैं तो हम तुरंत उनको अगर अस्पताल लेके जाएंगे तो हम 50,000 लोगों की जान बचा सकते हैं और इसलिए हमने एक योजना शुरू की है कि कोई भी व्यक्ति एक्सीडेंट होने के बाद पहले लोगों के मन में गलत फहमी है कि पुलिस पीछे लग जाएंगे, तकलीफ होगी। अब सुप्रीम कोर्ट का भी निर्णय आया, डिपार्टमेंट ने भी निर्णय किया है कि कोई तकलीफ नहीं होगी, आपसे कोई पूछताछ नहीं होगी। आप तुरंत उसको उठाइए, किसी भी अस्पताल में पहुंचाइए, उसको मदद करने वाले व्यक्ति को हम राहगीर कहेंगे और उसको 25,000 रुपए का अवार्ड देंगे।
0: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार मिट्टी और उसके लिए जरूरी उर्वरक की मात्रा के बारे में जानकारी देने के लिए मोबाइल ऐप विकसित कर रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री आज हिसार में खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने किसानों से मिट्टी में उत्पादकता बनाए रखने के लिए उर्वरकों और कीटनाशकों का संतुलित उपयोग करने का आग्रह किया। श्री चौहान ने कहा कि सरकार अल नीनो प्रभाव से कम वर्षा की आशंका के मद्देनजर बचाव के तरीकों पर विचार कर रही है।
2: हम संतुलित खाद डालें, संतुलित कीटनाशक जितनी जरूरत है, जिन तत्वों की आवश्यकता वही डालें। अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग से हमारी धरती

0: बीमार हो रही है, हमारी मिट्टी खराब हो रही है और उसमें उत्पादित जो फल सब्जी और अनाज है उसके कारण कई तरह की बीमारियां मानव शरीर में भी घर कर रही है। अलनीनो का प्रभाव यहाँ भी है, बारिश नहीं हो रही है, तो इस प्राकृतिक संतुलन को हमको बना के रखना पड़ेगा ताकि हमारी धरती सुरक्षित रहे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे।
1: विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन यानी वीबीजी रामजी देशभर में कल से लागू होने जा रहा है। ये देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समावेशी और मजबूत बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। वीबीजी रामजी पर पेश है न्यूज डेस्क से हमारी सहयोगी सुदर्शन नाहर की रिपोर्ट।
2: वीबीजी रामजी मनरेगा का स्थान लेगा। इसके तहत ग्रामीण परिवारों को 100 दिन से बढ़ाकर अब एक साल में 125 दिन का गारंटी शुदा रोजगार मिलेगा। पहले श्रमिकों को 15 दिन में भुगतान किया जाता था, अब इसमें साप्ताहिक भुगतान का प्रावधान किया गया है। ये राशि डीबीटी के माध्यम से दी जाएगी। वहीं निर्धारित समय में रोजगार उपलब्ध नहीं कराने पर बेरोजगारी भत्ता और मजदूरी भुगतान में देरी होने पर क्षतिपूर्ति का वैधानिक प्रावधान रहेगा। कृषि मौसम में बुआई और कटाई के लिए मजदूरों की कमी नहीं हो, इसके लिए 60 दिन की राहत दी गई है। ये योजना ग्रामीण आय में बढ़ोतरी और आजीविका सुरक्षा को सशक्त करने के लिए महत्वपूर्ण कदम है।
1: वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 की प्रावधानों के अनुसार कल से काम का समय सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक विश्राम काल रहेगा। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी आज सेवानिवृत्त हो गए। नए सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को जिम्मेदारी सौंपते हुए जनरल द्विवेदी ने भरोसा जताया कि उनके नेतृत्व में सेना अपनी गौरवशाली परंपराओं और व्यावसायिकता को कायम रखते हुए ऊंचाइयां छुएगी। सेना की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि सैन्य बलों को उनके परिवारों और देश के नागरिकों के अटूट विश्वास से शक्ति मिलती है।
3: भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूं।
1: सेना की दक्षिण पश्चिम कमान सप्तशक्ति के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह भी आज सेवानिवृत्त हो गए। उन्होंने जयपुर सैन्य स्टेशन के प्रेरणा स्थल पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। रक्षा जनसंपर्क अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल निखिल धवन ने बताया कि लगभग 4 दशकों की सैन्य सेवा के दौरान लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह ने जम्मू कश्मीर और पश्चिमी सीमा पर कई अहम और चुनौतीपूर्ण कमान और स्टाफ जिम्मेदारियां निभाई। इसके अलावा उन्होंने इन्फेंट्री डिवीजन और डेजर्ट स्ट्राइक कोर की जिम्मेदारी भी कामयाबी के साथ पूरी की। नई दिल्ली में कल हुए ऐतिहासिक यमुना जल समझौते के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के जयपुर आगमन पर आज उनका शहर के विभिन्न स्थानों पर स्वागत किया गया। प्रदेश भाजपा मुख्यालय में हुए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि इस समझौते से प्रदेश में जल सुरक्षा और समग्र विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। शेखावाटी क्षेत्र के लाखों परिवारों के जीवन में ये समझौता खुशहाली का नया अध्याय लिखेगा, साथ ही विकसित राजस्थान की मजबूत नींव बनेगा। श्री शर्मा ने कहा कि सरकार जनता से किए हर वादे को पूरा करने की कोशिश कर रही है।
4: जनता के जो काम है वो हम कार्यकर्ता और हमारी सरकार की सबकी प्राथमिकता है, हमें उनको प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाना चाहिए। तो हमें यह विचार भी करना चाहिए क्योंकि आपने देखा है पड़ोसी राज्यों में विकास की गति हमसे ज्यादा है, विकास की रेस में आगे चलते हुए हमारे राजस्थान को हमें कैसे आगे बढ़ाना है। और मेरे भाइयों, उस विश्वास को हमें कायम रखते हुए हमें जनता के बीच में जाना है। सामाजिक सरोकार के कार्य हों, सार्वजनिक कार्य हो, उनको बताना है और बताना ही नहीं, उनको करवाना है।
1: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों के भवनों की सुरक्षा और मरम्मत कार्यों को लेकर आज जयपुर में समीक्षा बैठक हुई। प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश कुमार यादव ने बैठक में विद्यार्थियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि किसी भी स्थिति में जर्जर और असुरक्षित भवनों का उपयोग नहीं किया जाए। श्री यादव ने सभी स्कूल भवनों की गहनता से जांच करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि पिछले वित्त वर्ष में 2000 से ज्यादा विद्यालयों से संबंधित विकास और निर्माण कार्य पूरे किए जा चुके हैं। वहीं चालू वित्त वर्ष में करीब 550 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण और विकास के काम

0: करवाए जाएंगे। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कल से जयपुर में होगा। 2 दिन के सम्मेलन का आयोजन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होगा। ये सम्मेलन प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा राजस्थान सरकार की ओर से आयोजित किया जा रहा है। नेस्कॉम और MNIT जयपुर इसके नॉलेज पार्टनर है। सम्मेलन की थीम विकसित भारत 2047 AI एनेबल्ड डेटा ड्रिवन एंड सिक्योर डिजिटल गवर्नेंस रखी गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर NCEG प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी, साथ ही राज्य सरकार के विभिन्न नवाचारों की लॉन्चिंग होगी। सम्मेलन के दूसरे दिन राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने आज जयपुर में पत्रकार वार्ता में कहा कि बेहतर सार्वजनिक सेवा वितरण के लिए नवाचारों और डिजिटल सेवाओं को साझा करने में ये सम्मेलन महत्वपूर्ण होगा।
1: राजस्थान सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का यह प्रयास है कि ई गवर्नेंस राज्य में प्रमोट हो। इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हमारे सामने प्रेजेंट किए जाएंगे, इनको रेप्लिकेट किया जाए और ज्यादा से ज्यादा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और आम आदमी को किस प्रकार से सरकार और आम आदमी के बीच में जो नजदीक टू टेक्नोलॉजी ला सकते हैं, इस प्रयास करें। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो पॉलिसी है, अधिकतम शासन न्यूनतम सरकार, इसका मतलब है कि डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन्स और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस, इसको रियलाइज करने में ये कॉन्फ्रेंस एक महत्वपूर्ण कदम है।
0: सम्मेलन के बारे में और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
2: सम्मेलन में 1000 से अधिक स्टार्टअप, शैक्षणिक संस्थाओं के 400 से ज्यादा प्रतिनिधियों सहित करीब 2700 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। पहले दिन 3 प्लेनरी और 6 ब्रेकआउट सत्र होंगे। वहीं दूसरे दिन 3 प्लेनरी सत्रों के बाद राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार वितरण के साथ सम्मेलन का समापन होगा। सम्मेलन में कृत्रिम बुद्धिमता, डीप टेक, क्वांटम कंप्यूटिंग, वॉइस फर्स्ट सॉल्यूशंस और सुरक्षित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित अन्य विषयों पर चर्चा होगी। यह आयोजन समावेशी, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित डिजिटल शासन की दिशा में महत्वपूर्ण मंच साबित होगा। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: प्रदेश में अगले 3-4 दिनों में मॉनसून के आगमन के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई है। भारत मौसम विज्ञान केंद्र ने 2 से 4 जुलाई के बीच राजस्थान में मॉनसून के प्रवेश की संभावना जताई है। इस दौरान राज्य के दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी हिस्सों में आंधी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी के आसार हैं। कोटा और उदयपुर संभाग में कहीं कहीं भारी बरसात भी हो सकती है। हालांकि फिलहाल कई स्थानों पर भीषण गर्मी और उमस का असर है। बीते 24 घंटों में श्रीगंगानगर में पारा 45 डिग्री सेल्सियस के पार दर्ज हुआ। बीकानेर, चूरू, बाड़मेर और फलौदी में भी दिन का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर मापा गया। उधर बाड़मेर में आज धूल भरी आंधी चली। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लोगों से सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने को कहा। सड़क हादसों के घायलों की मदद करने और उन्हें समय पर अस्पताल पहुंचाने की अपील की। VVG रामजी अधिनियम 2025 कल से देशभर में लागू होगा। ये मनरेगा का स्थान लेगा। जनरल धीरज सेठ ने देश के 31वें सेना प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया। राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों के भवनों की सुरक्षा की गहनता से जांच की जाएगी। और प्रदेश में अगले 2-3 दिनों में मॉनसून के प्रवेश के आसार। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से धौलपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख गौरव शर्मा ने तैयार किया है। जिले में जून माह के दौरान स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, पर्यावरण, कृषि और जनकल्याण से जुड़ी अनेक गतिविधियां आयोजित की गईं। प्रशासनिक स्तर पर भी कई महत्वपूर्ण कार्यों की समीक्षा और क्रियान्वयन जारी रहा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जिले भर में सामूहिक योगाभ्यास के आयोजन हुए। मुख्य समारोह मचकुंड रोड स्थित परशुराम धर्मशाला में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और बड़ी संख्या में आम नागरिकों ने भाग लिया। योग अभ्यास का संचालन पतंजलि योग पीठ से जुड़े योग प्रशिक्षकों के निर्देशन में किया गया। इस अवसर पर योग के महत्व और नियमित योग अभ्यास के लाभों की जानकारी दी गई। जिले के विभिन्न सरकारी कार्यालयों, शिक्षण संस्थानों और न्यायालय परिसरों में भी योग कार्यक्रम आयोजित

0: आयोजित किए गए। इस वर्ष योग दिवस कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में लोगों ने भागीदारी की। धौलपुर जिले से गुजरने वाले आगरा ग्वालियर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण मुआवजे को लेकर चल रहा विवाद सुलझ गया है। जिला प्रशासन NHAI और निर्माण कंपनी के बीच सहमति बनने के बाद किसानों को अतिरिक्त मुआवजा देने का निर्णय लिया गया है। इससे परियोजना का रास्ता साफ हो गया है और निर्माण कार्य जल्द ही शुरू होने की संभावना है। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत जिले भर में 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई। चिकित्सा विभाग के अनुसार जिले में 2 लाख से अधिक बच्चों को अभियान के तहत शामिल किया गया। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर विशेष बूथ लगाए गए। इसके बाद स्वास्थ्य टीमों ने घर घर जाकर बच्चों को दवा पिलाई। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व क्षेत्र में इन दिनों वन्य जीवों की गतिविधियां बढ़ी हैं। विभिन्न वन क्षेत्रों से बाघों का मूवमेंट लगातार दर्ज किया जा रहा है। हाल ही में एक मादा बाघ ने वन क्षेत्र में गश्त कर रहे एक वनकर्मी पर हमला कर दिया, जिससे वो घायल हो गया। वन विभाग लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के अवसर पर इंदिरा गांधी स्टेडियम में हॉकी मैत्री मैच आयोजित किया गया। मैच का उद्देश्य युवाओं में खेल भावना और खेलों के प्रति रुचि को बढ़ावा देना था। खिलाड़ियों ने उत्साहपूर्वक प्रतियोगिता में भाग लिया। रीनीट परीक्षा जिले के 7 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। परीक्षा में 2000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए। परीक्षा के दौरान सुरक्षा और निगरानी के विशेष प्रबंध किए गए। प्रशासन और परीक्षा एजेंसी के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से व्यवस्थाओं की निगरानी की। परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस सप्ताह के अवसर पर जिले में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान रैलियां, शपथ कार्यक्रम, संगोष्ठियां और जन जागरूकता गतिविधियां आयोजित की गई। जिला प्रशासन ने आमजन से नशा मुक्त समाज के निर्माण में सहयोग करने की अपील की। जनगणना 2027 की तैयारियों के तहत पहले चरण के दौरान मकान सूचीकरण और आवास गणना काम में धौलपुर जिले ने राज्य स्तर पर पहला स्थान प्राप्त किया है। इस उपलब्धि पर जिला प्रशासन ने सभी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया। जिला प्रशासन ने इसे टीम वर्क और बेहतर समन्वय का परिणाम बताया। जिले की युवा क्रिकेट खिलाड़ी रजत बघेल का भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम में चयन हुआ है। विकेट कीपर के रूप में उनका चयन होने पर जिले में खुशी का माहौल है। भारतीय टीम इन दिनों श्रीलंका दौरे पर है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जिले भर में पौधरोपण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। एक पेड़ लोकतंत्र के नाम अभियान के तहत सरकारी और निजी संस्थानों में पौधे लगाए गए। विभिन्न सामाजिक संगठनों और विद्यार्थियों ने इसमें भागीदारी की। जिले में मुहर्रम का पर्व परंपरागत तरीके से मनाया गया। विभिन्न क्षेत्रों से ताजिए निकाले गए और निर्धारित मार्गों से होते हुए करबला तक पहुंचाए गए। तीजा जुलूस के दौरान युवाओं ने पारंपरिक कर्तव्यों का प्रदर्शन किया। वहीं जिला मुख्यालय पर भगवान परशुराम की शोभा यात्रा भी निकाली गई। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। विभिन्न स्थानों पर श्रद्धालुओं ने शोभा यात्रा का स्वागत किया। धौलपुर जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ। पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जनताओं सड़कों माथे हिफाजत ने बधावन सारू कहो। सड़क हादसा में जख्मी लोगों की मदद करण अरवाना टेमसर अस्पताल पुगावन री अपील कीनी। VBG रामजी कानून 2025 कालों देश भर में लागू भेजावेला। मनरेगा री ठोड़ लेवेला। जनरल धीरज सेठ देश रा 31वां सेना अध्यक्ष रा ओहदारो कामकाज संभाल्यो। राज्य री सगली सरकारी स्कूलों रा भवनारी हिफाजत रा लिहाज गहरी जांच करी जावेला। और प्रदेश में आवता 2-3 दिन में चौमासा री बिरखा शुरू होवन रा आसार। समाचार सागे में सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। देश में हादसा वेवन और जमीन धंस जावन री शंका वाली सड़कों री पिछाण करी ची है। केंद्र सरकार 50,000 करोड़ रुपया खर्चों आरा सुधार

0: रो काम शुरू किनो है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज नई दिल्ली में सड़क माथे हिफाजत रे बारे में राखी जाए कार्यक्रम में आ जानकारी दीनी। गडकरी कहो के उचित निशान लेन मार्किंग और अंडरपास बनावन सागे अंतर्राष्ट्रीय मानकान मुजब सड़क इंजीनियरिंग काम लेवन री कोशिश करी जा रही है। श्री गडकरी सड़क माथे हिफाजत ने बढ़ावो देवन में जनता री भागीदारी बढ़ावन और मोटर गाड़ियां चलावन वालाओं यातायात नियमों री पालना करण री अरज कीनी। वह लोगों सड़क हादसा में जख्मी वेवन वाला री मदद करण और वाने सही भगत बना अस्पताल पुगावन री अरज कीनी।
1: हमारे यहाँ जो एक्सीडेंट होते हैं तो हम तुरंत उनको अगर अस्पताल लेके जाएंगे तो हम 50,000 लोगों की जान बचा सकते हैं, और इसलिए हमने एक योजना शुरू की है कि कोई भी व्यक्ति एक्सीडेंट होने के बाद, पहले लोगों के मन में गलत फहमी है कि पुलिस पीछे लग जाएंगे, तकलीफ होगी। अब सुप्रीम कोर्ट का भी निर्णय आया, डिपार्टमेंट ने भी निर्णय किया है कि कोई तकलीफ नहीं होगी, आपसे कोई पूछताछ नहीं होगी, आप तुरंत उसको उठाइए, किसी भी अस्पताल में पहुंचाइए, उसको मदद करने वाले

0: सड़कां माथे हिफाजत ने बढ़ावो देवण में जनतारी भागीदारी बढ़ावण एर मोटर गाड़ियां चलावण वालाओं यातायात नियमों री पालना करण री अरज कीनी वे लोगों सड़क हादसा में जख्मी वेवण वाला री मदद करण अरवाने सही भगत परा अस्पताल पुगावण री अरज कीनी।
1: हमारे यहाँ जो एक्सीडेंट होते हैं तो हम तुरंत उनको अगर अस्पताल लेके जाएंगे तो हम 50,000 लोगों की जान बचा सकते हैं। और इसलिए हमने एक योजना शुरू की है कि कोई भी व्यक्ति एक्सीडेंट होने के बाद पहले लोगों के मन में गलत फहमी है कि पुलिस पीछे लग जाएंगे, तकलीफ होगी। अब सुप्रीम कोर्ट का भी निर्णय आया, डिपार्टमेंट ने भी निर्णय किया है कि कोई तकलीफ नहीं होगी, आपसे कोई पूछताछ नहीं होगी। आप तुरंत उसको उठाइए, किसी भी अस्पताल में पहुंचाइए, उसको मदद करने वाले व्यक्ति को हम राहगीर कहेंगे और उसको 25,000 रुपए का अवार्ड देंगे।
0: सरकार मिट्टी और वहां सारू जरूरी खाद री मात्रा री जानकारी देवण बाबत मोबाइल ऐप विकसित कर रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाणा रा हिसार माय खेत बचाओ अभियान रा समापन समारोह माय आ जानकारी दीनी। वह किसानों मिट्टी री उत्पादकता बनाई रखण सारू खाद और कीड़ा मारण री दवाइयां जरूरत रा आधार काम लेवण री अरज कीनी। कृषि मंत्री कहो कि सरकार अल नीनो रा असर कम बिरखा वेवण री शंका न ध्यान राखता थका जरूरी इंतजाम कर रही है।
2: हम संतुलित खाद डालें, संतुलित कीटनाशक जितनी जरूरत है जिन तत्वों की आवश्यकता वही डालें। अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग से हमारी धरती बीमार हो रही है, हमारी मिट्टी खराब हो रही है और उसमें उत्पादित जो फल सब्जी और अनाज है उसके कारण कई तरह की बीमारियां मानव शरीर में भी घर कर रही है। अलनीनो का प्रभाव यहां भी है, बारिश नहीं हो रही है, तो इस प्राकृतिक संतुलन को हमको बना के रखना पड़ेगा ताकि हमारी धरती सुरक्षित रहे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे।
0: देश में काल 1 जुलाई विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन यानी VBG राम जी लागू भे जावेला। आ देश का गांवई हलका माए माली व्यवस्था ने समावेशी और मजबूत बनावण सारू मील रो पत्थर साबित फैला। VBG राम जी रबारा माए पेश है न्यूज डेस्क सालेहा गाजी री रपट।
3: VBG रामजी मनरेगा री ठोड़ लेवेला। इरा तहत गांवाई हलका माए लोगा ने 100 री बजाय 125 दिन रा काम री गारंटी मिलेला। VBG रामजी रा तहत मजूरा ने हर हफ्ता मजीरू रो चुकारो सीधो खाता माए करियो जावेला। तय मियाद माए काम मुहैया नी करावन री सूरत माए बेरोजगारी भत्ता मजूरी रा चुकारा माए मोड़ो वेवन परा क्षतिपूर्ति रो वैधानिक प्रावधान करियो जावे है। खेती बाड़ी री रुत माए बुवाई कटाई सारू मजूरा री कमी रोकण 60 दिन री राहत दिरी जी है। VBG रामजी गावाई हलका माए आमदनी बढ़ावण और काम धंधा री हिफाजत मजबूत बनावण री दिशा माए खास जतन है।
0: VBG रामजी 2025 रा प्रावधान रा मुजब कालू काम रो बगत समारे 9:05 बजा ताई रहवेला। सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी आज सेना प्रमुख रा ओहदा रिटायर वे गया। इस मौके वे कहो कि फौज ने फौजियां कमांडरां पहले वाला फौजियां वारा परिवारां हर देश री जनता रा अटूट भरोसा ताकत मिले है। जनरल द्विवेदी कहो कि भारतीय सेना लारला 2 साल माए हर मोर्चा माथे तुरंत काम करण रा बूता संतुलन हर सावचेती लगातार बनाई राखी।
4: भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों कमांडरों पूर्व सैनिकों परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूं।
0: जनरल द्विवेदी नुआ सेना अध्यक्ष जनरल धीरज सेठ ने जिम्मेदारी सौंपता थका। जनरल सेठ री अगुवाई माए भारतीय सेना री माथो ऊंचो करण वाली परंपरावां बनाई राखता थका। व्यावसायिकता और पक्का इरादाओं नई ऊंचाइयां हासिल करण रो भरोसो जतायो। सेनारी दक्षिण पश्चिम कमान रा प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह ही आज रिटायर फे गया। ई मौके वे जयपुर सैन्य स्टेशन रा प्रेरणा स्थल माथे शहीदा ने श्रद्धा भाव सागे याद कीना। रक्षा जनसंपर्क अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल निखिल धवन बतायो कि करीब 40 साल री सेवा रे दौरान लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह जम्मू कश्मीर और आतुणी सरहद माथे कई खास कमान और स्टाफ री जिम्मेदारियां निभाई। वह इन्फेंट्री डिवीजन और डेजर्ट स्ट्राइक कोर री जिम्मेदारी का

0: मियाँ भी सागे पूरी कीनी। नई दिल्ली में काल भ्या ऐतिहासिक यमुना जल समझौता पाछे जयपुर आवण पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा रो शहर में न्यारी न्यारी ठोड़ा स्वागत करीचियो। मुख्यमंत्री राज्य में जल सुरक्षा और पूरा विकास माथे पड़वा वाला सकारात्मक असर रे बारा में विचार बताया। वो कहो के ओ करार विकसित राजस्थान री मजबूत नींव बनेला। श्री शर्मा कहो के सरकार जनताओं करीचे हर वायदा न पूरो करण री कोशिश कर रही है।
1: जनता के जो काम है वो हम कार्यकर्ता और हमारी सरकार की सबकी प्राथमिकता है, हमें उनको प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाना चाहिए। तो हमें यह विचार भी करना चाहिए क्योंकि आपने देखा है पड़ोसी राज्यों में विकास की गति हमसे ज्यादा है, विकास की रेस में आगे चलते हुए हमारे राजस्थान को हमें कैसे आगे बढ़ाना है। और मेरे भाइयों, उस विश्वास को हमें कायम रखते हुए हमें जनता के बीच में जाना है, सामाजिक सरोकार के कार्य हों, सार्वजनिक कार्य हों, उनको बताना है और बताना ही नहीं उनको करवाना है।
0: समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मना एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक माथे AIR न्यूज राजस्थान पर आई सुन सको हो। इस आगे आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in माथे समाचार सुन सको हो और वहाँ जुड़िया फोटो और वीडियो देख सको हो। राज्य री सरकारी स्कूलां सारू किणी हालात माए हर जर्जर और असुरक्षित भवन काम नी लेवन रा हुकम दिया चिया है। स्कूल भवना री हिफाजत और मरम्मत रा कामा रो जायजो लेवन सारू आज जयपुर माए राखी जी मीटिंग माए प्रारंभिक शिक्षा विभाग रा अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश कुमार यादव आ जानकारी दीनी। यादव सगली स्कूलां रा भवन री गहराई उ जांच करावन रा हुकम दीना। वे बतायो कि लारला माली साल माए 2032 स्कूलों जुड़िया विकास और बनाई चुनाई रा काम करी जिया, जबकि चालू माली साल माए करीब 550 करोड़ रुपया रा खर्च वाला काम कराया जावेला। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन काल जयपुर माए शुरू भेला। विकसित भारत 2047 AI एनेबल्ड डेटा ड्रिवन एंड सिक्योर डिजिटल गवर्नेंस मुद्दा माथे विवरण वाला ई सम्मेलन रो उद्घाटन मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा करेला। ई मौके NCEG प्रदर्शनी लगाई जावेला और राज्य सरकार रा न्यारा न्यारा नुआ कामा री शुरुआत फैला। सम्मेलन रा दूजा दिन राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार दिया जावेला। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह रोई ई कार्यक्रम माए शिरकत करण रो कार्यक्रम है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास आज जयपुर में खबर नवीसा सागे बातचीत रे दौरान आ जानकारी दीनी। वे बतायो कि सरकारी सेवा बेहतर तरीकों पुगावण नुआ कामा और डिजिटल सेवावां री पहुंच जनता ताई बधावण माए ओ सम्मेलन खास साबित फैला।
2: राजस्थान सरकार का माननीय मुख्यमंत्री जी का यह प्रयास है कि ई गवर्नेंस राज्य में प्रमोट हो। इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हमारे सामने प्रेजेंट किए जाएंगे इनको रेप्लिकेट किया जाए और ज्यादा से ज्यादा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और आम आदमी को किस प्रकार से सरकार और आम आदमी के बीच में जो नजदीक टू टेक्नोलॉजी ला सकते हैं इस प्रयास करें। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो पॉलिसी है अधिकतम शासन न्यूनतम सरकार, इसका मतलब है कि डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन्स और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस, इसको रियलाइज करने में ये कॉन्फ्रेंस एक महत्वपूर्ण कदम है।
0: सम्मेलन रबारा में और ब्यूरो माना खबर नवीस हूँ।
3: सम्मेलन में 1000 से अधिक स्टार्टअप शैक्षणिक संस्थाओं के 400 से ज्यादा प्रतिनिधियों सहित करीब 2700 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। पहले दिन 3 प्लेनरी और 6 ब्रेकआउट सत्र होंगे। वहीं दूसरे दिन 3 प्लेनरी सत्रों के बाद राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार वितरण के साथ सम्मेलन का समापन होगा। सम्मेलन में कृत्रिम बुद्धिमता, डीप टेक, क्वांटम कंप्यूटिंग, वॉइस फर्स्ट सॉल्यूशंस और सुरक्षित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित अन्य विषयों पर चर्चा होगी। यह आयोजन समावेशी, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित डिजिटल शासन की दिशा में महत्वपूर्ण मंच साबित होगा। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: प्रदेश में आवता 3-4 दिन में चौमासा री बिरखा स्वरूप एवं राचोखा हालात बनी उड़ा है। भारत मौसम विज्ञान केंद्र 2-4 जुलाई बीच राज्य में चौमासा री बिरखा स्वरूप एवं रा आसार जताया है।

0: इन दौरान प्रदेश रा लंकाऊ और लंकाऊ उगनी हल्का माए आंधी बारिश उंजुड़ी हलचल माए बढ़ोतरी री संभावना है। कोटा और उदयपुर संभाग माए कठे कठे भारी बरसात रा आसार है। फिलहाल कई थोड़ा जबरदस्त गर्मी और उमस रो असर बनियोडो है। लाडला 24 घंटा माए श्री गंगानगर माए पारो 45 डिग्री सेल्सियस ने पार कर गयो। बाड़मेर माए आज आंधी चाली। आखिर माए खास समाचार एक और फिर सुन ले रहो। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जनताओं सड़कों माथे हिफाजत ने बधावन सारू कहो। सड़क हादसा में जख्मी लोगों ने मदद करण अरवाना टेम सर अस्पताल पुगावन री अपील कीनी। वीबीजी रामजी कानून 2025 काल देश भर में लागू है जावेला। जनरल धीरज सेठ देश रा 31वां सेना अध्यक्ष रा होदारो कामकाज संभालियो। तजरी सगली सरकारी स्कूलों रा भवना री हिफाजत रा लिहाज गहरी जाँच करी जावेला। और प्रदेश में आवता 2-3 दिन में चौमासारी बिरखा स्वरूप बन रहा आसार। इसागी प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भयो। मानो आगलो समाचार बुलेटिन काल सवारे 9 बजे हिंदी में प्रसारित करियो चावेला। नमस्कार।
1: यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। मीडियम वेव 326.7 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर। दावल स्टेडियम लंदन में आयोजित होने वाले आईसीसी T20 महिला विश्व कप टूर्नामेंट 2026 के तहत ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के मध्य खेले जाने वाले पहले सेमीफाइनल क्रिकेट मैच की ऑफ ट्यूब कमेंट्री का अब प्रसारण होगा। श्रोता ध्यान दें, ये कमेंट्री आप DRM चैनल मीडियम वेव और FM बैंड पर सुनेंगे। इस दौरान न्यूज ऑन AIR ऐप पर फिलर बजाया जाएगा। आइए सुने ये क्रिकेट कमेंट्री।

0: यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। रात्रि के 8:00 8:45 हुए हैं। थोड़ी देर में आप समाचार सुनेंगे।
1: प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 कल से लागू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिक सेवाओं में सुधार के लिए विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड का शुभारंभ किया। दिल्ली, झारखंड, मेघालय, कर्नाटक और महाराष्ट्र में मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया शुरू। मॉनसून के अगले 2 से 3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब की ओर बढ़ने की संभावना। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात टेक्सस में आइवरी कोस्ट का मुकाबला नॉर्वे से। अब समाचार विस्तार से। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 कल से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो जाएगा। इसके राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन की पूर्व संध्या पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक दिन भी बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध करा दिए गए हैं, कार्यान्वयन प्रणालियां पूरी तरह से तैयार हैं और चल रहे कार्य बिना किसी रुकावट के जारी रहेंगे। श्री चौहान ने कहा कि 125 दिनों के वेतन भोगी रोजगार की बढ़ी हुई गारंटी से ग्रामीण आजीविका मजबूत होगी। ये अधिनियम प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार के लिए वैधानिक वेतन भोगी रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विद्यार्थियों से शिक्षा के माध्यम से समान और समावेशी समाज के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया है। वे आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थी। राष्ट्रपति ने कहा कि विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। उन्होंने
2: जनजातीय विश्वविद्यालय से विशेष रूप से ये अपेक्षा भी की जाती है कि वे जनजातीय भाषा बोलियां के संरक्षण पर मिशन मोड में काम करेंगे। मुझे बताया गया है कि संस्था के ट्राइबल स्टडीज विभाग द्वारा कुई और सावरा समेत अनेक जनजातीय बोलियों के डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के इसी प्रकार से जमीनी कार्य किया जा रहा है।
1: भारतीय रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। रेलवे ने दक्षिण पूर्वी रेलवे में लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से शेष 48 फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने की मंजूरी दी है। इससे देश में रेलवे नेटवर्क की डिजिटल संचार व्यवस्था मजबूत होगी। ये परियोजना दक्षिण पूर्वी रेलवे के 4 प्रमुख डिवीजनों में 1600 किलोमीटर से अधिक मार्ग पर फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। पूर्वी रेलवे के आसनसोल डिवीजन के हाई डेंसिटी नेटवर्क और हाईली यूटिलाइज्ड नेटवर्क मार्गों पर स्थित 27 स्टेशनों या डिब्बों में रिले आधारित इंटरलॉकिंग को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग से बदलने की परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। स्वीकृत कार्य में 28 रिले आधारित इंटरलॉकिंग को अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणालियों से बदला जाएगा। परियोजना की लागत 400 करोड़ रुपये से अधिक है। इसके अलावा रेलवे ने करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से पूर्वी मध्य रेलवे के 44 किलोमीटर से अधिक लंबे मानसी सहरसा खंड के दोहरीकरण को भी स्वीकृति दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम FCRA 2

2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक यानी EOCI कार्ड सेवा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इन दोनों पहलों से नागरिक सेवाएं बेहतर होंगी और FCRA पोर्टल के माध्यम से विदेशी चंदा प्राप्त करने वाली संस्थाओं को होने वाली कठिनाइयां दूर होंगी। उन्होंने कहा कि सख्त निगरानी व्यवस्था से देश की सुरक्षा और मजबूत होती है। गृह मंत्री ने बताया कि नई EOCI व्यवस्था में पहले की कई समस्याओं का समाधान किया गया है। इससे 50 लाख से अधिक OCI कार्ड धारकों को सुविधा मिलेगी।

0: कहा कि अवैध प्रवासन, मानव तस्करी, धोखाधड़ी करने वाले बिचौलियों और शोषण जैसी चुनौतियों से निपटना सभी देशों की साझा जिम्मेदारी है। वे आज नई दिल्ली में मानव संसाधन आवागमन मंच को संबोधित कर रहे थे। विदेश मंत्री ने कहा कि सुरक्षित और कानूनी प्रवासन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता ई माइग्रेट प्लेटफॉर्म से साफ दिखाई देती है।
1: One key pillar which has brought about a transformation.
2: प्रवासन से जुड़े प्रबंधन में बहुत बड़ा बदलाव डिजिटल व्यवस्था और प्रणालियों से आया है। सुरक्षित और कानूनी आवाजाही के प्रति भारत की प्रतिबद्धता ई माइग्रेट प्लेटफॉर्म में दिखती है। इसकी शुरुआत के बाद से ही 50 लाख से ज्यादा लोगों को विदेश जाने की मंजूरी दी जा चुकी है। यह डिजिटल तंत्र लोगों की आवाजाही को आसान बनाने के साथ साथ प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का एक वैश्विक उदाहरण बन गया है।
0: विदेश मंत्री ने आज आयरलैंड की विदेश मंत्री हेलेन मैकेंटे को यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभालने पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि उन्होंने व्यापार और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर भी चर्चा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि मजबूत अर्थव्यवस्था से ही देश की रक्षा क्षमता मजबूत होती है। वे आज गुजरात के वडोदरा में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। रक्षा मंत्री ने कहा कि रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है।
3: 2014 में हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन अप्रोक्सीमेटली 46,000 करोड़ था, लेकिन आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन बढ़कर 1,78,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। इसके अलावा भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट अप्रोक्सीमेटली 39,000 करोड़ का कर लिया है और आत्मनिर्भरता के इस लक्ष्य को प्राप्त करने में गुजरात अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकता है।
0: रक्षा मंत्री ने कहा कि वडोदरा अब देश की निजी क्षेत्र की पहली सैन्य विमान निर्माण इकाई का केंद्र बन गया है। ये टाटा समूह और एयरबस मिलकर C-295 परिवहन विमान बना रहे हैं। जनरल धीरज सेठ ने आज देश के 31वें सेना प्रमुख के रूप में पदभार संभाल लिया है। उन्होंने जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लिया है। जनरल धीरज सेठ पुणे स्थित खड़कवासला की राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र हैं। उन्हें दिसंबर 1986 में बख्तरबंद कोर में कमीशन मिला था। इससे पहले जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्षों में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
4: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
0: दिल्ली और 4 राज्यों कर्नाटक, झारखंड, मेघालय तथा महाराष्ट्र में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत दिल्ली में 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक घर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की 2 प्रतियां वितरित करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पहले दिन 1,68,200 से अधिक गणना प्रपत्र मतदाताओं को वितरित किए गए। वहीं 7,600 से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण किया गया। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दाखिल किया सकेंगी। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। मतदाता अपना गणना प्रपत्र ऑनलाइन भी voters.eci.gov.in पर भर सकते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज अपना गणना प्रपत्र जमा किया और राष्ट्रीय राजधानी के सभी पात्र मतदाताओं से मतदाता सूची के चल रहे इस अभियान में भाग लेने की अपील की। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उधर महाराष्ट्र में भी बूथ स्तरीय अधिकारियों ने घर घर जाकर मतदाता रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए सत्यापन अभियान शुरू किया है।
6: ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 5 अगस्त को जारी की जाएगी, जबकि अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। जिन वोटरों का नाम पिछली SIR की मतदाता सूची में शामिल था, उन्हें आम तौर पर कोई नया दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी। बाकी वोटरों को निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 12 दस्तावेजों में से कोई एक जमा करना पड़ सकता है। आयोग का कहना है कि इस अभियान का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि जिसका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए उसका नाम जरूर शामिल हो और जो इसके लिए योग्य नहीं है उसका नाम सूची में ना हो। देवप्रिय भट्टाचार्य, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: उत्तराखंड में मदरसा शिक्षा व्यवस्था में कल से बड़ा बदलाव लागू होगा। नई व्यवस्था के तहत उत्तराखंड मदरसा

0: शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। अब राज्य के सभी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के तहत संचालित होंगे। नई व्यवस्था के तहत उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को मान्यता देने, उनकी कार्य प्रणाली की निगरानी करने और शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का काम करेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों से बातचीत की। चर्चा दो प्रमुख विषयों पर केंद्रित रही। पहला विषय था व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन में ढील और अन्य सुधार, जबकि दूसरा विषय था आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय अलगाव को तोड़ने के महत्व पर बल दिया। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने जन्मजात नागरिकता को समाप्त करने के उद्देश्य से जारी किए गए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकारी आदेश को रद्द कर दिया है और इस बात की पुष्टि की है कि अमेरिका में जन्म लेने वाले लगभग हर व्यक्ति को स्वतः ही अमेरिकी नागरिकता प्राप्त हो जाती है। न्यायालय ने 6-3 के बहुमत से कार्यकारी आदेश को गैर कानूनी घोषित किया। पश्चिम एशिया संघर्ष को देखते हुए सरकार ने महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर सीमा शुल्क में पूर्ण छूट 15 जुलाई 2026 तक बढ़ा दी है। इससे पहले वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में उत्पन्न व्यवधानों के कारण अस्थायी और लक्षित राहत के रूप में केंद्र ने आज तक पूर्ण सीमा शुल्क में छूट प्रदान की थी। संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान के स्थायी मिशन ने पक्तिया, पक्तिका और कुनार प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। मिशन ने कहा है कि इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित कई अफगान नागरिक मारे गए और घायल हुए। वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था और 55,000 तीर्थयात्रियों के ठहरने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पहले जत्थे को रवाना करेंगे। 3,880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ गुफा की 57 दिनों की तीर्थयात्रा की शुरुआत 3 जुलाई से होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हूल दिवस पर सिधो कान्हू, चंद भैरव, फूलो झानो सहित विदेशी शासन के अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने वाले सभी वीर आदिवासी योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की है। हूल दिवस के अवसर पर झारखंड में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2-3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आगे बढ़ने की संभावना है। इस दौरान उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दमनदीव तथा राजस्थान में भी मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है। बृहस्पतिवार तक बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरल, माहे, कोंकण, गोवा, ओडिशा में मूसलाधार बारिश की आशंका है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज आइवरी कोस्ट का सामना नॉर्वे से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 10:30 बजे से अमेरिका के टेक्सस में खेला जाएगा। वहीं देर रात 2:30 बजे फ्रांस और स्वीडन आमने सामने होंगे। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कल से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। 2 दिन तक चलने वाला ये सम्मेलन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन पर सचिवों से बातचीत की। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 कल से लागू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिक सेवाओं में सुधार के लिए विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड का शुभारंभ किया। दिल्ली, झारखंड, मेघालय, कर्नाटक और महाराष्ट्र में मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया शुरू। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I am Anuja Kumar with the news at 9.

यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। मीडियम वेव 326.7 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त रात के 10:31 और 10 सेकंड हुए हैं। आइए फिल्म संगीत सुनें।

ही पड़ा ये माना मेरी जान मोहब्बत सजा है ये माना मेरी जान मोहब्बत।

0: अभी आपने मोहम्मद रफ़ी, बलबीर और साथियों की आवाज़ों में हंसते ज़ख्म फिल्म की ये कव्वाली सुनी। लीजिए अब सुनिए किशोर कुमार और साथियों की आवाज़ों में अनोखी अदा फिल्म से मजरूह की ये कव्वाली।
1: न पूछो सनम आपका।

अभी आपने मोहम्मद रफ़ी, मन्ना डे, बातिश, सुधा और साथियों की आवाज़ों में साहिर की ये कव्वाली सुनी। फिल्म थी बरसात की रात। लीजिए कार्यक्रम में आप सुनिए मोहम्मद रफ़ी साथियों की आवाज़ों में आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, ये आकाशवाणी सूरतगढ़ है। रात के 11 बजने वाले हैं, थोड़ी देर में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पजश्कियन से टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पजश्कियन ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम और आगामी कदमों की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने ईरान की अमरीका के साथ बनी सहमति का स्वागत किया और भारत के स्थापित रुख को दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। श्री मोदी ने क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने और नौवहन तथा व्यापारिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता पर बल दिया। पश्चिम एशिया संघर्ष को देखते हुए सरकार ने महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर सीमा शुल्क में पूर्ण छूट 15 जुलाई तक बढ़ा दी है। इससे पहले वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में उत्पन्न व्यवधानों के कारण अस्थायी और लक्षित राहत के रूप में केंद्र ने आज तक पूर्ण सीमा शुल्क में छूट प्रदान की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने आज नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों से बातचीत की। चर्चा दो प्रमुख विषयों पर केंद्रित रही। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री

0: ने समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय अलगाव को तोड़ने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने अंतर विभागीय समन्वय और सूचित निर्णय लेने के लिए एक प्रभावी मंच के रूप में पीएम गति शक्ति के व्यापक उपयोग को प्रोत्साहित किया। इस दौरान सचिवों ने दो प्रमुख विषयों के अनुरूप अपने मंत्रालयों और विभागों द्वारा उठाए जा रहे प्रमुख कदमों की रूपरेखा प्रस्तुत की। पहला विषय था व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए नियमन में ढील तथा अन्य सुधार, जबकि दूसरा विषय था आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी अधिनियम 2025 कल से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो जाएगा। इसके राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन की पूर्व संध्या पर ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक दिन भी बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। श्री चौहान ने कहा कि 125 दिनों के वेतन भोगी रोजगार की बढ़ी हुई गारंटी से ग्रामीण आजीविका मजबूत होगी। ये अधिनियम प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार के लिए वैधानिक वेतन भोगी रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विद्यार्थियों से शिक्षा के माध्यम से समान और समावेशी समाज के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया है। वे आज आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थीं। राष्ट्रपति ने कहा कि विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए।
1: जनजातीय विश्वविद्यालय से विशेष रूप से ये अपेक्षा भी की जाती है कि वे जनजातियों भाषा बोलियां के संरक्षण पर मिशन मोड में काम करेंगे। मुझे बताया गया है कि संस्था के ट्राइबल स्टडीज विभाग द्वारा कुई और सावरा समेत अनेक जनजातीय बोलियों के डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के इसी प्रकार से जमीनी कार्य किया जा रहा है।
0: भारतीय रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसके अलावा रेलवे ने करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से पूर्वी मध्य रेलवे के 44 किलोमीटर से अधिक लंबे मानसी सहरसा खंड के दोहरीकरण को भी स्वीकृति दे दी है। ये खंड वर्तमान में मानसी साढ़ागढ़ मार्ग पर एक सिंगल लाइन कॉरिडोर है। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2-3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आगे बढ़ने की संभावना है। इस दौरान उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दमन दीव और राजस्थान में भी मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में टेक्सस में आइवरी कोस्ट का मुकाबला नॉर्वे से हो रहा है। दोनों टीमें 0-0 से बराबरी पर हैं। देर रात नॉकआउट चरण में 2:30 बजे फ्रांस और स्वीडन आमने सामने होंगे। प्रतियोगिता में पराग्वे ने उलटफेर करते हुए जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। मोरक्को और ब्राजील ने भी अंतिम 16 में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Kiran Jha. Prime Minister Narendra Modi today had a telephonic conversation with the Iranian President Dr. Masoud Pezeshkian. During the talks, President Pezeshkian briefed Mr. Modi on the recent developments in West Asia and the way forward. The Prime Minister welcomed the understanding reached and reiterated India's consistent position that all issues must be resolved through dialogue and diplomacy. Mr. Modi reiterated the need for continued efforts to ensure lasting peace and stability in the region and for safeguarding freedom of navigation and commerce. Prime Minister Narendra Modi today interacted with the various secretaries to several ministries at Seva Teerth in New Delhi. The discussion focused on two key themes. The first was deregulation and other reforms for ease of doing business and ease of living, while the second was promoting Atmanirbharta. During the meeting, the Prime Minister stressed the importance of adopting a whole-of-government approach and breaking departmental silos. Highlighting the importance of reintegrating